है भुजंग आसन। भुजंग आसन को ही कोबरा आसन कहा जाता है और देखा जाए तो यह बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए, हमारी और सारी मांसपेशियों के लिए, और खासकर जहां पर हमारे धड़ से नीचे का हिस्सा होता है वहां पे। तो आइए हम आज की जो कि एक्सरसाइज की सीजन में हम करवाने जा रहे हैं आपको कोबरा आसन। भुजंग आसन दो शब्द यानी कि भुजंग और आसन से मिलकर बना हुआ है और इंग्लिश में इस आसन को कोबरा पोज भी कहते हैं। इस योग में सांप की तरह अपने धड़ को आगे की दिशा में उठाकर रखना होता है। अगर आपको पेट संबंधी कोई भी समस्या है तो आप इसे रोज कर सकते हैं। आइए हम आपको बताएंगे कि कोबरा पोज कैसे किया जाता है। कोबरा पोज करने की शुरुआत करें, अपने दोनों हाथों को कंधों के पास रखें, आपकी कोहनी मुड़ी हुई होनी चाहिए, पेट के नीचे का हिस्सा जमीन पर लगा होना चाहिए और हाथों को शरीर के ऊपरी हिस्से को ऊपर की तरफ उठाएं और ऊपर की ओर देखने की कोशिश करें। यह हो गया कोबरा यानी भुजंग आसन। अब हम जान लेते हैं कि भुजंग आसन को करने से क्या लाभ मिलता है। इस आसन के अभ्यास से पेट से संबंधित सभी समस्याएं तो दूर होती ही हैं। साथ में यदि आपको गैस की समस्या होती है, आपको एसिड बनता है, तो भी यह बहुत आवश्यक होता है और बहुत ही लाभप्रद होता है। भुजंग आसन या कोबरा पोज का अभ्यास करने से स्पाइन, ग्लूटियंस, मसल्स, आर्म्स, कंधे और जांघें मजबूत होती हैं। यह शारीरिक संतुलन बनाता है। भुजंग आसन करने से कमर के दर्द को भी ठीक करने में काफी राहत और मदद मिलती है। तो ये था दोस्तों भुजंग आसन करने के आपको लाभ बताए और इसको करने के क्या फायदे होते हैं वो। आइए दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि भुजंग आसन को करने से कौन सा रोग ठीक होता है। भुजंग आसन यानी कि कोबरा आसन करने से पित्ताशय की पथरी यानी आपकी अगर पित्ताशय में पथरी है और जिसके कारण से सूजन होती रहती है, दर्द बना रहता है, तो यह आसन लगातार नियमित रूप से करने से यह सारी समस्याएं दूर होती हैं और दर्द को काफी आराम मिलता है या व्यायाम करने से। इसमें पेट पर गहरा खिंचाव पड़ता है और आपके कमर और ऊपरी हिस्से को मजबूती प्राप्त होती है। पेट के बल लेट फिर कंधों के बल और हाथों को जमीन पर रखें, जिसकी वजह से जब हमारे कंधों पर बल पड़ता है, हमारे पेट के निचले हिस्से पर बल पड़ता है, तो यह आसन हमारे लिए महत्वपूर्ण आसनों में से एक बन जाता है। कोबरा आसन वैसे तो सुनने में आपको ये लग रहा होगा कि यह एक सांप का नाम है, जी हाँ, लेकिन जब हम इसे करेंगे तो भी इसका जो देखने में साफ आपको लगेगा कि वाकई में यह एक कोबरा की स्थिति में ही है। आइए अब हम जान लेते हैं कि यह हमें कितने मिनट तक करना होता है। भुजंग आसन की जो सीमा होती है वो शुरुआती तौर में आप भुजंग आसन की मुद्रा में करीब 30 सेकंड के लिए रहने की सलाह दी जाती है, यानी कि आप 30 सेकंड तक स्टार्ट कर सकते हैं और वही कुछ समय के अभ्यास के बाद इस समय को धीरे धीरे बढ़ा करके एक मिनट तक किया जा सकता है। यानी भुजंग आसन का जो समय है वो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम 30 सेकंड से शुरू करते हुए एक मिनट तक हम ले जा सकते हैं। कोबरा पोज यानी कि भुजंग आसन हमें कितनी बार करना चाहिए हम आपको बताने जा रहे हैं। हालांकि कोबरा आसन जो कि आमतौर पर सूर्य नमस्कार के आम वर्क पर अनुभव में ये किया जाता है, यह अपने आप में एक शक्तिशाली मुद्रा है और हम सभी को इसे दिन में कम से कम एक बार कर लेना चाहिए। और व्यायाम का कोई समय नहीं होता है जैसा कि सभी लोग कहते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से व्यायाम या तो आप सुबह करिए या तो फिर आप शाम को करिए। भुजंग आसन कब नहीं करना चाहिए आइए हम उसको भी बता देते हैं। भुजंग आसन यानी कि कोबरा आसन पद्मासन का एक महत्वपूर्ण आसन है। इसे सर्पासन भी कहते हैं और यह अष्टांग योग का भी एक प्रमुख आसन है। इंग्लिश में इसे कोबरा पोज इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक सांप नुमा जमीन पर पेट लगा हुआ होता है और आपकी भुजाएं जो हैं वो जमीन से उठी हुई होती हैं। यह आसन हर्निया की बीमारी में नहीं करना चाहिए। आइए अब हम आपको बता दें कि कोबरा पोज कैसे पीठ के दर्द में आपको यह सहायक सिद्ध होता है।

कोबरा मुद्रा आपकी रीढ़ की हड्डी को पीछे की ओर फैलाती है, यह संभवतः आपकी पीठ की मांसपेशियों पर काम करेगी। यदि आप निर्देशों का सावधानी पूर्वक पालन करते हैं तो आप मांसपेशियों के साथ साथ अपने पेट के निचले हिस्से को भी मजबूती करेंगे। इस प्रकार दो शक्तियाँ आपकी मिलकर के एक पूर्ण रूप से आसन को जन्म देती हैं। कोबरा आसन को हम फुल कैसे करते हैं वो आइए हम जान लेते हैं। अपने पेट के बल लेटे, पैर की उंगलियाँ सीधी पीठ की ओर ले, हाथ कंधों के नीचे हो, कोहनियाँ शरीर से सटी हों और पैर लगे हों, पेट को अंदर और ऊपर खींचें। जैसे ही आप श्वास लेंगे अपनी छाती को अपने दिल के पीछे से ऊपर उठाएं, अपनी छाती को अपने दिल के पीछे से ऊपर उठाएं, कॉलर बोन को ऊपर की ओर रोल करें और कंधे के ब्लड को पीछे पीठ की ओर हिस्से रीढ़ की हड्डी में आप इसे लगाकर मजबूती से समाएं। तो दोस्तों ये था कोबरा, यानी कि आप कोबरा आसन यानी भुजंग आसन इसका दूसरा नाम है। और भुजंग आसन आपने देखा होगा कि सूर्य नमस्कार जब हम करते हैं तो उसमें यह एक स्थिति आती है जो कि भुजंग आसन के नाम से जानी जाती है। अब आपने जाना कि भुजंग आसन सूर्य नमस्कार में भी एक स्थिति में आता है, तो यह हमारे लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण आसन है। हम इसे सुबह और शाम 30 सेकंड से शुरू करके 1 मिनट तक कर सकते हैं। आप जीवन शैली में जब इसे रूटीन में लाएंगे तो इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ठीक होती नजर आएगी। तो ये था आज का हमारा कोबरा आसन यानी कि भुजंग आसन। यदि आप इसे करते रहेंगे तो नित प्रतिदिन आपकी काफी समस्याओं का हल आपको मिलता रहेगा। तो इसीलिए दोस्तों करें योग, रहें निरोग। नमस्कार दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

0: आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।
1: What is this? अरे कितना क्रेडिट देगा उस लड़की को? अरे वो दूसरे शहर से, I'm telling you, अगर पैसा नहीं आया ना, you will have to pay.
2: But Papa, she's a nice girl.
3: भैया देखो, दिल्ली वाली दीदी आ गई।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840 3395 84 88 40 35 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816097। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

हां जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। और आज की सुबह ऐसा लग रहा है जैसे भाई बारिश थमने का नाम ही नहीं लेने वाली है। और आज उसने कसम खाई है कि कसम से पूरा गोंडा डुबो को ही दम लेंगे। फिलहाल गोंडा डूबे या शायद अभी उसमें वक्त हो, उससे पहले आप जाग जाएं। आप जिस नींद में डूबे हैं उससे बाहर आना पहले ज़रूरी है, जिसके लिए आपका प्रोग्राम आ चुका है यस ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सो चलिए भाई, सुबह का वक्त है, आरजे अदनान साथ हैं और आज डे भी थर्सडे है। सो अब चलते हैं आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ और बताते हैं कि भाई आज का थॉट ऑफ द डे क्या है इस सॉन्ग को सुन लेने के बाद।

0: यस, एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में आपकी मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान के साथ। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सो चलिए भाई, थर्सडे मॉर्निंग का शो है। बारिश बाहर लगातार चल रही है, हो रही है और हवाओं ने तो भाई ऐसा खूबसूरत सा समा बनाया है जैसे मानो हवाओं को बाहर से कहीं गोंडा में इंपोर्ट किया जा रहा हो। लगातार हवाएं जो है वो किसी अगले प्रदेश से आ रही हैं और जगा कर जा रही हैं कि दुनिया में अभी बहुत कुछ है जो देखा जाना है, जो महसूस किया जाना है। सो उठो मेरे प्यारे और चलो उन राहों पर जो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

अच्छा, कई ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ के, कई ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनसे हम बाहर आ ही नहीं पाते हैं। रह रह कर के हम वहीं कहीं फंसे रह जाते हैं, रह रह कर हम उन्हीं यादों में सिमटे रह जाते हैं, है ना? ऐसा होता है ना? यस, ऑफ कोर्स ऐसा होता है। और ये किसी एक के साथ नहीं होता है, ये शायद हर कोई या शायद ज़्यादातर लोग इससे पीड़ित हों, है ना? वो बाहर नहीं आ पा रहे हों, वो समझ ना पा रहे हों। पर एक बात है दोस्त, आज का थॉट ऑफ द डे उसी के लिए आया है जो कहीं ना कहीं उस पीड़ा में अभी भी जी रहा है। जी हाँ, आज का थॉट कहता है कि एक्सेप्ट करना बहुत ही पीड़ादायक होता है, स्वीकार करना बहुत ही पीड़ादायक होता है, पर जीने के लिए करना होता है। स्वीकार करना बहुत ही पीड़ादायक होता है, पर जीने के लिए करना होता है। अब लाइफ के कई इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो किसी गुजरे हुए वक्त में, गुजरे हुए समय में गए हैं, और आज तक आप किसी शख्स को लेकर के ये कहते आए हैं कि ये तो यकीन नहीं था पर हो गया। कई बार होता है कि शायद पूरी सोसाइटी ऐसी चीज़ों को मानती है, जब उसमें आप उस फेर में फंसते हैं तो फिर आपको लगता है कि ये क्या नियम है, ये क्या लोगों के बिलीव्स हैं जो माने चले जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि यूजुअली आप कुछ थोड़ी सी भी अगर कोई ऐसी बात होगी तो उसको गलती निकालने हर कोई आ जाता है, और बहुत तेज़ी से बताया जाता है कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अच्छा, बहुत कुछ आप बहुत अच्छा कर रहे होते हैं और लोगों की निगाह में भी आता है, पर शायद ना अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत प्यार से किसी से बोलते रहे, एक बार थोड़ी सी नाराज़गी आप ज़ाहिर कर दें तो वहाँ मसले हो जाते हैं, है ना? तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो शायद इन्हीं की तरफ इशारा करती है। यानी एक्सेप्ट करना सच में थोड़ा सा पीड़ादायक बन ही जाता है। पर क्या होता है, होता ये है कि हम मान ही नहीं पाते कि फ़िलहाल चीज़ें ऐसी ही है, ज़्यादातर ऐसे ही हमको प्रतिक्रियाएं मिलने वाली है, कुछ ऐसा ही जवाब मिलने वाला है, कुछ ऐसे ही ढंग से हमको जीना होगा इन सब के बीच में। ये एक्सेप्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल लगने लगता है, और यही बात है कि कहीं ना कहीं फिर इस चीज़ को समझा जाए कि शायद लाइफ टफ हो जाती है अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम उसमें ही फंसे रह जाते हैं। तो ज़िंदगी में कहीं किसी चीज़ को लेकर के अगर लगातार फंसे हुए हैं तो ज़रा सोचिएगा कि ज़िंदगी में वक्त तो रुक नहीं रहा है, और वक्त से ही बनी है ज़िंदगी, बस उसमें हम कहीं से रुक गए हैं और ऐसी जगह फंसे हुए हैं जहाँ हम एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर एक्सेप्ट कर लिया होता तो शायद बढ़ गए होते, बट एक्सेप्ट नहीं किया है तो इसलिए वही अटके हुए। सो अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कोई भी चीज़ कि शायद सोसाइटी का रिएक्शन ऐसे ही होने वाला है, शायद फला शख्स ऐसे ही होने वाला है, शायद इस चीज़ का जो आपका अज्र है वो वैसे ही मिलने वाला है, शायद इसका ऐसा ही होने वाला है, तो अगर इतनी सारी चीज़ें आपने सोच ली है और ये सारी चीज़ें आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप मान रहे हैं कि हाँ ये है सच में, उसके बाद शायद आप जीने के लिए वापस से आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज का थॉट कहता भी है कि एक्सेप्ट करना बहुत पीड़ादायक होता है, बड़ा मुश्किल से लगता है, बड़ा पेन होता है, लेकिन जीने के लिए करना होता है। क्योंकि अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो वहीं ठहर के रह जाएंगे, ना जाने कितने दिन, महीने, साल और शायद लाइफ का कितना बड़ा वक्त हम वहीं गुजार देंगे। इसलिए एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज का थॉट मुझे लगता है हर उस शख्स के लिए है जो कहीं ना कहीं बहुत ज़ख्म जिसको मिला है या बहुत परेशानी भी किसी ने देखी है और कह नहीं पाए हैं आप, क्योंकि कुछ इतनी अंदर चीज़ें होती हैं कि वो किसी से कहा नहीं जा सकता है, वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं। एंड उसी बीच में जब ये बात आती है कि अगर स्वीकार कर लिया है आपने उन सभी चीज़ों को, तब तो आप सच में आगे बढ़ पाएंगे। और अगर आप स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, आप बार बार नकार रहे हैं, तो शायद वो मुश्किल होने वाला है, वो वहीं आपको ठहरा कर रखने वाला है। और ये ठहराव आपके मन का नहीं होगा,
बल्कि आपको विचलित करने वाला होगा। आपके मन का ठहराव तो आप खुद लेते हैं और यहाँ आप ना चाहते हुए भी फंसे होते हैं। सो बस एक्सेप्ट करना है। क्यों? क्योंकि लाइफ आगे बढ़ रही है और लाइफ के साथ आगे चलना है, इसलिए इसको एक्सेप्ट करना है। और कई बार तो मुझे लगता है कि जिन चीज़ों को लेकर के हम इतना चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, अगर उसको गौर से देखें तो शायद कई बार वो वजहें जो होती है वो बस हाइप होती है उसकी क्रिएट कि ऐसा है ऐसा है, पर अगर आप उसकी जड़ों में जाएंगे तो ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। तो फिर न जाने क्यों हम उन चीज़ों को लेकर के इतना बैठे होते हैं, न जाने क्यों हम उन चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे होते हैं, है ना? तो बस इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा एंड इस बात को आप शायद समझ पाएंगे कि हर वो चीज़ जो आपने अभी तक एक्सेप्ट नहीं की है, जो स्वीकार नहीं की है, उसी वजह से कहीं फंसे हुए से आप एक्सेप्ट करिए, लाइफ आपको आगे बढ़ा ले जाएगी। ये गारंटी आज का ये थॉट ऑफ द डे देता है और ये गारंटी हमारी खुद की लाइफ कहती है कि तुम आओ तो आगे, तुम तो वहीं रुक गए हो, तुम एक्सेप्ट तो करो, उस चीज़ से आगे तो बढ़ो। उसके बाद जैसे ही सफ़र आगे बढ़ेगा कुछ अगले नज़ारे सामने होंगे, क्योंकि बढ़ने पर जगह चेंज होती है और चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो दुनिया में बहुत कुछ है, बहुत सारे लोग हैं जो आपके इंतज़ार में हैं, बहुत सारी जगह है जहां आपको जाना है, जिन चीज़ों को आपको एब्जॉर्व करना है, जिन चीज़ों को आपको अपने अंदर लेना है, बहुत कुछ बाकी है, बस बढ़ो।

0: मुझे लगता है एक्सेप्ट करने के प्रोसेस में तो अब तक आप आ चुके होंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के दौरान, राइट। चलिए फिलहाल आप हमको सुनते हैं फ्रीक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम के एप्लीकेशन से, और उसी एप्लीकेशन पर चैट का चूंकि ऑप्शन होता है और आप जो लिखते हैं वो हम तक पहुंच जाता है। सो आप में से कुछ श्रोता हैं जो रोज़ कुछ ना कुछ लिखते हैं, तो आज क्या लिखा है आइए बताते हैं आपको, और साथ ही साथ आपने थॉट ऑफ द डे पर अपना क्या रिएक्शन दिया है ये भी बता दें।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो देखिए भाई, सबसे पहला जो मैसेज आया आशु मिश्र जी का फ्रॉम लखनऊ से आया है। सुप्रभात सर जी, सुप्रभात आपको भी, और आई होप कि भाई आपके यहाँ भी इस वक्त बारिश हो रही होगी, और नहीं हो रही तो कम से कम ये ठंडी हवाएं तो होनी चाहिए भाई, बड़ी लाजवाब बात चल रही है। एंड सविता दुबे जी ने हरखापुर गोंडा से भेजा है मैसेज, सुप्रभात सभी को, आपको भी सुप्रभात। एंड यस ऑफकोर्स, प्रीति जी लिखती हैं, सर जी सुबह का प्यारा सा सुप्रभातम, आपको भी सुप्रभातम। एंड यस, इसके बाद में प्रीति जी ने आज के थॉट पर अपना रिएक्शन भी दिया है, लिखा आज का थॉट से प्रेरणा लेकर मोहमाया से दूर रहने की कोशिश करूंगी अब से। सो मुझे लगता है कि मोहमाया का मतलब यहाँ पर आप जिन चीज़ों को समझ रहे हो उनको ज़रूर समझिए। बस इस थॉट ने इस बात को ज़रूर वापस से क्लियर किया है कि जो कुछ भी हमको रोक के रखे है लाइफ में, आगे नहीं जा पा रहे हैं, उनसे आगे बढ़ने को लेकर के है, राइट? तो चलिए, अच्छी बात है, इन चीज़ों से आगे बढ़ेंगे एंड डेफिनेटली बढ़ेंगे। कैसे? एक्सेप्ट करके। सविता दुबे जी लिखती हैं, सर मैं गलत सही मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपके शो में कैसे रहना है अच्छा लगता है। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। ऑल राइट, आपने फंसे रहने का बोला, मैंने कहा भाई उन चीज़ों को एक्सेप्ट करिए, लेकिन आपने कहा मेरे शो में आपको रहना यानी फंसे रहना बड़ा अच्छा लगता है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, और कुछ चीज़ों में फंसे रहना ऑफकोर्स अच्छा है। सो मुबारक हो कि आप एक सही जगह है। एंड हमारी आशु जी ने लिखा है कि इंसान कभी गलत नहीं होता, उसका वक्त गलत होता है, मगर लोग इंसान को गलत कहते हैं, जैसे कि पतंग कभी नहीं कटती या तो धागा, फिर भी लोग कहते हैं कि पतंग कटी है जबकि धागा कटता है। एंड कहा है वेरी नाइस थॉट सर जी, थैंक यू सो मच कि आपको भी ये थॉट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और आपने बता दिया है कि ठंडी हवा चल रही है, रात में बारिश हुई थी। अच्छा, यहाँ रात में भी हुई थी और अभी भी हो रही है, और हवाएं तो बहुत ठंडी सच में चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड हमारे साथ में उस्मान खान भी आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम आरजी सर, वालेकुम अस्सलाम, वेरी नाइस थॉट, थैंक यू सो मच उस्मान जी, कि आपको भी आज का थॉट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। मैंने कहा ना, हर उस शख्स को जो कहीं ना कहीं अभी भी कुछ ज़ख्मों को लेकर के कोई अटका हुआ है, कोई इंसिडेंट को लेकर कोई अटका हुआ है, ये एक्सेप्ट करने का वक्त है, क्योंकि ज़िंदगी आगे बुला रही है कि एक्सेप्ट करो और आगे आओ। सो बस एक्सेप्ट करना और आगे चल देना है ना, यही तो लाइफ का यही मीनिंग है, यही मतलब है। एंड सविता जी लिखती कि आपके शो में बहुत कुछ सीखने को जो मिलता है, थैंक यू सो मच। हाँ, सीखने को मिलता है एंड अपने को बयां करने को मिलता है। देखिए, मुझे लगता है सीखने के लिए तो शायद दुनिया भर में बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन सबसे जो ख़ास बात बनाती है किसी भी आपके लिए शख्स को, प्लेटफॉर्म को, चीज़ को, फीलिंग्स को, जगह को, वो होता है कि आप वहाँ पे उन चीज़ों को बयां कर पाए जो अपने अंदर हमेशा आप रखते हैं, मारे डर के कि इसको अगर बोला, इसको अगर कहा तो लोग क्या सोचेंगे, न जाने क्या मेरे थॉट का होगा। वो कोमल सा थॉट आपके अंदर हमेशा दफन रहता है, आप निकाल ही नहीं पाते, आप बहुत रेयर पर्सन के सामने शायद उसको शेयर कर पाते हैं, और कई बार और कई चीज़ें तो ऐसी होती है कि उसको कर ही नहीं पाते। सो बस हमारी ये आपसे इल्तजा भी है और हमारी ये कोशिश भी रहती है कि हाँ, आप इस तरह की चीज़ों को भी हमसे ज़रूर साझा करें, क्योंकि शायद हम एक ऐसा मंच दे पाएँ, एक ऐसा एनवायरमेंट दे पाए जहाँ पर आप बहुत फील फ्री अपनी उन बातों को कह पाए जो आपके दिल के अंदर छिपी रहती है, जो शायद आप महसूस करते हैं, जो कि एक इंसान को होती ही है, लेकिन इंसान दरअसल उसको बहुत जल्दी कह नहीं पाते मारे डर के। सो वो सारी चीज़ें आप भी एक्सप्रेस कर पाएँ, ऐसी हम कोशिश ज़रूर करते रहेंगे। फ़िलहाल चूँकि आज का मौसम, आज का समा और आज का शो सब कुछ बड़ा ही खूबसूरत है, और इसी तरह हम इसको, इसकी खूबसूरती को जज्ब करते रहेंगे यानी अब्जॉर्ब करते रहेंगे इसी शो से। सो चलिए भाई, अब बहुत कुछ ला रहे हैं आने वाले इसी शो में, तो आप रेडी रहिए और साथ ही रेडी होते रहिए, मौसम बहुत अच्छा है।

और टाइप करना है रेडियो स्पेस 11 स्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस 11 स्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

बस एक धड़क चाहिए और बस एक अपडेट चाहिए जो आपको बता दे कि आपके शहर में, आपकी सिटी में क्या कुछ चल रहा है, राइट? भाई इसका इंतज़ार तो आपको रहता ही है कि कोई बता दे कि भाई शहर में क्या कुछ हो रहा है। तो फिलहाल चलिए, हम जल्द ही आपको बताने वाले हैं कि अपने शहर में यानी सिटी की अपडेट में क्या कुछ है और शहर में क्या कुछ हलचल हो रही है, सिर्फ आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में।

0: तो भाई इसी बीच में चलिए, अब वक्त हो गया है आपको ये बताने का कि क्या कुछ चल रहा है शहर में, यानी आप तक सिटी अपडेट्स पहुंचाने का, सिर्फ और सिर्फ आपके मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में।
1: Now you're listening, Good Morning Gonda, with your favorite RJ Khan.

पहली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है कि भाई 15 साल से ही कस्तूरबा विद्यालय जो है वो जर्जर है और अब शिफ्ट होने वाली हैं स्टूडेंट्स उसमें। रुपईडीहा का कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जो है इस सवाल को व्यवस्था के सामने खड़ा कर रहा है। 2010 में हैंडओवर हुआ, महज 15 साल में स्टूडेंट्स के रहने और पढ़ाई के लिए जो है वो अब अनुपयुक्त हो चुका है। इस तरह से अब इसको शिफ्ट कराया जा रहा है। दूसरी अपडेट जो आ रही है वो आ रही है 11 लाख बकायेदारों के घर में पहुंचने वाला है बिजली महकमा। जी हाँ, महीनों से बिजली बिल जमा नहीं करने वाले देवी पाटन जोन के 11 लाख से ज़्यादा कंज्यूमर्स से अब बिजली विभाग घर घर और फ़ोन के ज़रिए से कांटेक्ट करेगा। इसमें 4,60,000 से ज़्यादा ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने लंबे वक्त से एक बार भी बिजली का बिल नहीं पे किया है। 6,46,000 से ज़्यादा जो ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो लंबे वक्त से बकायेदार हैं, बकाया वसूली के लिए चारों ज़िलों में 10 वितरण खंडों को टीमों और कॉलिंग कर्मचारियों की जो नंबर्स हैं वो बढ़ाई गई है। मुख्य अभियंता ने बताया कि बिजली चोरी रोकने के लिए मीटर बाईपास, सील से छेड़छाड़, कटिया डालकर बिजली चोरी और स्वीकृत भार से ज़्यादा खपत की जांच की जा रही है और इसी के तहत कल बुध को पूरे जोन में 2,477 नोटिस जारी किए गए, जबकि बिजली चोरी के 38 मामलों में FIR भी दर्ज कराई गई। अभियान के दौरान 1.71 करोड़ रुपए का बकाया वसूली हुई और गोंडा में 810 उपभोक्ताओं को नोटिस भी जारी किए गए। वहीं बिजली चोरी के मामले में 17 मामलों में FIR भी दर्ज कराई गई है। इसके अलावा चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। फिलहाल अगली जो अपडेट आ रही है वो मेडिकल कॉलेज से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर खांसी और विटामिन की दवाओं का स्टॉक ख़त्म होने की बात सामने आ रही है। मेडिकल कॉलेज में दवाओं का बजट ख़त्म होने से जो मरीज़ हैं उनको पर्चे पर लिखी सभी दवाएं नहीं मिल रही हैं। जुलाई में दवाओं के लिए मिले 47 लाख रुपए का बजट ख़त्म हो चुका है। इससे कॉरपोरेशन से मांग के हिसाब से दवाओं की जो सप्लाई है वो अफेक्टेड हुई है। खांसी के लिए सिरप और मल्टीविटामिन समेत कई सारी दवाएं जो है स्टॉक में नहीं है। मरीज़ों को 5 में से 3 ही दवाएँ काउंटर पर मिल पा रही है, बाकी दवाएँ उन्हें बाहर से महंगे दामों पर ख़रीदनी पड़ रही है। मेडिकल कॉलेज की OPD और इमरजेंसी में रोज़ाना 1,800 से ज़्यादा मरीज़ पहुंचते हैं। इनमें से ज़्यादा संख्या ऐसे एरियाज से है जो रूरल की होती है, यानी ग्रामीण एरियाज से आते हैं। निःशुल्क दवा की उम्मीद से हॉस्पिटल पहुंचने वाले मरीज़ों को काउंटर से दवा नहीं मिलने से बाहर के मेडिकल स्टोर से लेना पड़ता है, जो कि उनके लिए काफ़ी खर्च को बढ़ा देता है। फ़िलहाल इसी तरह की ये प्रॉब्लम सामने आई है एंड बजट के लिए भेजा गया है पत्र, ऐसा कहना है CMS डॉक्टर अनिल तिवारी का। मेडिकल कॉलेज के CMS ने बताया कि दवाओं की कमी है और अवेलेबिलिटी के हिसाब से मरीजों को उसी फॉर्मूले की दूसरी दवा दी जा रही है। बजट की मांग को लेकर आला अधिकारियों को जो है लेटर भेजा गया है, जल्द ही दवाओं की आपूर्ति की उम्मीद उन्होंने बताई है। इसके बाद चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। ऑफकोर्स ये भी अगली अपडेट जो है वो हमारी सिटी गोंडा से ही आ रही है। आज 9 बजे से परसपुर ब्लॉक संसाधन केंद्र में टीचर्स का और FLN प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें परसपुर के ही ब्लॉक में आज जो दिव्यांग जन हैं उनको सहायता उपकरण वितरण और शादी अनुदान के लिए सिलेक्शन जो लाभार्थी हैं उनको स्वीकृति पत्र जो है बाँटा जाएगा। इसके अलावा आपको हम बता दें कि सुबह 11 बजे MDB सिंह इंटर कॉलेज बेलसर में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की तरफ से अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जाएगा। एंड यस, इसके अलावा आपको बता दें कि मुजेहना के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में मीना जन्मोत्सव मनाया जाएगा सुबह 11 बजे से, और साथ ही साथ दोपहर 3 बजे से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हैंडबॉल के जो कैंडिडेट्स हैं उनका मंडलीय ट्रायल कराया जाएगा। ये जो अगली अपडेट थी ये भी गोंडा से थी, आज कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं। इसके अलावा आपको हम बता दें कि मान्यता से ज़्यादा जो है वो क्लासेस चलाने वाले 6 विद्यालयों के जो प्रबंधक हैं उनके ख़िलाफ़ अब FIR की तैयारी हो रही है। विभागीय निरीक्षण में मान्यता के उल्टा कक्षाएँ संचालित मिलने के बाद जो जुड़े हुए विद्यालय हैं उनको नोटिस जारी करके पढ़ाई बंद कराने के निर्देश दिए गए थे।
सो कुछ प्रबंधकों ने नोटरी शपथ पत्र देकर कक्षाएं बंद करने का भरोसा भी दिया, लेकिन दोबारा शिकायत मिलने पर विभाग ने सख्त रुख अपनाया है और ज़िला विद्यालय निरीक्षक ने प्रबंधकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए एसपी को पत्र भी भेजा है। सो DIOS ने बताया कि सही गांव में कक्षा 8 तक की मान्यता होने के बावजूद कक्षा 9 और 12 की पढ़ाई जो है वो संचालित किया जाने की शिकायत मिली है और इसी क्षेत्र के दूसरे स्कूल में कक्षा 8 की मान्यता के बावजूद कक्षा 9 और 10 की पढ़ाई होती है। सो सिसवरिया बघेलवा में कक्षा 9 और 10वीं कैमी चौराहा पर 5 तक मान्यता के बावजूद 6 और उसके बावजूद 9वीं और 10वीं कक्षाएँ संचालित की जाने की जो शिकायत है इस तरह की वो सामने आ रही है। एंड इसके अलावा आपको हम बता दें कि अब 6% ब्याज पर कर्ज ले सकेंगे किसान। जी हाँ, सो ज़िले के 5,04,000 लघु और सीमांत किसानों को कृषि और उससे जुड़ी जो भी एक्टिविटी है उसके लिए 6% का ब्याज पर जो है उनको लोन मिल सकेगा। सो फिलहाल मुख्यमंत्री ने बुधवार को कृषक समृद्धि योजना का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड की योजना के तहत 5 साल या उससे ज़्यादा वक्त के लिए ये जो है लोन दिया जाएगा और इससे पहले ऐसे लोन पर 11% ब्याज देना पड़ता था। सो जिला पंचायत सभागार में लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम में लाइव प्रसारण में देखा गया। सहायक आयुक्त और सहायक निबंधक रविशंकर चौधरी ने बताया कि समय से किश्त चुकाने पर प्रदेश सरकार की तरफ से ब्याज अनुदान दिया जाएगा। सो फिलहाल ये जो अपडेट्स थी ये सारी की सारी गोंडा की थी एंड आई होप कि भाई आपको ये सारी अपडेट्स मिल गई होगी और इसमें से काफ़ी सारी आपके काम की भी रही होगी। सो चलिए भाई, अब आप चलते हैं अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ। वापस से आते हैं, आने के बाद आपको बताने वाले हैं कि आज के इस ख़ास शो में और क्या कुछ है जो आप तक पहुंचेगा शो के ही दौरान। फिलहाल आप सुनते रहिए अपना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, क्योंकि यही तो है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे सुना,
4: क्या
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
4: वाओ,
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
5: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं, जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है, और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
6: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश।
7: अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक, मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5, सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

तो भैया आज आपका वापस से आपके ही मॉर्निंग शो में वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सुबह लगभग मेरे पास उठने के बाद एक मैसेज आता है, यानी जिस बैंक में मेरा अकाउंट है वहाँ से वो मैसेज आता है, और उस मैसेज को देखने के बाद मुझे ख्याल आया अच्छा चलो अच्छी बात है, अब इसका भी नोटिस आता है। पता नहीं इससे पहले आपको मिला हो ना मिला हो, खैर मुझे आज मिला, और ये मैसेज जो आया वो लगभग 8 बजे के आसपास आया था। जी हाँ, जिसमें लिखा हुआ था कि ड्यू टू पोस्टपोन बैंकिंग स्ट्राइक 28 से 30 सितंबर 2026। जी हाँ, ये सुबह मेरे पास आया था हमारे बैंक से, और इसमें बताया गया था बैंकिंग सर्विसेज मे बी अफेक्टेड, प्लीज़ यूज़ मोबाइल बैंकिंग एप्स। तो फ़िलहाल इसी से जुड़ी हुई एक बात हमारे पास आ गई है, और वो है जो 28 सितंबर से बैंक हड़ताल हो रही है उसके बारे में। जी हाँ, सो जैसा कि मैंने कहा भाई कि फ़िलहाल बैंक हड़ताल हो रही है, इसके बारे में आपने शायद सुना हो, और अगर नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं, हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर कौन सी बैंक हड़ताल की हम बात कर रहे हैं और क्या है ये बैंक हड़ताल और क्यों हो रही है, ये सब कुछ बताएंगे आपको आपके मॉर्निंग वाले शो में आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। फ़िलहाल इस गाने को सुनेंगे, वापस से आएंगे, और आने के बाद आपको बताते हैं कि आखिर क्यों हो रही है बैंक की हड़ताल और क्यों आपको पहले ही अपने बैंकिंग के काम कर लेने होंगे।

0: जाहिर सी बात है अटक नहीं था मन को कि भाई 28 से 30 सितंबर के बीच की जो डेट है, ये बैंक हड़ताल आखिर क्यों हो रही है और इससे क्या क्या असर होने वाला है और इसको लेकर के आपको क्या करना चाहिए, चलिए बताते हैं आपको आपके मॉर्निंग वाले शो में।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Ajay Khan.

सो फिलहाल 3 दिन देश भर में अफेक्टेड हो सकती हैं बैंकिंग जो सर्विसेज हैं। सो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 28, 29 और 30 सितंबर को 2026 को देशव्यापी हड़ताल का जो है वो प्रस्ताव दिया है, और बातचीत में कोई ठोस सहमति नहीं बनने के बाद यूनियन ने हड़ताल पर आगे बढ़ने की भी बात कही है। सो सवाल आता है कि आखिर हड़ताल हो क्यों रही है ये बैंक की, जो 3 दिन बंद रहने वाला 28, 29, 30। सो UFBU 5 दिन की बैंकिंग व्यवस्था लागू करने समेत कर्मचारियों से जुड़े कई मुद्दों के समाधान की मांग कर रहा है। इनमें क्या है कि पेंशन सुधार, सभी पेंशन भोगियों के लिए समान महंगाई भत्ता फॉर्मूला, और NPS से जुड़े यानी न्यू पेंशन स्कीम से जुड़े कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था में जाने का विकल्प देने जैसी मांगें शामिल हैं। सो लगातार 5 दिन बैंकिंग कामकाज पर इसका असर होने वाला है। हड़ताल से पहले 26 और 27 सितंबर को सैटरडे और संडे का जो है वो छुट्टी रहने वाली है। ऐसे में 26 से 30 सितंबर तक लगातार 5 दिनों तक ब्रांच से जुड़े काम जो है वो अफेक्टेड हो सकते हैं। सो EMI और SIP के लिए खाते में आपको अपने बैलेंस रखना होगा। अगर आपकी EMI या SIP खाते से ऑटो डेबिट होती है तो खाते में इनफ बैलेंस यानी उतना होना चाहिए जितने में आपकी EMI या आपका SIP कट जाए। सो इतना बैलेंस रखना ज़रूरी है, और ग्राहकों को हड़ताल से पहले जो ज़रूरी फिनेंशियल लेन देन है उसके निपटाने की सलाह भी दी गई है कि मतलब जो भी आपको लेन देन करना है इस हड़ताल से जल्दी से पहले कर लीजिए, क्योंकि हड़ताल के दौरान ATM, ADWM, UPI बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग जैसी डिजिटल जो सेवाएँ हैं इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि बैंकिंग से जो सेवाएं हैं उनकी अवेलेबिलिटी और बैंक की जो सर्विसेज हैं उसके हिसाब से अलग अलग हो सकता है। सो ब्रांच वाले ज़रूरी काम पहले निपटाना होगा। सो जिन कामों में बैंक कर्मचारी या ब्रांच की आपको जाने की ज़रूरत पड़ती है, यानी सीधे से अगर आसान शब्दों में कहा जाए जिस काम के लिए आपको बैंक ही जाना पड़ता है, वो काम आपको पहले हड़ताल से पूरा कर लेना बेहतर है। सो इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे मान ली कोई चेक का काम है, चेक की प्रोसेसिंग है, KYC अगर करवाना है, या कोई डॉक्यूमेंट जमा करना है, या बाकी ब्रांच से रिलेटेड कोई काम हो सकता है। सो बैंक ग्राहकों को पहले से तैयारी की सलाह भी दी गई है। अगर किसी बैंकिंग काम की आखिरी तारीख 28 से 30 सितंबर के बीच है तो पहले पूरा कर लेना बेहतर है। SBI समेत कुछ बैंक्स जो हैं वो कस्टमर्स को ज़रूरी काम करने निपटाने और जो डिजिटल माध्यम है उसका इस्तेमाल करने की सलाह दी है उन्होंने कि भाई इसको आप जल्दी से जल्दी निपटा लीजिए। सो फिलहाल हमने आपको बताया कि देश भर में बैंक ग्राहकों के लिए सितंबर के आखिरी हफ्ते में बैंकिंग सेवाएँ अफेक्टेड हो सकती हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी UFBU ने 28 से 30 सितंबर 2026 तक 3 दिन की देशव्यापी हड़ताल का प्रस्ताव दिया है। सो ये पूरा वीक जो है लास्ट का वो ऑफकोर्स ऐसे ही बिजी होने वाला है, ऐसे ही जाने वाला है। 3 दिन हड़ताल, 2 दिन छुट्टी, सो 5 दिन तो सीधे सीधे काम नहीं होने वाला, तो इसलिए आप कभी जो काम बचा है तो उसको इसी हफ्ते आप निपटा लें। आज ऑफकोर्स थर्सडे है, थर्सडे फ्राइडे ये आपको दिन मिल ही रहा है। सो आई होप कि भैया ये खबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगी और उन लोगों तक पहुंचा दीजिएगा जिनको स्पेशली जिनका काम अभी बैंकिंग का बचा हुआ है या रुका हुआ है, ताकि ये जो काम अटक गए हैं वो आपके समय से पूरे हों और आपको कोई ऐसा नुकसान ना हो।

0: बच्चों,
1: यस सर,
0: एक दिन ऐसा आएगा जब पृथ्वी पर पानी नहीं रहेगा।
2: ओह नो,
0: जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, पृथ्वी तबाह हो जाएगी।
3: तो सर ये बताइए, उस दिन ट्यूशन आना होगा क्या?
4: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

सो भैया कुछ जो अपडेट्स होती हैं वो तो हम आपको सिटी की दे देते हैं, लेकिन कुछ अपडेट्स ऐसी भी होती हैं जो माया नगरी मुंबई की होती हैं और वो आप तक भी पहुंचानी होती है, क्योंकि अगर आपके फेवरेट सिंगर हैं, आपके फेवरेट एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, कोई भी है, उनसे जुड़ी जब कोई अपडेट होती है तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ भाई चलो कुछ अपडेट भी उनके रिगार्डिंग मिल गई है। सो ऐसी ही कुछ अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं जस्ट इस म्यूज़िकल ब्रेक के उस पार। तब तक के लिए आप बने रहिए अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM पर आरजे अदनान के साथ, क्योंकि हम आपको ले चलने वाले हैं माया नगरी यानी कि सीधे मुंबई और देंगे आपको बहुत सारी अपडेट्स सिर्फ आपके मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। एंड यस, फिलहाल मुझे लगता है कि भैया यस, इसके लिए आपको ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा इस गाने को एंजॉय करना है और वापस से आ जाना है, और आने के बाद हम लोग मिल करके सुनने वाले हैं आज की बॉलीवुड की अपडेट्स, क्या कुछ हो रहा है बॉलीवुड में।

0: भाई बैंक हड़ताल की हमने बात की थी। देखिए भाई, हमारी गीता श्रीवास्तव जी कितनी अपडेटेड रहती हैं, और आपने पहले ही कुछ बातों को बता दिया है। आपने लिखा है कि मेरे मोबाइल पर मैसेज नहीं आया, मैं तो जाने वाली थी आज बैंक, थैंक यू सर बताने के लिए। वैसे आपको बता दें कि आज तो आप जा ही सकती है। 28, 29, 30 की बात की गई है, प्लस सैटरडे और संडे चूँकि पड़ रहा है, तो टोटल 5 दिन जो है वो हो जाने वाले हैं। एंड आपने कहा ये 5 डे वर्क की मांग कर रहे हैं, और साथ में जो ऑफ कोर्स ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसमें उसका ऑप्शन देने की भी बात कही जा रही है। सो ये दो बड़ी मांगे हैं, और शायद इसके अलावा और भी कुछ मांगे हो सकती हैं। जैसा कि फ़िलहाल अभी हमने बताया, उसमें जिन पॉइंट्स के बारे में बताया वो पॉइंट्स सामने आ रहे हैं। और हाँ बिल्कुल, आज आप जा सकती हैं, बिल्कुल जा सकती हैं। ये 28, 29, 30 की हमने बात की है, 28, 29, 30 यानी अब जो है आज और कल आप जा सकते हैं, 2 दिन निपटा सकते हैं, 24 एंड 25। उसके बाद सैटरडे है 26, फिर संडे है 27, फिर 28, 29, 30 यानी वेंसडे तक ऐसी बैंक बंद रहने वाला है। सो आज और कल 2 दिन आप जा सकते हैं, सैटरडे और संडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, ये 5 दिन बंद रहेगा। आज थर्सडे और फ्राइडे यानी आज का दिन और आने वाला कल, ये 2 दिन आप जा सकते हैं, बैंक का काम बिल्कुल निपटा सकते हैं। इसीलिए हमने पहले ही आपको प्री इन्फॉर्म कर दिया है। फिलहाल वक्त है बॉलीवुड की अपडेट की तरफ चलने का। चलिए हम बताते हैं आपको कि बॉलीवुड में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite, Aajya Khan.

हाँ जी, तो भैया अनीत पड्डा और फातिमा शेख अभिनीत वेब सीरीज होंकार द रोर एक संवेदनशील मुद्दे पर बनी है। सो सीरीज के जो निर्देशक है करण टी कपाड़िया, इन्होंने खास बातचीत की है मीडिया से और बताया है। सो फिलहाल आपको ये पता होगा कि अनीत पड्डा, जो कि अब होंकार द रोर रोल के लिए इनको चुना गया था, तब ये सैयारा रिलीज भी नहीं हुई थी और सोचा भी नहीं गया था कि फिल्म इतनी बड़ी हिट होगी और अनीत की इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी। और ये कहना है खुद करण डी कपाड़िया का। जी हाँ, सो होंकार द रोर सीरीज़ के जो निर्देशक है करण डी कपाड़िया का मानना है कि आमतौर पर ऐसे सब्जेक्ट्स पर फिल्म बनाने से बचा जाता है, निर्देशक डरते हैं लेकिन किसी को तो सच बोलना ही पड़ेगा। सो इन्होंने ख़ास बातचीत की है। सवाल ये था कि आपने कहा ये कहानी आपके लिए निजी है, ऐसा क्या है इसमें? इसका जवाब इन्होंने दिया कि दरअसल इस कहानी की शुरुआत करीब 3 साल पहले हुई थी, जब इसे सुना लगा कि इसमें कुछ ऐसा है जिसे कहा जाना चाहिए। इसके बाद लिखाई शुरू की गई, 2024-25 में शूटिंग की, अब जाकर ये दर्शकों के सामने आ रही है। सो मेरे लिए कहानी बहुत करीब है और ये सिर्फ क्राइम की कहानी नहीं बल्कि हमारे समाज में जो कुछ हो रहा है उसकी भी झलक है। दूसरा प्रश्न ये था कि कहानी का विषय ऐसा है जिस पर लोग खुलकर बात करने से कतराते हैं, क्या आपको डर लगा? तो इन्होंने कहा डर तो होता है, खासकर जब कहानी में एक प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु पर ऐसे गंभीर आरोप हैं, लेकिन अगर आप सच बोल रहे हैं तो फिर डर के पीछे नहीं हटा जा सकता। सो गांधी जी की एक बात मुझे हमेशा याद रहती है, अगर आप सच बोल रहे हैं और मैं उस वक्त अकेले भी खड़ा हूँ तब भी सच सच ही रहता है। अगर समाज में बदलाव चाहिए तो किसी को तो बोलना पड़ेगा। अगला सवाल जब इनसे पूछा गया कि जब रोल के लिए अनीत को चुना तब सैयारा रिलीज नहीं हुई थी, आपको अंदाज़ा था कि वो इतनी बड़ी स्टार बनेंगी? तो इनका कहना था नहीं, सैयारा ने जो किया उसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी, मैंने ही नहीं सोचा था कि फिल्म इतनी बड़ी हिट होगी और अनीत की इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग बन जाएगी। लेकिन हुनकार के वक्त अनीत को लेकर मेरे मन में कोई सवाल नहीं था, ये उनके साथ मेरा तीसरा काम है, मुझे उनकी क्षमता पता थी। इसके बाद स्टार बनने के बाद अनीत में कोई बदलाव नज़र आया? ये भी सवाल था। स्टार होने की जिम्मेदारी आसान नहीं होती, लेकिन हमारे बीच जो रिश्ता है उसे आज भी वही अनीत है। हाँ, अभिनेता के तौर पर उनसे आत्मविश्वास और समझदारी ज़रूर आई है और वो प्रतिभाशाली अभिनेत्री हैं। सो अगला सवाल था कि फातिमा के साथ अनुभव कैसा रहा? फातिमा बहुत ही टैलेंटेड और मेथड एक्ट्रेस है, जिस तरह उन्होंने इस इन्वेस्टिगेटिंग रोल को अटैक किया है वो बहुत ख़ास था, और उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ वक्त बिताया, इस किरदार की दुनिया को समझा और उसके साथ अनुभव अच्छा काफ़ी रहा। सो बता दें कि आपको ये सीरीज़ जो है ये 24 सितंबर को हॉटस्टार पर आने वाली है। जी हाँ, और 24 सितंबर मतलब आज ही आ रही है। जी हाँ, सो फिलहाल आपको बता दें कि होंकार द रोर जो है वो आज ही रिलीज़ हो रही है और ये हॉटस्टार पर आज से ऑफ कोर्स स्ट्रीम होगी और इसको आप घर बैठे हॉटस्टार पर देख सकते हैं। सो फिलहाल ये बॉलीवुड की एक बड़ी अपडेट थी जो कि आज ही रिलीज़ हो रही सीरीज़ है आपके हॉटस्टार यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, होंकार द रोर। सो शायद आपको ये मूवी जो है वो काफ़ी अलग लगने वाली हो, जैसा कि निर्देशक और मीडिया के बीच में बातचीत का आपने अंश सुना, आपको शायद इसका अंदाज़ा ज़रूर हो गया होगा। फिलहाल अब हम चलते हैं अपने आगे कार्यक्रम की तरफ, और ऑफ कोर्स अभी तो काफ़ी कुछ है जो आप तक आने वाला है आपके इसी शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। बने रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM पर आज नान संग, क्योंकि हम आपको कराते रहेंगे सैर इस पूरे शो की, वो भी अपने अंदाज में।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9860 9816 9817। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी

भाई इतने खूबसूरत गाने को सुन लेने के बाद जाहिर है आपके मूड में और भी ज़्यादा चेंजेस ज़रूर आए होंगे। सो फिलहाल एक बार वापस से आपको यही कहेंगे कि वेलकम है आपका आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान लेकर आए हैं आप तक बहुत सारी बातों का पिटारा। सो फिलहाल अभी इतनी सारी बातें हो रही हैं तो जाहिर है कि भाई हेल्थ की बात कहाँ रह जाएगी। अच्छा, अक्सर देखा होगा आपने कि आलू में जो है वो अंकुरित सा हो जाता है और हरे धब्बे वाले भी आलू होते हैं। सो क्या ये सही है या ये नुकसानदायक है, क्या खैर कहना है आपका? अगर आपसे मैं पूछूं तो आप बताइए ना इसका जवाब कि जिनमें अखवा निकल आता है, अंकुरित हो जाते हैं और जो है आपको दिखाई देते होंगे कि भैया इस पे हरे हरे धब्बे हो रहे हैं, तो क्या ये आलू नुकसानदायक होता है या फ़ायदेमंद होता है? इसको ज़रा सोचिए, बताइए और उसके बाद वापस से आकर के हम आपको बताने वाले हैं कि एक्चुअल में ये कितना सही है, कि ये नुकसानदायक है या फ़ायदेमंद है।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: तो भैया आपको हम बताने वाले थे ऑफ कोर्स आलू के बारे में। आलू के बारे में ऐसा क्या था, चलिए ये हम बताने वाले हैं कि भाई आखिर वो आलू जो आपको दिखता हुआ है कि भैया उसमें अंकुरित हो गया है और साथ ही साथ हरापन भी है, तो क्या ये हरापन और क्या ये जो अंकुरित होना है वो सही है, और अगर सही नहीं है तो फिर आखिर क्या है। सो आपको हम थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं ताकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़मर्रा बनने वाले सालू के बारे में हमको सही जानकारी हो, क्योंकि जिसका हम इस्तेमाल रोज़ करते हैं वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों?
3: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

हाँ जी, तो भाई श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय बलिया के जो मृदा विज्ञान और कृषि रसायन विभाग के विभागाध्यक्ष हैं प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह, इन्होंने बताया कि आलू में नीले और हरे रंग के धब्बे बन जाते हैं जो कि इसे खाने में जहरीला बना देते हैं। जी हाँ, मैंने कहा था ना कि भाई आपको क्या लगता है, आप ज़रा सोचिए और उसके बाद बताइए। तो एक्चुअल में जो है ये जहरीला बना देते हैं उस आलू को जिसमें नीले या हरे धब्बे होते हैं और अकवा भी निकल आता है। एंड इसके बाद ये धब्बे तब पड़ते हैं जब आलू खेत में होता है और सूरज की किरणों के कॉन्टैक्ट में आता है। सो आलू में सोलेनिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी हानिकारक होता है और आलू को ये जहरीला बना देता है। सो ऐसे जहरीले आलू का इस्तेमाल करने से पेट से जुड़ी कई बीमारियां हो सकती है। अगर आपके आलू में हरा भाग है और आप उसे खाना चाहते हैं तो हरे भाग को उस आलू से अलग कर दें, यानी उतना हिस्सा काट के हटा दें। जो आलू में अंकुरण आ जाए तो उसे भी नहीं खाना चाहिए। अंकुरित आलू में स्टार्च की जो मात्रा है वो अंकुरण की तरफ चली जाती है जिससे आलू में स्टार्च की मात्रा कम हो जाती है और वो टेस्टलेस हो जाता है। सो ये फ़िलहाल आपको हमने बताया है आलू के बारे में कि भाई ये जो आलू है दरअसल अगर अंकुरित हो जाए और हरा या नीला धब्बा पड़ जाए तो ये एक जहरीला आलू हो सकता है। या तो उस हिस्से को हटा दे जितने में वो हरापन है, और साथ ही साथ अकुए वाले आलू कोशिश करिए कि आप ना ही खाइए, क्योंकि ये जो अंकुरित आलू है जैसा कि बताया कि इसमें सारा स्टार्च एक तरफ हो जाता है जिसकी वजह से बाकी आलू टेस्टलेस हो जाता है। और यही वजह है कि ये जो अंकुरित आलू होते हैं इनको खाने में टेस्ट पता नहीं चलता है। इसी वजह से शायद इस बात को समझा जाना ज़रूरी है, क्योंकि हमने बताया था ना कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें हैं। अब देखिए ना कितनी बड़ी बात है कि हम ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं और अच्छे से करते हैं, सो हमको इसके बारे में पता होना चाहिए। सो आई होप कि भाई अब आपको भी पता होगा ही कि आखिर किस तरह का आलू खाना और कैसा नहीं। सो फिलहाल आपको बता दें कि कुछ आंसर्स भी आए हैं। एंड प्रीति जी बोलती हैं शायद नुकसानदेह है थोड़े थोड़े ग्रीन आलू। जी हाँ, बेशक सही है। और हमारी गीता श्रीवास्तव जी ने कहा नहीं खाना चाहिए, ग्रीन आलू नहीं खाना चाहिए। बेशक सही फरमाया आप दोनों लोगों ने। एंड जिन लोगों को पता था तो आज हमने इस बात को अच्छे से बता दिया कि जिन आलू में अंकुरण हो यानी अंकुरित हो चुके हों या फिर आपके उस पर नीले या हरे धब्बे हों उन आलू का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एडवोकेट सुनील जी हैं मझारा से, आपको आज बैंक की अपडेट मिलने के बाद आपने अच्छा लगा और आपने कहा कि ये न्यू अपडेट है। जी हाँ, थैंक यू सो मच सुनील जी। सो बहुत बहुत शुक्रिया इस बात को समझने के लिए कि भैया आलू आखिर इस तरह का आलू अगर है तो नहीं खाना है, क्योंकि हमें अपनी सेहत जो है ज़रूर प्यारी है। सो ज़रा से आलू के चक्कर में जो है हम न जाने कितनी सारी बीमारी ले बैठे, इतने सारे एफर्ट्स, इतना सारा पैसा, इतना सारा वक्त, सब कुछ बर्बाद जाता है। इसलिए इन सब से बचना ज़रूरी है।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
2: अब हर शाम महसूस होती है और भी खास, जब होती है गोंडा की हस्तियों से आपकी मुलाकात। हर शाम हम आपसे करवाते हैं उन हस्तियों की मुलाकात जो होते हैं अपने क्षेत्र के खास। सुनना ना भूले प्रोग्राम गोधुली, हर शाम 5 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हाँ जी, सो भाई आपके लिए खुशखबरी है जो फ़िलहाल मुझे लगता है दे ही देना चाहिए। जिस चीज़ का इंतज़ार आपको न जाने कब से लग रहा था, फ़िलहाल वो ट्राई ने दे दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टैरिफ प्लान की जिसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, बस SMS और कॉलिंग का मिल जाए, जो कि सस्ता हो। इसकी डिमांड बहुत दिन से, बहुत वक्त से लगातार जनता की तरफ से उठ रही थी। फ़िलहाल ट्राई ने इस पर विचार करते हुए आपको, टेलीकॉम कंपनीज अथॉरिटी को ये बता दिया है कि भैया फ़िलहाल ऐसा टैरिफ लाना होगा। क्या है पूरी बात जो कि ट्राई ने कहा है टेलीकॉम अथॉरिटीज से, आइए आपको बताते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

हाँ जी, तो चलिए भाई आपको ले चलते हैं इस अपडेट की तरफ, जो कि आपके लिए एक अच्छी खबर है, और आप ये बाकी लोगों तक पहुंचाइए जिनको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती या बहुत कम होती है, वो किसी से शेयर करके ले सकते हैं कभी कभार। और सस्ता प्लान है जिसमें सिर्फ कॉलिंग और SMS की सुविधा मिलने वाली। दरअसल आपको बता दें कि ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सिर्फ कॉल और SMS का इस्तेमाल करने वाले जो कस्टमर्स हैं उनके लिए वॉइस SMS ओनली प्लान उपलब्ध कराने का प्रावधान कर दिया है। और इसके तहत क्या है कि टेलीकॉम कंपनी को कम से कम एक ऐसा स्पेशल टैरिफ वाउचर देना ज़रूरी होगा, जिसको हम STV बोल रहे हैं, स्पेशल टैरिफ वाउचर, जिसमें सिर्फ वॉइस और SMS की फैसिलिटी हो और डेटा शामिल ना हो, है ना। एंड इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इस फैसले से ख़ास तौर पर उन कस्टमर्स को फ़ायदा मिलने वाला है जिनका मोबाइल डेटा का इस्तेमाल नहीं होता या बहुत कम करते हैं। सो ट्राई ने बताया कि ऐसे प्लान जो है बुज़ुर्गों के या जो कम आय वाले हैं, जो कम कमाने वाले हैं और कम डिजिटल इस्तेमाल करने वाले, जिनको ऑफ कोर्स इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं जानते उसके बारे में, उनके लिए ये इस्तेमाल करने लायक हो सकते हैं। इसके अलावा ट्राई के नियमों के तहत टेलीकॉम कंपनीज़ को कम से कम एक ऐसा प्लान अवेलेबल कराना होगा जिसकी वैलिडिटी 30 दिन हो, यानी 30 डेज का होना चाहिए। सो कंपनियों को ऐसा प्लान भी देना होता है जिसे ग्राहक हर महीने एक ही तारीख को रिन्यू करा सके। साथ ही ग्राहकों को अब 30 दिन या उससे कम वैलिडिटी वाले ग्राहकों के लिए कंपनियों को वॉइस और SMS का इस्तेमाल करने वाला प्लान अवेलेबल कराना होगा ही। सो ट्राई के हिसाब से वॉइस SMS ओनली प्लान डेटा की सुविधा नहीं होती है, ऐसे में प्लान सिर्फ कॉल और SMS की ज़रूरत वाले ग्राहकों के लिए बनाए गए हैं। और ट्राई ने इस नियम को 21 सितंबर 2026 को फाइनल किया है। ये साल 2024 में लागू किए गए 12वें संशोधन के बाद किए गए रिव्यू का नतीजा है। सो फिलहाल इससे उन लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है जिनको बिला वजह इतना महंगा रिचार्ज कराना पड़ता है, जबकि डेटा का इस्तेमाल वो बिल्कुल भी नहीं करते, बस उनको कॉल करना होता है या SMS की ज़रूरत होती है। ऐसे कई सारे फ़ोन्स हैं जो अभी भी कीपैड लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, या स्मार्टफोन होने के बावजूद उनको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है, वो बुज़ुर्ग हैं या बहुत कम आय वाले लोग हैं जिनको इंटरनेट कहीं मिल जाएगा तो उनका काम हो जाएगा और कभी कभार ही काम होता है। सो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत का फ़ायदा ज़रूर उठा लें। तो चलिए भाई अब चलते हैं आपके भेजे गए कंटेंट्स की तरफ। सबसे पहले गुंजन जौहरी जी, जो कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, लिखती हैं कि चांद से पूछना कभी मेरी तन्हाई का सबब, क्यों हर रात मेरी आंखों में ठहरा एक अजब सा गम है। तेरी यादें आज भी दिल के करीब रहती हैं, तो दूर होकर भी मेरी रूह के नसीब में हैं। आंसू छिपा कर मुस्कुराना अब आदत सी बन गई, तेरे बिना भी जिंदगी चलती है मगर धड़कन नहीं। तेरा साथ था तो हर रास्ता खूबसूरत लगता था, अब हर मंजिल पर दिल तेरा ही पता पूछता है। चांद भी आज मेरी खामोशी को पढ़ने लगा है, शायद उसे भी किसी के बिछड़ने का दर्द सताने लगा है। मेरी रूह आज भी तेरे लौट आने की आस रखती है, पर यह अलग बात है कि अब मेरी खामोशी रोती है। उफ क्या बात है, इतनी गहराई से लिखा है गुंजन जौहरी जी फ्रॉम सहारनपुर उत्तर प्रदेश। थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा आप लिखते हैं, और आप ऐसे न जाने कितने सारे सुखनवर लिखने वालों को आप जोड़ते भी हैं, उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद हमारे आकाश जी, जो कि नवदीप वेस्ट बंगाल से लिखते हैं, वो भेजते हैं कि कुछ दिन पहले मॉम की तबीयत बिगड़ गई थी, उन्हें लेकर हॉस्पिटल कुछ दिन रहना पड़ा। सो हॉस्पिटल के उन गलियारों में काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, बहुतों को आप बीती जानने को मिले। अब मॉम ठीक हैं, अब घर आ गई हैं, लेकिन उस दौरान जिन लोगों से मिला उनके चेहरे अब भी बार बार आँखों के सामने आ जाते हैं। इसलिए आज की ये कुछ पंक्तियाँ उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त किसी बीमारी, किसी दर्द या मुश्किल से जूझ रहे हैं। अर्ज़ है जो आज बीमारी की रात से गुज़र रहे हैं उनके हिस्से में कल की सुबह लिख दे ऐ खुदा। अर्ज़ है जो आज बीमारी की रात से गुज़र रहे हैं उनके हिस्से में कल की सुबह लिख दे ऐ खुदा। हर दर्द को हौसले में, हर आंसू को मुस्कान में बदल कर सभी को जीने की वजह दे दे ऐ खुदा। और जिन घरों में आज दवाओं की महक और फिक्र का सन्नाटा है, वहाँ जल्द ही सेहत

और शादमानी की किलकारी गूंजे कि जिन घरों में आज दवाओं की महक और फिक्र का सन्नाटा है वहां जल्द ही सेहत और शादमानी की किलकारी गूंजे। जो भी जिस दर्द से लड़ रहा उसके सिर पर अपना करम रख, उसे मुकम्मल शिफा नसीब दे ऐ खुदा। क्या बात है, इतनी खूबसूरत बात है। आपका ऑब्जर्वेशन उस हॉस्पिटल में वहाँ पे परेशान लोगों पर गया। थैंक यू सो मच टू यू मिस्टर आकाश। साथ में आप लिखते हैं, गॉड ब्लेस एवरीवन, सेंडिंग माय वर्चुअल हग्स टू द होल यूनिवर्स। पूरी यूनिवर्स को आप अपना वर्चुअल हग दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत उम्दा लगा हम लोगों को ये आपकी जो ऑब्जर्वेशन के बाद चीज़ें सामने आई हैं। थैंक यू सो मच। पुनीता सिंह जी लिखती हैं, जब से तुम आए हो मेरी ज़िंदगी में हर लम्हा एक ख्वाब सा लगता है, तुम्हारे बिना ये दिल उदास और तुम्हारे साथ हर पल नायाब सा लगता है। ज़माने की इस भीड़ में हमें किसी और चीज़ की अब आरजू नहीं रही, तुम मिल गए हो मुझे तो रब का हर एक तोहफा बेमिसाल लगता है। अब थाम कर तेरा हाथ मैं इस दुनिया से बेफिक्र सी चलने लगी हूँ, तेरी मोहब्बत के चराग से मेरी रूह का हर कोना महकने लगा है। क्या बात है, बड़ा ही खूबसूरत अंदाज है आपका पुनीता सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वर्षा कुमारी पायल जी लिखती हैं कि बिछड़े भी नहीं, मिले भी नहीं, अजब फूल थे खिले भी नहीं, कुछ बातें थी आंखों में ठहरी हुई, लब तक आई कहीं भी नहीं, रास्ते हमारे एक ही थे फिर भी साथ चले भी नहीं, तुम पास रहे एहसास रहे पर हाथ कभी मिले भी नहीं, एक रिश्ता था नामहीन सा जिसे खोया भी नहीं पाया भी नहीं, हम दोनों मौसम जैसे थे बरसे भी नहीं सूखे भी नहीं, कितना अजीब था वो अपनापन, अपने भी थे अपने हुए भी नहीं, बिछड़े भी नहीं मिले भी नहीं, अजब फूल थे खिले भी नहीं। ओफो, एक तो आपकी इन बातों की गहराई, दूसरा इसकी राइमिंग, क्या बात है, लाजवाब शानदार बेमिसाल वर्षा कुमारी पायल जी, थैंक यू सो मच हम तक पहुंचाने के लिए। यामिनी चौहान जी लिखती हैं कि आज फिर रात तुम्हारी तरफ झुककर सोई है, मैंने आंखें बंद की तो तुम्हारी आवाज़ ने नींद को मेरे पास आने नहीं दिया, तकिए पर सिर रखा तो लगा जैसे तुम्हारी कोई अधूरी बात अब भी वहीं पड़ी है, मैंने करवट बदली रात भी मेरे साथ करवट बदलती रही, सुबह हुई तो पता चला तुम कहीं गए ही नहीं थे, तुम तो बस मेरी नींद में थे और मैं सारी रात तुम्हें जगाती रही। क्या बात है, वाह, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत शानदार, थैंक यू सो मच। बबीता शर्मा जी लिखती हैं कि मेरे जिस्म को नहीं इस रूह को छुआ है तुमने, मेरे जिस्म को नहीं इस रूह को छुआ है तुमने, खामोश धड़कनों को जैसे सदा किया है तुमने, ये प्यार लफ्ज़ों लम्हों वादों का मोहताज नहीं, बिन छुए भी इश्क को मुकम्मल किया है तुमने, मेरी तन्हाइयों के सूने अंधेरे कमरों में याद बनकर जैसे दिया सा जला दिया तुमने, मैं टूटी भी तो आवाज़ नहीं हुई दुनिया में, अंदर ही अंदर मुझे फिर से गढ़ा है तुमने, ये कैसा रिश्ता है जिस पर हक भी नहीं है मेरा, फिर भी हर सांस पे नाम अपना लिखा है तुमने, न बाहों की ज़रूरत न लम्स की ख्वाहिश, अब रूह से रूह का जो सिलसिला किया है तुमने, मेरे जिस्म को नहीं इस रूह को छुआ है तुमने, मुझ में मुझसे गहरा कोई बना दिया है तुमने। माय गॉड, आज तो आपके लोगों के ये भाई लिखावट, ये अंदाज, मतलब लाजवाब, जिसकी तारीफ जितनी की जाए कम है, बहुत शानदार, बहुत बहुत शानदार। इसके बाद जो अगली ऑफकोर्स बातें आ रही है वो कुंदन राज दत्ता उर्फ निश्चल जी की पूर्णिया बिहार से आ रही हैं कि तुम्हारी मुस्कान में मेरा जहां, ये उनवान है, ये विषय है। आगे लिखते हैं, तुम्हारी मुस्कान में मेरा जहां बसता है, हर धड़कन में बस तुम्हारा नाम सजता है, माथे की बिंदी जैसे चांद की लाली, तुम्हें देख कर महक उठी मेरी हर डाली, मेरी आंखों में सावन की गहराई है, उनसे ही मेरी हर खुशी समाई है, लबों की हंसी गुलाब से खिल जाती है, दिल की वीरानी भी बहार बन जाती है, तेरे कंगनों की खनक गीत सुनाती है, मेरी तन्हाई को भी मुस्कुराती है, तेरी सादगी सबसे हसीन लगती है, हर अदा मेरी रूह से उतरती है, जब भी तू यूं नज़रों से बात करती है,
मेरी दुनिया मोहब्बत से भरती है। तेरा चेहरा सुबह की पहली किरण लगे, हर अंधेरा तेरे आने से शरण लगे, तेरे संग हर मौसम गुलजार लगता है, सूना दिल भी त्योहार लगता है, तेरे हाथों की मेहंदी दुआ बन जाए, मेरे हर कल की वजह बस तू बन जाए, मेरी आवाज़ में मीठा सा एक राग है जिसमें मेरा हर एक सपना आबाद है, मैं चांद नहीं तेरा आसमान बन जाऊं, तेरे हर दर्द का मुस्कान बन जाऊं, तेरे संग उम्र की राहें कटती रहे, प्यार की बारिश यूं ही बरसती रहे, न कोई वादा बड़ा न कोई शोर रहे, बस तेरा मेरा प्रेम हर ओर रहे, अगर इश्क का कोई मंदिर होगा कहीं, उसकी हर दुआ में बस तुम ही रहोगी यहीं। क्या बात है भाई, मैंने कहा ना इतना ज़बरदस्त इतना शानदार आप सब लोगों ने लिखा है, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। थैंक यू सो मच टू एवरीवन एंड स्पेशल थैंक्स हमारी गुंजन जी को जिन्होंने ये सब कुछ यहाँ तक पहुँचाने में हेल्प की है। थैंक यू सो मच टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गीता श्रीवास्तव जी लिखती हैं बहुत सुंदर कविताएँ, थैंक यू। एंड गोपाल कुमावत का भी वेलकम करते हैं। प्रीति जी बहराइच से लिखती हैं सभी की पंक्तियाँ औसम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको भी पसंद आया अच्छा लगा, ये बहुत अच्छी बात है। एंड यस आई होप कि भाई आपको शो भी आज का काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। फ़िलहाल चूंकि अब चलने का वक्त आ गया है तो आपसे इजाज़त हम ज़रूर ले रहे हैं और साथ ही साथ इस वादे के साथ जा रहे हैं कि भाई वापस से जल्द ही लौटेंगे। फ़िलहाल आप बने रहिए अपने 89.6 FM वाले स्टेशन पर।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम।

0: जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 9260 9186 9260 9186। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा,
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

0: हेलो किरण दी, कैसे याद किया आज?
1: हेलो समता, अरे लाली बुआ को तो तुम जानती हो ना, वो गोंडा आने वाली थी। उनको 89.6 FM रेडियो ज्ञानस्थली में सुन सहेली प्रोग्राम के लिए बुलाया था श्वेता ने, पर उनकी भैंस बीमार हो गई। उन्होंने पूरी गांव की गूंज की टीम को सिद्धार्थ नगर अपने गांव पिपराहवा बुलाया है।
0: अरे फिर तो बहुत मजा आएगा, हम श्वेता जिम्मी को भी बोल देते हैं तैयार होने को। और ये तो बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर पर ही है, इतनी ठंड में खूब मजा आएगा।
2: अरे समता दी बहुत खुश है, हम सबको भी बताइए क्या बात है। वैसे हम लोगों ने सुन लिया है चोरी चोरी आप लोगों की बातें कि हम लोग सिद्धार्थ नगर जा रहे हैं, जो 29 दिसंबर 1988 को बस्ती जनपद के उत्तरी भाग को अलग कर सिद्धार्थ नगर बनाया गया। इस जनपद का नामकरण गौतम बुद्ध के बचपन के नाम राजकुमार सिद्धार्थ के नाम पर हुआ।
3: वाह ज्ञानी बाबा, श्वेता की जय हो। मैं तो चली गाड़ी में बैठने, किरण दी आ गई हैं, उनके गाने की आवाज सुनाई दे रही है।
4: हमार राजा राखे दुई रनिया, बड़े दुख की बात है।

0: वाह किरणी, आप आती हैं और अपने गानों से जोश भर देती हैं। आज तो बहुत मजा आएगा, लाली बुआ के हाथ के पुलाव भी खाने को मिलेंगे।
1: हाँ सही कह रही हो, काला नमक सुगंधित चावल तो है ही और बहुत प्रसिद्ध है, ये तो विदेशों में भी एक्सपोर्ट होता है।
2: जब हम चावल खाते हैं तब कभी नहीं सोचते कि किसान भाई कितनी मेहनत से हमें चावल देते हैं, पर डाइनिंग टेबल पर बैठे हम लोग पुलाव या बिरयानी बनाने वाले की जमकर तारीफ करते हैं, पर ये चावल दिया किसने, उगाया किसने, ये कभी नहीं सोचते।
3: हाँ किरणदी, गांव की गूंज की टीम का उद्देश्य तो यही है, गांव की मिट्टी से फिर से सबको जोड़ने का, पर हम सब मिलकर कहते रहते हैं अरे गांव में क्या रखा है।
0: नए जोश के साथ शुरुआत करते हैं और एक बार फिर गांव की गूंज की पूरी टीम लोगों को बताते हैं कि गांव से दूर होकर के हमने क्या खोया है, पर जोश के लिए गाना तो बनता है भाई।

0: आइए आइए, आप सभी का स्वागत है सिद्धार्थ नगर में। मैं अपने फ्रेंड के साथ कपिलवस्तु घूमने गया था, पता चला आप लोग आ रहे हैं तो मैं रुक गया।
1: हरिओम, ये तो बहुत अच्छा हुआ। लाली बुआ तो शायद डॉक्टर के पास गई हैं अपनी भैंस के लिए।
2: अरे भैंस के भी डॉक्टर होते हैं? ये तो मैंने पहली बार सुना है।
3: वेटनरी डॉक्टर, गाय भैंस कुत्ते हर जानवर के डॉक्टर होते हैं। ये जानवर की भी वैक्सीन होती है।
0: सही बोला जिम्मी तुमने, जानवरों का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है और जाड़े में उनको भी तो सर्दी जुखाम हो जाता है।
4: हरिओम भैया, फिर बताइए कैसे हम लोग जानवरों की देखभाल करें? जाड़े में चारों ओर पहाड़ी पहाड़ दिख रहे, कितना सुंदर है। पिहरवा गांव पर ठंड भी और ज्यादा पड़ती होगी।
2: पहले यह लाल रंग का आयुर्वेदिक पानी पियो। यह सप्पन वुड के पेड़ के छिलकों को पानी में उबाल करके और जब हल्का गुनगुना रहे तब इसको पियो, ये बहुत फायदा करता है।
3: स्वप्न वुड, इसे इंडियन रेड वुड भी कहते हैं। देखो यह पेड़ भी यहाँ लगा है। आयुर्वेदिक पानी हम लोग के यहाँ नहीं पॉपुलर है। किरण दी के गाने को देखो, कितने लोग वेट कर रहे हैं।
5: अरे मैं पैसे वाली बलम मोरा बनिया,

0: आप लोग को पिपराहा गांव घुमाने ले चलता हूँ, पर उससे पहले हम जानवरों को सर्दी से कैसे बचाएं इस पर बात कर लेते हैं। ठंडी के मौसम में अधिकतर जानवर कोल्ड स्ट्रोक से मरते हैं और काफी मात्रा में बीमार भी पड़ते हैं। इससे बचाव करने के लिए हमें जानवरों के आसपास अलाव जला के रखना होगा ताकि उनके पास नमी न बने, और दूसरा उनको तिरपाल से या टाट के बोरे से ढक के रखना चाहिए ताकि उनको सर्दी न लगे।
1: खाने पीने का विशेष ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए ठंड में गुनगुना पानी पिए और पिलाएं, जरूर पिलाएं, क्योंकि साफ सफाई का भी ध्यान रखें और गुनगुना पानी भी पिए।
2: एक बात हमें भी पता है कि ठंड में गाय भैंस को रात के समय सूखा चारा खिलाना चाहिए और हरे चारे और मक्के का सेवन भी जरूर कराना चाहिए।
3: बहुत बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू। दूध हम सभी पीते हैं और चाहते हैं कि बिल्कुल प्योर मिले, पर उन जानवरों की देखभाल के बारे में हम कभी नहीं सोचते।
4: बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, पर हरिओम भैया, अगली बार वैक्सीन और सभी बीमारियों के बारे में डिटेल में बता दीजिएगा।
0: ठीक है जिमी, चलो हम सब लोग यहाँ से पुरातात्विक स्थल को देखने चलते हैं जहाँ मठों के खंडहर के अवशेष मिले थे।
2: यहाँ देखो किरण दीदी के लोकगीत सुनने कितने लोग बैठे हैं। लो श्वेता, ढोलक लो और किरण दी को हारमोनियम भी दे दो।
5: अरे निमिया के तीते लगे पाती,

0: कुछ विद्वान मानते हैं कि पिपराहवा गांव शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु के प्राचीन शहर की जगह है, जहां भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल के पहले 29 साल व्यतीत किए थे।
1: माना जाता है कि बुद्ध भगवान की मृत्यु के बाद राख का एक बड़ा हिस्सा यहां दफन हुआ था, जो उनके अपने शाक्य वंश को दिया गया था। एक बड़ा स्तूप और कई मठों के खंडहर है, साथ में एक संग्रहालय भी है। देखो कितना बड़ा स्तूप है यह।
2: चलिए, नहीं तो कोहरा गिरने लगेगा।
3: देखो देखो, लाली बुआ पुलाव और मूंग की दाल के कबाब भी ले आई हैं। आपकी भैंस कैसी है लाली बुआ?
1: वहाँ बहुत टेस्टी खाना है, स्पेशली टमाटर की चटनी रास्ते के लिए बुआ ने गर्म करके दी है और साथ में मूंगफली भी बांध के दी है।
0: अलाव के बगल में बैठ के खाना खाने का तो मजा ही कुछ और है। और वो देखो, किरण दीदी गुनगुनाने भी लगी।
4: अरे दीदी, गाना तो सुना ही दीजिए ना, अब तो पूरा माहौल बन गया है।

पक्षियों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। ये तो सभी बोलेंगे जब देखेंगे आपका शानदार इवेंट। अब आपके इवेंट्स को यादगार बनाने के लिए फ्लरिश इवेंट्स मौजूद है गोंडा में अपने बेहतरीन अनुभव के साथ, जहां वेडिंग प्लानिंग एंड केटरिंग मैनेजमेंट, वेडिंग डेकोरेशन, ब्राइड एंड ग्रूम एंट्री, एंगेजमेंट्स एंड प्री वेडिंग फंक्शंस, वरमाला एंड एंट्री कॉन्सेप्ट्स, रिचुअल कोऑर्डिनेशन एंड मंडप सेटअप, थीम एंड डेस्टिनेशन वेडिंग, सरप्राइज इवेंट्स, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट इवेंट्स, गेम्स एंड मेनी मोर। ओनर है रिया श्रीवास्तव। आज ही विजिट करें राजनंदी कॉम्प्लेक्स नियर जेपी पैलेस गोंडा। कॉन्टैक्ट करें 7905250060।
1: हर कलाकार का सफर तन्हा शुरू होता है, लेकिन साथ होती है आपकी सद्भावना और आशीर्वाद की मंगल ध्वनि। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बने।

हेलो एवरीवन, समय हो चुका है 12:14 और आ चुकी हूँ मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका मनपसंद प्रोग्राम। भाई आप जानते हैं कि जब भी आता है शनिवार का दिन तो आती है इन्फॉर्मेशन की बौछार, और इन्फॉर्मेशन भी ऐसी जो कि आपको मदद करती है आपके लिए ही, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके हित के लिए। तो भाई जैसा कि आप जानते हैं कि हर शनिवार हम चल आते हैं लेके एक बहुत ही बेहतरीन शो स्वास्थ्य संगिनी, जो कि होता है एक स्मार्ट एनजीओ के प्रोग्राम के तहत जिसका नाम है सेहत से ही लाभ कई। तो भाई आज की जो टॉपिक है ना वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, और इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पे है वो है पॉपुलेशन। अब पिछले शनिवार जब हमने जिक्र किया था फैमिली प्लानिंग की, तो हमने बात की थी कुछ प्रॉब्लम्स की, और कुछ नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जो कि फेस कर रहा है इंडिया, और साथ ही साथ आप क्योंकि जो जनसंख्या है वो बढ़ती ही जा रही है, कंट्रोल में आ नहीं रही है, तो उसके सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो हमने उसके जिक्र किया, और साथ में ये जाना कि आज ही नहीं, आज के बाद, आज के 10 साल बाद या फ्यूचर में जो फ्यूचर की जनरेशन आने वाली है वो इस प्रॉब्लम को कितनी बुरी तरीके से फेस करेगी और उन्हें इन सारी चीज़ों से क्या नुकसान होने वाला है। तो फिलहाल पिछली बार काफ़ी सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े थे चैट बॉक्स में, और काफ़ी सारे लोगों ने कॉल भी किया था, वो हमसे अपनी राय उन्होंने शेयर की कि कैसे वो क्या कर सकते हैं, वो क्या सुझाव दे सकते हैं फैमिली प्लानिंग को लेकर के, या कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, उसके बारे में उन्होंने हमें काफ़ी सारी राय दी थी। तो इस बार भी आई होप कि आप सब हमारे साथ जुड़ेंगे और ये बताएंगे कि आप क्या सोचते हैं फैमिली प्लानिंग को लेकर के, क्या क्या क्या लॉस आपकी नज़र में हो रहा है इंडिया को और इस ज़माने के हर एक एक बंदे को जो हो रहा है पॉपुलेशन की बढ़ती, यानी कि बढ़ती नंबर्स जो पॉपुलेशन के हैं उससे क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो फिलहाल हम बात करेंगे सॉल्यूशन की, क्योंकि हर एक एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन, कोई ना कोई हल, कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकल ही आता है कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत पहला ऐसा देश है जिसने फैमिली प्लानिंग को स्टार्ट किया था? 1952 में भारत पहला ऐसा देश था जिसने फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए पहला कोई कदम उठाया था। लेकिन इतने साल पहले इतना बड़ा कदम उठाने के बाद भी अगर इंडिया में पॉपुलेशन नहीं रुक रही है तो उसका क्या कारण है? वहाँ अगर हम बाकी देशों की बात करें, जिन देशों में जो फैमिली प्लानिंग है वो काफ़ी देर में शुरू हुई, वहाँ पे जनसंख्या कंट्रोल है, और जो जनसंख्या है वो हर एक एक चीज़ों का, हर एक एक, चाहे कोई सरकारी योजना हो या कोई ऐसा नेचुरल चीज़ें जो हैं जैसे पानी हो गया, खाना हो गया, उसका भरपूर फ़ायदा उठा रही है। लेकिन इंडिया जिसमें सबसे पहले शुरू किया गया, उस देश में आज जनसंख्या इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है? साथ ही साथ जो यहाँ पे खाद्य पदार्थ हैं, पानी हो गया, या फिर जो सरकारी पॉलिसीज़ हैं, यहाँ तक कि एम्प्लॉयमेंट लेकर के इतनी सारी मारामारी क्यों है, क्या उसका रीज़न है, आज हम इन सब पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर इतनी बड़ी पॉपुलेशन से हमारा क्या लॉस है। भाई लॉस की अगर हम बात करें ना, तो ये एक ऐसी समस्या है, ये इतनी बड़ी समस्या बनी ही इसलिए क्योंकि इसके नुकसान बहुत हैं, लेकिन जो इसके समर्थन में लोग बोलते हैं वो भी बहुत हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लॉस क्या क्या होते हैं। हमें सबसे बड़ी बात जो आजकल हर एक एक यूथ सोच रहा है, और हर एक एक यूथ के मन में यही है कि भाई आगे चल के हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि आज के टाइम पे जब युवा कंपटीशन के बारे में सोचता है या फिर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो उसके बारे में सोचता है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, तो सबसे पहले ये बात आती है कि भैया इतने लोग हैं, सीट इतनी कम है, तो कैसे हमें नौकरी मिलेगी। आज के ज़माने में जहाँ एक सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ही लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, सीटें बहुत कम होती हैं, तो जब एंट्रेंस एग्ज़ाम का ये हाल है तो जो जॉब्स के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं उनका क्या हाल होगा। यहाँ पे एक सीट की जॉब निकलती, एक सीट की वैकेंसी निकलती है, और लाखों लोग उसे भरने के लिए आ जाते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की। सबसे बड़ा रीज़न अगर कोई है तो यही है कि आपकी जो जनसंख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ यही अनएम्प्लॉयमेंट ही एक बहुत बड़ा कारण नहीं है, सबसे बड़ा कारण तो ये भी है कि इंडिया जैसे देश में जहाँ पे जो अभी भी डेवलपिंग है उसमें काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करके अपनी स्थिति को, अपने स्टेटस को बढ़ाना चाहते हैं, अपने बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते हैं और इतना कमाना चाहते हैं कि एटलीस्ट उनके घर वाले दो टाइम का खाना अफोर्ड कर सके, एक अच्छी ज़िंदगी वो जी सके। लेकिन उसी इंसान अगले हाथ पे क्या करता है कि वो कभी अपनी फैमिली की प्लानिंग के बारे में सोचता ही नहीं है।
अगर हम गरीब हैं और हम हमारे घर में बच्चों की संख्या ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं बच्चों की ज़्यादा संख्या हमारी गरीबी का कारण बन सकती है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, तो जब हम फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं, तो फैमिली प्लानिंग में सिर्फ और सिर्फ यही देखा जाता है कि जो घर की औरतें होती हैं, जो माँ होती है, वो सबसे पहले कदम उठाती है कि बस दो बच्चे बहुत हैं, तीसरा बच्चा नहीं करेंगे या क्यों नहीं करेंगे। उसका रीज़न भी वो देती है कि पैसे नहीं है या उसकी तबीयत ख़राब है, वो नहीं चाहती। लेकिन यही चीज़ पुरुषों में क्यों नहीं है? क्योंकि आज के युग में देखा जाए तो भारत में यही मानते हैं कि जो पुरुष है वही कमाता है, वही लाता है, और पुरुष ही सबसे ज़्यादा घरों में पुरुष ही ऐसा है जहाँ से जो वो इनकम जो है अपने पैसों का अरेंजमेंट करता है अपने घर चलाने के लिए। तो जब पुरुष इतना ज़्यादा काम करके एक एक पैसे जोड़ते हैं अपना घर चलाने के लिए, वही पुरुष ये क्यों नहीं सोचता कि उनके घर में लोग ज़्यादा हो रहे हैं, बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं, उनकी आगे पढ़ाई, उनका पालन पोषण, उनका खाना पीना, उनका रहना कैसे वो मैनेज करेंगे? तो आज हम इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पे बात करेंगे। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ हैं जो आपको शायद नहीं पता होंगी, जो आपको करनी चाहिए। इतने सारे लॉसेस जिसके बारे में हमने अभी बात की या जो हमने पिछले सैटरडे भी बात की थी, उसके सारे सॉल्यूशन, उसका सारा हल, आज सारे मसले हम हल करेंगे जो कि पॉपुलेशन, हाईएस्ट पॉपुलेशन जो इंडिया की है उसकी वजह से हमें फेस करने को मिल रहा है, और साथ ही साथ इंडिया को भी। इन सब पे हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, आपको आना है चैट बॉक्स में और ये बताना है कि आप अगर अपने से कोई चीज़ सोचते हैं कि आप क्या कर सकते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए, तो वो आके आप चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ हमसे कॉल पे भी आप जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 6393316429। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 6393316429। इस नंबर पे कॉल करिए और अपनी राय भी दीजिए, क्योंकि आप ही हैं सोसाइटी, आप ही हैं जनता, आप ही हैं इंडिया, और आप ही हैं इंडिया का कल। अगर आपकी यही समस्या के बारे में आप जागरूक नहीं हैं, तो भाई कौन ही जागरूक होगा। तो आइए अपनी राय भी शेयर करिए, और ये भी शेयर करिए कि आपको क्या लग रहा है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन जो होती जा रही है इंडिया की, उससे हमें क्या सारे लॉसेस हो रहे हैं।

वेलकम बैक एवरीवन, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका मनपसंद शो स्वास्थ्य संगिनी, जहाँ पे हम लाते हैं बहुत ही मज़े की, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन। आज हम बात कर रहे थे ग्लोबल समस्या के बारे में, हमारे इंडिया की सबसे बड़ी समस्या के बारे में, जो कि है पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल होगी उसके बारे में भी मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि भाई जब तक आप एक अच्छी फैमिली प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक आपकी जो ये प्रॉब्लम है ना पॉपुलेशन वाली, वो नहीं कंट्रोल होने वाली है। तो हम इस पे आज जिक्र कर रहे थे। सबसे पहले हम बात करते हैं MMR की, यानी मैटरनल मोर्टैलिटी रेट की। अब हम बात करें अगर इसकी, तो अगर हम पूरे विश्व का देखें तो 197 पर 1,00,000 पे जो है मृत्यु दर होते हैं जो महिलाओं के होते हैं अपने बच्चों को जन्म देते वक्त। और अगर हम बात स्पेशली इंडिया की करें तो यहाँ पे 93 पर 1,00,000 पे डेथ होती है। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि आधी तो इंडिया में ही होती है, तो इंडिया के लिए ये कितनी बड़ी समस्या है। जब भी हम बात करते हैं बच्चों की, तो बच्चे सिर्फ हम प्लान करते हैं पूरा घर खुश होता है, लेकिन एक इंसान जिसको हमेशा घबराहट होती है वो होती है माँ, जो जिसको जन्म देना है या जो उस पूरे 9 महीने या उसके बाद जन्म का सफ़र तय करती है। उसी माँ के बारे में हम कभी नहीं सोचते कि उसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो क्या चल रही हैं, वो क्या सोच रही है। और उसको भी ये घबराहट होती है, उसको भी ये पता होता है कि वो किन किन चीज़ों से वो गुजर रही है। अगर हम बात करें तो मृत्यु दर हमारे यहाँ इतना ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जब हम बात करते हैं फैमिली प्लानिंग की बच्चों की, तो हमारे यहाँ हमारी तो सुनी ही नहीं जाती। हमारे यहाँ सुनी जाती है हमारे घर के बूढ़े बुजुर्ग की, जिन्हें चाहिए होता है पोता पोती, किसी को चाहिए होता है पोता पोती, किसी को चाहिए नाती, किसी को चाहिए नातिन। तो ये सारी चीज़ें जब हम सुनने बैठ जाते हैं ना, तो हमारी जो अपनी इच्छा है, जो हमारा अपना मन है, जो कहीं ना कहीं सही होता है कि हमें कितने बच्चे प्लान करने चाहिए, वो हम दबा के रह जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जब हम फैमिली प्लान की सोच रहे थे, तो ये हमारे इंडिया में कभी भी पति पत्नी का जो ये ऑप्शन होता है वो उनकी सोच होती है, उनका अपने लिए जो विचार होता है वो कभी जाहिर कर ही नहीं पाते। वो ये सोचते हैं कि ये जो परिवार कह रहा है वही ठीक है, हमारी परिवार के प्रति जो जिम्मेदारी है वो यही है कि हम इनकी बात सुने। तो जब तक दादी नहीं कहेंगे बस तब तक बच्चे होते रहेंगे। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेकार है और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारे इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि ये जो भगवान का आशीर्वाद है ना, ये दादा दादी आपसे कहते हैं कि बेटा खाओ खाओ खाओ, आप खाते रहते हैं, और आप ये भूल जाते हैं कि इससे आपको कितनी समस्या होने वाली है, बच्चे की माँ को कितनी समस्या होने वाली है, और आगे चल के फ्यूचर में आपको कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपनी धार्मिक मान्यताओं को बहुत ज़्यादा मानते हैं। जब हम बात करते हैं फैमिली प्लानिंग की, तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप गर्भ निरोधक चीज़ों का सेवन करिए, या फिर आप सेफ चीज़ें यूज़ करें जिससे आपकी जो है आपके घर में बच्चे ज़्यादा ना हो, इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा ना बढ़े। लेकिन हम ये सोचते हैं कि ये अगर हम करेंगे तो हम ये पाप कर रहे हैं, जो हर एक धर्म में कहीं ना कहीं माना जाता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर जगह ये होता है कि अगर हम गर्भ निरोधक गोली खाते हैं या कोई ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं जो हमारी फैमिली प्लानिंग में गर्भ निरोध में काम आए, तो वो हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, हम एक बच्चे को मार रहे हैं, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ हमारी मान्यताएँ होती हैं, ये एक मिथ होती है जिससे हम फॉलो करते रहते हैं और हमारे घर में आगे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती ही रहती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इग्नोर कर दी जाती हैं फैमिली प्लानिंग में। ये दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स की बात हमने की। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो पहले ऐसे सोचा जाता था कि घर में जितने लोग रहेंगे उतने ही कमाने वाले रहेंगे और उतने ही परिवार में इनकम का जो है सोर्स बढ़ेगा और मदद कराने वाले ज़्यादा रहेंगे, पर ऐसा नहीं है। अगर मैं हाल ही की बात बताऊं तो अभी जल्दी ही मैं अपने गांव गई थी, तो वहां पे ये बात हो रही थी कि भैया जब घर में ज़्यादा लोग रहते हैं ना तो दूसरों की ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे ही कोई त्यौहार हो तो हमारे यहाँ तो अपने घर वालों से ही घर भर जाता है, तो ये कोई अच्छी बात है। और ये बात करके सब बहुत खुश हो रहे थे, एक घर में 20 से 25 लोग हो जाते हैं। ये क्यों? क्योंकि वो भगवान का आशीर्वाद है और हम उसे अपने मन से नहीं कर रहे। इस
सारी चीज़ों का मतलब ये नहीं है कि वो आपकी मान्यताओं को, आपकी धार्मिक मान्यताओं को आपको ठेस पहुंचाने की, पर ये बात है सिर्फ और सिर्फ एक जागरूकता की जो हम सब में होनी चाहिए। इस सारी चीज़ों को सराहा ना जाए कि इतने सारे बच्चे हो गए, ये बहुत बड़ी बात है, आपने बहुत ही बड़ी अचीवमेंट आपके लिए है, पर ये अचीवमेंट ही आपके लिए भविष्य में जाके बहुत ही बड़ी पनिशमेंट साबित हो सकती है। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो हमने बात की कि अपने मिथ को थोड़ा कंट्रोल करें, अपनी जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनको ज़्यादा सोचें, महिलाओं के स्वास्थ्य की भी ध्यान दें। एक तो भारत में वैसे ही महिलाओं की हालत थोड़ी ख़राब है, अगर हम कोई गांव देहात या फिर शहरी क्षेत्र में भी देखेंगे तो महिलाएं आजकल बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हम लोग, हमारी फैमिली हमें फैमिली प्लानिंग नहीं करने देती है, वो अपने तरीके से सारी चीज़ें चलाती है। एक बार शादी हो गई तो बच्चे कर लो, आज ये 2 साल का हो गया फिर बच्चे कर लो, और काफ़ी जगह तो दो बच्चों के बीच में 3 साल का गैप भी नहीं रखा जाता, जो कि उस बच्चे के लिए तो प्रॉब्लमेटिक है ही, बल्कि उस माँ के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इस पर हमें सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें हमारी ही सोच में, हमारी ही नज़र में कहीं ना कहीं गिरा रही हैं, पर हमें लगता है कि हम बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात को कभी कोई नहीं नकार सकता कि आज भी इंडिया में जो लोग हैं उनको लड़की से ज़्यादा लड़के प्रिय हैं, और जब तक लड़के नहीं होते हैं तब तक वो बच्चे करते रहते हैं कि अब लड़का हो जाएगा, और लड़के होने के चक्कर में काफ़ी सारी लड़कियाँ हो जाती हैं, उसका कोई ध्यान नहीं रखता, जिसकी वजह से आप पे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। आप बच्चों को क्या खिला रहे हैं, उनकी सही शिक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है, इन सब की प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। और अगर बच्चे नहीं हो रहे तो लड़कियां भी, कहते हैं हमारे भारत में कि लड़कियां हैं तो हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा, एक बार लड़कियां हो गई तो वो हमारे परिवार को आगे नहीं बढ़ाएंगी, जिसकी वजह से हमारी जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आपने ये ज़रूर देखा होगा कि जहाँ पे बहनें हैं वहाँ पे देखा जाए कि एक इकलौता भाई होगा, उससे पहले 3-4 से ज़्यादा लड़कियाँ तो होनी निश्चित है, जो कि ये हमारी सोच को दिखाती है कि हम अपनी एक जिद पूरी करने के लिए कितनी ज़्यादा जनसंख्या हम बढ़ा रहे हैं। उसके बाद बच्चों की जो एजुकेशन होती है उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, काफ़ी ज़्यादा उनके खान पान में जो है प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके पालन पोषण में, और काफ़ी ज़्यादा बच्चे मेंटली सफ़र करते हैं जब घर में लोग ज़्यादा हो जाते हैं। आपने काफ़ी बार ये बच्चों को कहते हुए सुना होगा कि हम अपनी मम्मा को शेयर नहीं करेंगे, हम अपने परिवार को शेयर नहीं करेंगे। और जो बच्चों की ग्रोइंग एज होती है ना, वो एक ऐसी एज होती है कि वहाँ पे अगर कोई चीज़ उन्हें हर्ट कर गई तो वो ज़िंदगी भर याद रखते हैं, और उस टाइम पे अगर आपने दो बच्चों के बीच में सही टाइम नहीं रखा, 3 साल से ज़्यादा का टाइम नहीं रखा, तो बच्चों में ये भावना आ जाती है कि भैया आजकल तो मम्मा मेरे छोटे भाई बहन को ही प्यार करती हैं, मम्मा तो मेरी मम्मा रही ही नहीं। वही वाला सीन हो जाता है कि मैंने माँ को तो देखा लेकिन माँ का प्यार नहीं देखा। तो आपके बच्चों के मन में ये भावना ना आए, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि दो बच्चे बहुत होते हैं और उन दोनों बच्चों के बीच में कम से कम 3 साल का गैप होना ही चाहिए, उससे कम तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें तो काफ़ी लोग समाज के लिए, अपने परिवार के लिए भी ज़्यादा बच्चे करने के लिए कहते हैं। देखिए, अगर हम बात करें समाज की, तो अगर आप किसी को देख के ये सोचते हैं कि इनके घर में अगर 4 बच्चे हैं तो हमारे घर में भी 4 बच्चे होने चाहिए एक कपल से, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप उन्हें देख के तो करें, लेकिन उसके अलावा जो बाकी घर होते हैं वो आपके लिए एक बहुत ही बुरी सोच डेवलप कर लेते हैं। आप खुद देखिए कि अगर आप किसी के घर में जाते हैं, बच्चे पे बच्चे आपको दिखते रहते हैं, कपल एक ही है, तो आपके मन में खुद ही आएगा कि भाई इतने सारे लोग रहते कैसे होंगे एक घर में, इनका पालन पोषण कैसे होगा, इनके खान पान कैसे होगा। तो हम काफ़ी बार समाज को देख के या फिर एक दूसरे को देख के हम ये सोचते हैं कि बच्चे तो ज़्यादा ही होने चाहिए, वो क्यूट बच्चे जितने होंगे उतना ही क्यूटनेस बढ़ेगी हमारे एक परिवार में, उतना ही चहल पहल रहेगी, बच्चे ही घर की शोभा हैं। पर वही जो बच्चे बड़े होके जो उनकी शोभा ख़राब होगी उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो ये थी कुछ सारी चीज़ें जो हमारे भारत में होती हैं, जो लोग फॉलो करते हैं, चाहे वो पुरानी मान्यताएं हों या फिर अपने बड़े बुजुर्ग का कहना ज़्यादा मानते हैं, या घर में रौनक बढ़ाने की चहल पहल को बढ़ाने के लिए वो बच्चे पे बच्चे करते रहते हैं, उससे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और क्या क्या रीज़न से, उसके बारे में जिक्र किया। लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम आएंगे और आपसे बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में कि एक्चुअल में हम कर क्या क्या सकते हैं
कि हम अपने से अपनी जो फैमिली है उसे प्लान कर सकें, अपने जो बच्चे हैं उनके एक अच्छे भविष्य के लिए सोच सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। और ये भी जानेंगे कि हमने भारत की बात कर ली, विश्व की बात कर ली, लेकिन हमारे गोंडा में क्या स्थिति है बच्चों के लेकर के, फैमिली प्लानिंग को लेकर के और पॉपुलेशन को लेकर के। इसमें लोगों के मिथ्स को भी जानेंगे, क्या क्या लोगों की सोच है उसको जानेंगे, और काफ़ी सारी चीज़ें जो इंटरेस्टिंग भी होंगी और आपको भी लगे कि हाँ ये सारी चीज़ें हमारे गोंडा में भी होती हैं और इसको हम कैसे सुधार कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: वेलकम बैक एवरीवन, आ चुकी हूँ वापस। मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका बहुत ही मनपसंद प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी, जिस पे आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही स्पेशल, पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल करना है। और सबसे बड़ी बात, हमने जान ली विश्व के बारे में, भारत के बारे में, लेकिन आखिर हमारे भाई गोंडा का क्या हाल है उसको भी तो जानना है। तो आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि आपको जानना है गोंडा का हाल, अपने लिए भी आपको सचेत होना है और ये भी देखना है कि हमारे गोंडा में चल क्या रहा है। और हमारे गोंडा के बारे में अगर आपको जानना है तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपर्ट से। अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, जिनका नाम है अवनीश कुमार पाल जी, जो कि हैं मंडलीय परिवार नियोजन और लॉजिस्टिक प्रबंधन। हेलो हेलो।
1: हेलो जी मैडम।
0: हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून।
1: वेरी गुड आफ्टरनून
0: सर। हमारा ये शो चल रहा है स्वास्थ्य संगिनी, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: सर, आपसे ये पूछना है, आज हम बात कर रहे थे परिवार नियोजन पे, जो इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ती रहती है उसमें हमने काफ़ी सारी समस्याओं के बारे में बात की, काफ़ी सारे मिथ्स के बारे में बात की, जो कि हमारे बड़े बुजुर्ग की वजह से हमारे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, या क्या क्या प्रॉब्लम हमारा जो है इंडिया फेस कर रहा है, या इंसान खुद भी फेस कर रहा है काफ़ी सारी प्रॉब्लम।
1: जी।
0: तो आप हमें बता सकते हैं कि आखिर हमारे गोंडा में इन सब को लेकर के क्या हाल है?
1: देखिए, हमारे गोंडा में अगर हम बात करें, जो आपने बात की है जनसंख्या को लेकर के, इसके लिए होता है TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। इसका मतलब ये है कि 16 से 49 साल की महिलाएं अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चे पैदा करती हैं। तो ये TFR हमारा काफी हाई था, 4 से भी ज्यादा बच्चे महिला पैदा कर रही थी। लेकिन जो अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें अब हमने काफी इसमें कमी आई है, और ये इस समय वर्तमान में स्थिति गोंडा की 3.6 है, जो कि उत्तर प्रदेश के 2.4 से भी काफी ज्यादा है। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश का हम अपना औसत देखें तो 2.4 है, लेकिन गोंडा का अभी भी 3.6 है। यानी कि एक महिला ऑन एवरेज 3.5 बच्चे लगभग जन्म दे रही है, एवरेज है। तो गोंडा में हमारे जनसंख्या को लेकर के काफी चिंताजनक है, और राज्य स्तर से भी इसको हम लोग देख रहे हैं।
0: जी।
1: और गोंडा में अगर इस तरह से अगर TFR हाई रहेगा तो ये इम्पैक्ट करता है हमारी जनसंख्या को।
0: जी बिल्कुल।
1: अगर हमारे गोंडा में ज्यादा जनसंख्या होगी तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रहता है कि बेरोजगारी बढ़ेगी,
0: जी,
1: खाद्य संकट भी बढ़ेगा, जल और ऊर्जा संसाधनों पर भी दबाव पड़ेगा, पर्यावरण भी हमारा प्रदूषित होगा क्योंकि यहाँ सीवर लाइन्स भी नहीं है गोंडा में,
0: जी,
1: और मातृ और शिशु मृत्यु दर भी हाई हो जाएगी। जैसा कि हम सब लोग जानते ही हैं कि गोंडा हुआ, बहराइच या श्रावस्ती, ये हमारे उत्तर प्रदेश के सबसे निचले पायदान पर है इनका स्टेटस,
0: जी,
1: और झुग्गी झोपड़ी की जो संस्कृति है उसका भी बढ़ावा होता है। तो जनसंख्या नियंत्रित के लिए हर साल 11 जुलाई को इसकी अवेयरनेस के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, 11 जुलाई को, जिसको हम विश्व जनसंख्या दिवस के नाम से जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 1989 से इसकी शुरुआत हुई थी, ताकि हम जनसंख्या से जुड़ी सारी समस्याओं का वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित कर सकें। इस विश्व जनसंख्या दिवस में हम लोगों को जनसंख्या नियंत्रित कैसे करें उसके बारे में अवेयर करते हैं, उनको स्वास्थ्य के बारे में अवेयर करते हैं, उनको शिक्षा के बारे में अवेयर करते हैं, और जो जेंडर इक्वलिटी है, डिस्क्रिमिनेशन जो जेंडर के बेस पर होता है, उसके बारे में जागरूक कर सकते हैं, और यही सब चीजें मिलके हमें सतत विकास की ओर ले जाएंगी।
0: बिल्कुल। सर, आपको आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर जो इतना, जैसे आपने कहा कि औसतन 3 बच्चे होते हैं एक महिला करती है, तो उसके पीछे क्या कारण है, जो इंडिया की तो भी हमने बात कर ली, लेकिन गोंडा में क्या कारण है उसके, या क्या उसकी रीजन है, आप प्लीज उसको बताइए।
1: हाँ देखिए, गोंडा में जो सबसे बड़ा कारण है वो हम देखेंगे लिटरेसी रेट। हमारी साक्षरता दर जो है वो अगर आप कंपेयर करें पूरे प्रदेश में अप्रोक्स 50% से भी ब्लो है,
0: जी।
1: जो 2011 का सेंसस है उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला गोंडा में जो जनसंख्या जो TFR हाई होने की जो मुख्य वजह है वो अवेयरनेस की, शिक्षा का अभाव है। यहाँ पर
0: जी
1: लोग अवेयर नहीं है। अगर हम लोग शिक्षा पर ही काम कर रहे हैं कि जब तक हम लोगों को एजुकेट करेंगे तभी हम आगे जनसंख्या को नियंत्रित कर पाएंगे। गोंडा में सबसे पहला कारण है अशिक्षा का, दूसरा है स्वास्थ्य को लेकर के भी है। हमारे गोंडा में जो पॉपुलेशन है अप्रोक्स 80% वो ग्रामीण है,
0: जी
1: और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य को लेकर अवेयरनेस, उनको कितना परिवार रखना है, किस तरह से रहना है, साफ सफाई किस तरह से रखना है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। तीसरी बात, डेंसिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पर पॉपुलेशन की, इसलिए भी है। और इसके कई कारण है, अगर हम इसको फैक्टर निकालें गोंडा में ही तो कई फैक्टर आपको उसमें मिलेंगे कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ है।
0: जी तो देखिए, जैसे अभी हमने अभी हम बात कर रहे थे तो हमने बात की कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आजकल की जनरेशन के हैं, जो कहीं ना कहीं उन्हें पढ़ा वो पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन काफ़ी बार वो अपने परिवार के दबाव में भी ज़्यादा बच्चे करते हैं। तो क्या
1: जी
0: आप
1: जी
0: ये ऐसा गोंडा में होता है अभी?
1: हाँ, देखिए इसके लिए इस प्रॉब्लम को भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी टैकल किया, और हम लोग सास बहु बेटा सम्मेलन आयोजित करते हैं हर ग्राम पंचायत पर, हर
0: जी
1: आशा के क्षेत्र में सास बेटा बहु सम्मेलन आयोजित, जिसमें हम उनको, सास को, बेटे को और बहू को बुलाते हैं, जिसमें हमारी आशा होती है, एनम होती है, आंगनवाड़ी होती है, और उसमें हम लोग कई परिवारों को इनवाइट करते हैं, उनको गिफ्ट भी देते हैं। उसमें हम यही अवेयर करते हैं कि बच्चे कब और कितने पैदा करना है ये माता पिता डिसाइड करेंगे, ना कि उनके माँ बाप डिसाइड करेंगे कि अब हमको पोता चाहिए या हमको और भी बच्चे चाहिए। ये माता पिता अपने परिवार को अपनी आर्थिक और मानसिक स्थिति के अनुसार किस प्रकार उनका लालन पालन कर सकते हैं उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो
0: जी
1: इसको हम लोगों ने परिवार के लोगों में, खास तौर से जो हमारी सास होती है परिवार में बहू की, तो उनको लेकर के भी कार्यक्रम चल रहा है, और वो उस पर हम लोग हर साल आयोजित करते हैं, और बहुत अच्छा रिजल्ट अब धीरे धीरे हमें मिल रहा है। इसी के साथ स्मार्ट पुरुष सम्मेलन भी हम लोग आयोजित कर रहे हैं गोंडा में, कि
0: जी
1: पुरुषों की भी भागीदारी इसमें हो, जिसमें हम गांव गांव, जैसे सास बेटा बहु सम्मेलन है, इसी प्रकार इस मिस्टर स्मार्ट सम्मेलन भी आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हम पुरुष नसबंदी और परिवार नियोजन के बारे में जानकारी उनको दे रहे हैं कि परिवार में पुरुष भी इसमें भागीदारी निभाएं और समझें कि परिवार को हमें आकार कैसा रखना है अपनी आर्थिक और मानसिक स्थिति के अनुसार।
0: जी देखिए, अभी हमने बात की कि काफ़ी लोग, क्या होता है कि अभी भी अगर हम देखें तो सबसे पहले महिला ही कहती है कि बस दो बच्चे ही होने चाहिए। उसके पीछे काफ़ी सारे कारण रहते हैं, आर्थिक कारण होता है या उसके खुद के स्वास्थ्य का भी कारण होता है। लेकिन क्या आपने ऐसा कोई केस गोंडा में देखा है जहाँ पे महिला बच्चे नहीं चाहती लेकिन उसके घर वाले चाहते हैं, उसका पति चाहता हो, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा हो?
1: ये गोंडा में नहीं, लेकिन हम यहाँ बहराइच में एक ब्लॉक है विशेषरगंज,
0: जी
1: वहां पर हम गए थे तो उस महिला के 5 बच्चे हो चुके थे, और वो महिला HRP थी, यानी हाई रिस्क उसकी प्रेगनेंसी थी 6ठे बच्चे की,
0: जी
1: जिसका हीमोग्लोबिन 4 पॉइंट कुछ बचा था। तो वो आई तो उसने हमको बताया कि सर ऐसा है कि हम तो बच्चे नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे ये हस्बैंड हैं ये नहीं उसको ध्यान रखते हैं। तो जो हमने बात की तो वो एल्कोहलिक उनके हस्बैंड थे, मजदूरी करते थे,
0: जी
1: और वो उसमें उनको अवेयर ही नहीं था, कि फिर हम लोगों ने उनको बुलाया, बैठाला, फिर उनको बताया कि आप क्या इस महिला की जान लेके ही मानोगे क्या। फिर
0: जी
1: हमने उसको समझाया, उसको आयरन सुक्रोज की जो भी उसका ट्रीटमेंट था वो कराया, और उसको, उसके हस्बैंड को बात करके फिर उसकी महिला नसबंदी करे, तब जाकर उसकी जान बची। और उसके पुरुष से उस फिर हमने ये भी कहा कि आप अपने गांव में जाओ और इस तरह से अवेयर करो। फिर बाद में पता लगा कि उसने 2-3 महिलाओं की भी नसबंदी करवाई उसी व्यक्ति ने, कि ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है
0: जी। तो
1: जी।
0: अभी आप परिवार नियोजन के लिए कुछ अगर सरकारी योजनाएं हैं, अगर वो आप बताना चाहें तो आप प्लीज़ उसे बताइए, क्योंकि हमारे लिसनर्स को आपको जान के, आपके बातों को सुन के हो सकता है कि वो जागरूक हों।
1: जी, देखिए परिवार नियोजन में भारत सरकार द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत सी सुविधाएं दी जा रही हैं और इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं। अब आप देखिए भारत सरकार जैसे ही किसी गांव में किसी की शादी होती है तो हम लोग एक शगुन किट देते हैं,
0: जी
1: जिसमें हस्बैंड के लिए कंघा है, रुमाल है, शीशा है और वाइफ के लिए भी सामान, एक पूरी किट होती है जो हमारी आशा बहन उनको देती है जाकर के घर पर,
0: जी
1: न्यूली न्यूली मैरिड कपल उसको देती है।
0: जी
1: फिर उसके बाद उसमें सारी बातें बताई जाती हैं कि किस तरह से हम अपने परिवार को नियंत्रित रख सकते हैं। इसके बाद अगर दो बच्चों के बाद अगर कोई परिवार नसबंदी करवाता है या तीन बच्चों के बाद, तो उसको इंसेंटिव मिलता है 2,000 रुपए।
0: जी
1: अगर उसका सी सेक्शन हुआ है और तब वो महिला नसबंदी करवाती है तब उसको मिलता है 3,000।
0: जी
1: अगर किसी कारणवश वो नसबंदी फेल हो जाती है तो उसको 60,000 रुपए चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए दिया जाता है, ये योजना है।
0: जी
1: इसके साथ ही अगर वो PPICD भी लगाती है कि नहीं हम नसबंदी नहीं कराएंगे तो उसके लिए भी सरकार उसको 300 रुपए देगी। अगर वो PPICD लगवा लेते हैं तो उसको प्रोत्साहन धनराशि 300 रुपए मिलती है। अगर वो भी नहीं लगवाना चाहती तो एक अंतरा इंजेक्शन आता है, अगर उसको लगवाते हैं तो प्रति डोज उसको 100 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है।
0: जी तो जैसे कि
1: जी
0: अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे अभी बात हुई कि हमारे जो युवा है, या फिर हम कहें जो हमारी जनरेशन चल रही है, जिसके भी अभी शादी हुई है, जो जनरेशन चल रही है, उसमें काफ़ी बार ये देखा गया है कि जो हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे हम अपने परिवार को कंट्रोल कर सके, हम अपने एक अच्छा परिवार, एक फैमिली प्लानिंग कर सकें, उसमें काफ़ी लोग कहते हैं कि हम ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये भगवान का आशीर्वाद है और ये पाप लगेगा। तो
1: जी
0: इसके
1: जी
0: बारे में
1: जी
0: आप क्या कहना चाहते हैं?
1: देखिए ये हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी में जब हम जाते हैं तो वहां पर लोग हमसे ये बात, हमें हमारी आशा बहन है, एनम है, उनको ये बात सुनने को मिलती कि नहीं ये हमारे ईश्वर ने या कुछ दिया है, तो उनमें हम लोग यही कहते हैं कि आप उनसे एक हम लोग मीटिंग कराते हैं, जिसे जो मौलाना होते हैं, मौलवी होते हैं या जो भी उनके रिलीजियस लीडर्स होते हैं,
0: जी
1: हम लोग उनकी मीटिंग कराते हैं और हम कहते हैं कि अगर जो परिवार इस तरह से कह रहा है कि ऊपर वाले, क्योंकि ज्यादातर वो उन्हीं से ही इन्फ्लुएंस होते हैं,
0: जी
1: तो
0: जी
1: हम लोग उनसे सलाह देते हैं कि आप उन मौलाना साहब के पास उनको लेके जाइए और उन मौलाना साहब की भी हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं और हम लोग उनसे पूछते हैं कि बताइए आपके किस ग्रंथ में ये चीज लिखी हुई है, और
0: जी
1: फिर
0: जी
1: हम उनको भी पहले एजुकेट करते हैं, मौलाना को, मौलवी को या जो भी रिलीजियस लीडर्स होते हैं, और फिर उनके माध्यम से फतवा जारी करा के या उनके माध्यम से हम लोग उनको मोबिलाइज करते हैं कि सच्चाई क्या है। ये लोग, कुछ लोग मिसगाइड कर देते हैं कि ये ऐसा है और वैसा है, भ्रांतियां फैलाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, किसी रिलीजन में ऐसा कुछ नहीं है,
0: जी
1: और हम लोग इस तरह से रिलीजियस लीडर्स के माध्यम से कम्युनिटी में अवेयरनेस क्रिएट कराते हैं और उनको समझाते हैं, परिवार को इसकी महत्ता बारे में जानकारी दिलवाते हैं।
0: जी थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपने शेयर की, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गोंडा के लिए, क्योंकि गोंडा जैसे क्षेत्र में अगर आप ये फैमिली प्लानिंग की चीज़ें आप फैला रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ी बात है। थैंक यू सो मच
1: जी
0: सर, आप
1: जी
0: हमारे साथ जुड़े।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: तो अभी आप सुन रहे थे एक बहुत ही स्पेशल पर्सन को, जो कि गोंडा में काम करते हैं, परिवार नियोजन की चीज़ों को वो फैलाते हैं, उसके लिए जागरूक करते हैं, और ये भी बताते हैं कि क्या आपको उससे नुकसान होता है और कैसे आप उससे बच सकते हैं। तो फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम बात

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूँ सुजाता और आप सुन रहे हैं सेहत से ही लाभ गई। आज का ये विशेष कार्यक्रम समर्पित है विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 को। इस वर्ष की थीम है स्तनपान में निवेश, भविष्य में निवेश, इन्वेस्ट इन ब्रेस्ट फीडिंग, इन्वेस्ट इन द फ्यूचर। इस विषय पर गहराई से बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं एक बहुत ही अनुभवी और सम्मानित शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद सलमान खान, वरिष्ठ सलाहकार।

0: जो इस वर्ष की थीम है, स्तनपान में निवेश, भविष्य में निवेश। इसका अर्थ ये है कि अगर हम शिशु को जन्म के एक घंटे के भीतर और शुरू के 6 महीने तक केवल माँ का ही दूध पिलाएं, तो हम उसके अच्छे स्वास्थ्य, समुचित विकास और उज्जवल भविष्य की नींव रख सकते हैं। माँ का दूध न केवल पर्याप्त पोषण प्रदान करता है, बल्कि बच्चे को बीमारियों से, दस्तों से, कुपोषण से बचाता है। एक स्वस्थ बच्चा ही आगे चलकर एक सशक्त नागरिक बनता है। अगर हम बात करें इसकी आज के समय में प्रशासनिकता क्या है, तो आज भी कई शिशुओं को जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान या शुरू के 6 महीने तक केवल स्तनपान अभी भी पूरी तरीके से नहीं कराया जाता। कभी जानकारी की कमी के कारण, तो कभी माताओं को पर्याप्त सहयोग ना मिलने के कारण। इसके परिणाम स्वरूप बच्चों में बार बार बीमार पड़ने की और कुपोषण होने की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां कुपोषण अभी भी एक बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने है। वहां माँ का दूध सबसे सस्ता, सुरक्षित और असरदार उपाय है। ऐसे में ये थीम हमें याद दिलाती है कि स्तनपान केवल माँ की ही नहीं, बल्कि परिवार, समुदाय और पूरे स्वास्थ्य तंत्र की जिम्मेदारी है। यदि हम स्तनपान में निवेश करते हैं, तो हम न केवल बच्चों का, बल्कि पूरे देश का भविष्य बेहतर बना सकते हैं।
1: बहुत अच्छे से आपने इस विषय के बारे में, इस थीम के बारे में बताया है। अब हम आगे जानना चाहते हैं आपसे कि जन्म के 1 घंटे के भीतर और पहले 6 महीने तक स्तनपान कराना इतना ज़रूरी क्यों है?
0: देखिए, बच्चे को जो पैदा होते ही हम लोग कहते हैं कि 1 घंटा क्या, आधे घंटे के अंदर ही उसको दूध पिला देना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो शुरू के आधे से 1 घंटे में वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है, मतलब वो खूब तेज़ी से दूध पी सकता है। उसके बाद वो सोने लगता है, तो वो दूध पीने में उसको परेशानी हो सकती है। दूसरा, शुरू का जो, जब वो दूध 1 घंटे के अंदर अगर माँ का आंचल चूसता है, तो दूध बनाने वाले हार्मोन भी बनने लगते हैं, जिससे अगर आगे की जब वो 3 घंटे बाद दूध पिएगा, तो उसको दूध बना बना तैयार मिलेगा। बात दूसरी ये रही 6 महीने तक ही क्यों, तो 6 महीने तक माँ के दूध में पर्याप्त पोषण होते हैं जो बच्चे को ज़रूरत है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वसा हो, और बहुत से खनिज पदार्थ भी ऐसे होते हैं जो 6 महीने तक सभी ज़रूरतें बच्चे की पूरी करते हैं। तो हम इसीलिए कहते हैं कि शुरू के आधे 1 घंटे में आप दूध पिला दीजिए बच्चे को, जिसको कहते हैं अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, और 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, जिसे कहते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब, जैसे कि कहा जाता है कि माँ का पहला दूध कोलेस्ट्रम क्यों अमूल्य होता है, ये भी कहते हैं कि कोलेस्ट्रम होता है माँ के पहले दूध में, तो वो अमूल्य क्यों होता है और इसे पहला टीका ही क्यों कहा जाता है?
0: जी देखिए, जब से माँ बच्चा पैदा करती है और माँ की जो अभी अब तक की जो उसकी जिंदगी गुजरी है, तो जितनी बार भी माँ बीमार हुई, उसकी एंटीबॉडीज जो कि बीमारी से लड़ने की कोशिकाएं होती हैं, वो बच्चे को जाती हैं माँ के दूध से। तो माँ के दूध कैसे जाएंगी शुरू के, जब वो कोलेस्ट्रॉम, इसको कहते हैं गोल्ड, कहते हैं गोल्ड है ये, माँ का जो पीला जो कोलेस्ट्रॉम निकलता है, जिसे हम आम भाषा में खीज भी बोलते हैं, ये बच्चे के लिए ऐसी चीज़ है जिसमें विटामिन ए खूब अच्छा होता है, उसकी आंखों की रोशनी अच्छी होती है, उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे के पेट साफ करती हैं, उससे बच्चे को लैटिन अच्छा होता है, तो उसको पीलिया नहीं होता। तो अगर हम वो शुरू का दूध नहीं देते हैं, तो कई बीमारियों के से हम बचा नहीं सकते उस बच्चे को, इसलिए पहला जो गाढ़ा दूध होता है, जिसे हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, वो देना ज़रूरी है। और इसको पहला टीका इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सब बीमारियों के लड़ने की एंटीबॉडीज़ होती हैं।
1: डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को आप ये भी बता दें कि स्तनपान से बच्चे और माँ किन किन बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं?
0: वेरी गुड, तो बच्चे किन बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं, पहले तो हम इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बच्चा जब माँ का दूध पीता है, तो उसको दस्त नहीं लगते, पेट ख़राब नहीं होता, उस बच्चे को एलर्जी नहीं होती, उस बच्चे को कुपोषण नहीं होता, उस बच्चे को मोटापा नहीं बढ़ता। और जो मोटापा अगर बढ़ेगा, तो बच्चा तो छोड़िए, जब वो बड़ा होगा तो बहुत सी ऐसी बीमारियाँ होंगी जो उसको, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, ये सब चीज़ें उसको होने लगेंगी जो बच्चा बचा रहता है। अब बात आपकी रहती है माँ किन बीमारियों से बची रहती है, तो माँ के लिए मैं बता दूँ, जब बच्चे को वो दूध पिलाती है, तो ऐसे हार्मोन बनते हैं जो माँ को खुश रखते हैं, जो ऑक्सीटोसिन हम लोग कहते हैं। प्लस माँ को कैंसर नहीं होते कुछ, जैसे ब्रेस्ट का कैंसर, मतलब उसको स्तन कैंसर से बचाव हो जाता है, उसको जो ओवरी यानी अंडाशय का कैंसर है, उससे बचाव हो जाता है, और जब वो प्रेग्नेंट थी यानी जब वो गर्भावस्था में थी, तो जो उसका वज़न बढ़ गया था, वो भी कम हो जाता है। तो जब वज़न कम होता है, तो कई बीमारियां कम हो जाती हैं औरतों को,

0: जैसे उसको ब्लड प्रेशर कम आराम से ख़त्म हो जाएगा, उसका डायबिटीज़ कम हो जाएगी, उसको मोटापा कम हो रहा है, उसको जो एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस जो कहते हैं बोन की बीमारी, वो कम होती है। तो आप सोचिए कि माँ को कितना फ़ायदा हो रहा है और खुश रहती है माँ, क्योंकि हार्मोन ऐसे बनते हैं। तो ये माँ को फ़ायदे हैं और बच्चे को तो ज़्यादातर लोग जानते ही हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये भी आप बताएं कि स्तनपान कराते समय माँ को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और सही स्थिति और जुड़ाव के कुछ आसान स्टेप्स बता दें हमारे श्रोताओं को तो बहुत अच्छा रहेगा।
0: देखिए, माँ को सबसे पहले तो ये बात का ध्यान रखना चाहिए साफ़ सफाई का। हमेशा बच्चे को छूने से पहले एक बार हाथ धो ले और अपने स्तनों पर भी सफाई रखे। दूसरा, ये आप जिस स्थिति में भी पिलाना चाहें, जिसमें आपको आसानी लगे, आप दूध पिला सकती हैं। मतलब ये नहीं है कि लेट के पिलाएं साहब ना पिलाएं, लेकिन एक ध्यान रखना है कि लेट के अगर आप दूध पिला रही हैं तो लेटे लेटे सो मत जाइए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सो जाती हैं तो जो आपका स्तन है वो बच्चे के मुंह और नाक को बंद कर लेता, हो सकता बच्चे का दम घुटने से मृत्यु हो जाए। तो हमेशा जगते हुए दूध पिलाएं। देखिए, बच्चे को लेने का तरीका मैं आसान वे में बताता हूं कि चार सा होते हैं। वो चार सा क्या हैं? सबसे पहले बच्चे को सहारा दीजिए, पहला सा हो गया। दूसरा सहा है बच्चे को सीधा रखिए। सीधा का मतलब कान, कंधा, कोनी, कूला एक सीध में होना चाहिए। तीसरा सहा है सामने, बच्चे को पूरा घुमा के अपने आंचल के सामने कर लीजिए। चौथा सहा है बच्चा संपर्क में रहे। ये चार चीज़ें हैं जो बच्चे को कैसे लेना है, चार चीज़ें हैं बच्चा कैसे आंचल को चूसेगा। उसके लिए हम बताते हैं कि जो बच्चे की ठुड्डी है यानी चिन, वो उसके माँ के स्तन से जुड़ी हो। दूसरा, बच्चे का मुंह में जो माँ का काला वाला भाग है, खाली निपिल नहीं, जिसको एरियोला कहते हैं हम, काला भाग वो मुंह में जाना चाहिए। देखिए, निपिल में दूध नहीं होता, दूध होता है जो काला वाला भाग होता है स्तन का, उसके नीचे, वो मुंह में जाना चाहिए। तीसरी चीज़, बच्चे का होंठ बाहर को मुड़ा होना चाहिए। चौथा, बच्चे का मुंह बड़ा सा खुला होना चाहिए। ये चार चीज़ें हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि बच्चा दूध कैसे पी रहा है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, दूध बनाने का जो हार्मोन होता है वो रात में बनता है, तो रात में ज़रूर दूध पिलाइए। तो ये मेरे तरफ से एक थोड़ा सा ये है कि बीच में मैं बताता रहूँगा कि क्या बातों का ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये भी बता दीजिए कि शिशु को कितनी बार और कितनी देर तक स्तनपान कराना चाहिए? हर बार एक स्तन या दोनों स्तनों से दूध पिलाना क्या ज़रूरी है?
0: देखिए, दूध दो तरीके का निकलता है हर स्तन से। शुरू का जो दूध होता है उसको फोर मिल्क कहते हैं, उसमें पानी ज़्यादा होता है, प्रोटीन ज़्यादा होती है, उससे बच्चे की प्यास बुझती है। दूसरा जो बाद को दूध निकलता है उसको हैंड मिल्क कहते हैं, उसमें फैट ज़्यादा होता है, उससे बच्चे की भूख शांत होती है। तो एक आँचल से पूरा दूध पिलाने के बाद ही दूसरे आँचल पर लगाना चाहिए। अगर इधर उधर आप लगाएंगे तो बच्चा सिर्फ पानी पानी पिएगा और उसकी भूख शांत नहीं होगी और आपको लगेगा कि बच्चा भूखा रह जाता है। तो हमेशा एक आँचल से दूध पिलाने के बाद दूसरे आँचल से लगाइए। एक आँचल में दूध पिलाने में 15 से 20 मिनट लगते हैं, एक 15 से 20 मिनट, और आपको भी पता चल जाएगा। अगर आप बच्चा दूध नहीं पी रहा और आप हाथ से दूध निकाल रही हैं तो शुरू का आपको लग जाएगा कि पतला पतला आ रहा, बात को गाढ़ा पीला आ रहा है। तो आप समझ जाइए जिसमें गाढ़ा पीला दूध निकल रहा है वो बात का दूध है। वो पूरा कंप्लीट बच्चा पी ले, तभी बच्चे का एक तो वो उसका वजन भी बढ़ेगा और बच्चा आराम से सोएगा भी।
1: अच्छा, माँ को कैसे पता चलेगा कि बच्चा पर्याप्त दूध पी लिया है?
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सबसे ज़्यादा परेशानी यही होती है घर वालों को कि बच्चा रो रहा है तो उन्हें लगता है कि बच्चा भूख से रो रहा है। देखिए, बच्चा खाली भूख से नहीं रोता, उसको कई समस्याएं होती हैं जिससे वो रोता है। अगर उसको गर्मी ज़्यादा लग रही, ठंड ज़्यादा लग रही, गीला हो गया, या कई लोग ऐसे आ गए जिनको वो पहचानता नहीं है, तब वो रोएगा। जो भी परेशानी वो रो के कहेगा, क्योंकि बोलना तो आता नहीं है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए बच्चा भूख से रो रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि दूध सही हो रहा है? देखिए, बच्चा दूध पीने के बाद 6 से 7 बार पेशाब करेगा, नंबर एक। नंबर दो, बच्चा दूध पीने के बाद आराम से 2-3 घंटे तक सोएगा। तीसरा, वज़न एक महीने में करीब 500 ग्राम बढ़ना चाहिए, वो बढ़ रहा है। बच्चे को कोई परेशानी नहीं हो रही, माँ को कोई परेशानी नहीं है, तो बच्चा दूध पर्याप्त हो रहा है। तो इसमें हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दूध पे ध्यान देना चाहिए। तो ये घर वालों को भी सोचना चाहिए कि बच्चा रो रहा है तो दूसरी समस्याएं सही करिए, दूध तो पी रहा है वो।
1: कभी कभी क्या होता है कि माँ के स्तन में कम दूध बनता है या निप्पल में दर्द होता है, सूजन जैसी समस्याएं आ जाती हैं, तो क्या ये सामान्य है? पर आपकी क्या इस पर सलाह है?
0: हाँ, देखिए, दूध कम बनता है तो ये कभी कभी माँ को लगता है ऐसा। दूध हमेशा जितना बच्चा जैसे पैदा होगा, मतलब कम वजन का होगा, कम वजन के हिसाब से बनता है। ज़्यादा बड़ा बच्चा पैदा होगा, 3 किलो 4 किलो, उसके हिसाब से दूध बनता है। दूध पर्याप्त बनता है, लेकिन शर्त ये है कि बच्चे को आँचल पे चूसना चाहिए। अगर वो नहीं चूसेगा तो दूध कम बनेगा। अगर आपने दूध के साथ उसको बोतल लगा दी तब भी वो दूध नहीं बनेगा आपका। दूसरा यह है कि निपल में दर्द होता है, तो निपल में दर्द इसलिए हो रहा है जैसा मैंने अभी बात बताई आपको, निपल में दूध नहीं होता, दूध होता है जो उसका काला भाग है, एरियोला जिसे कहते हैं। अगर बच्चा निपल चूस रहा है तब भी दर्द होगा, तो आप पहले उसको करेक्ट कर लीजिए कि निपल ना देके मुंह में और उसके जो है पूरा काला वाला भाग दीजिए, तो निपल में दर्द कम हो जाएगा। दूसरा, कभी कभी क्या होता है निपल में कभी कभी दरारें पड़ जाती हैं, उसकी वजह से भी दर्द होता है। उसका इलाज क्या है, जो बाद वाला दूध होता है जैसे मैंने हाइंड मिल्क का है, उस जो आपका निपल में जो घाव हो गया उस पर वो लगा लीजिए, उसी से सही हो जाएगा, अलग से कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जिसे फफूंदी का कहते हैं, उसमें बहुत तेज दर्द होता है। उसमें क्या होता है, बच्चे के अगर मुंह में झाँक के देखेंगे तब भी आपको सफेद सफेद पपड़ी जैसी दिखेगी और आँचल पे भी दिखेगी। तो उसमें इलाज क्या होता है कि बच्चे का भी इलाज करते हैं हम लोग और बच्चे के साथ उसकी माँ के निपल पे भी हम दवा लगवा देते हैं। तो ये तो निपल के दर्द की रहे। कभी कभी क्या होता है आंचल सूज जाते हैं, उस आंचल के सूजने का इलाज ये है कि हम आंचल को गर्म पानी से सिकाई करें, कपड़ा भिगो के सिकाई करें, हाथों से दूध निकाल दें, जब मुलायम हो जाए आंचल तो बच्चे को दूध पिलाएं, और दूध पिलाने के बाद जो गोभी के पत्ते होते हैं उसको आप ठंडा करके या फ्रिज में रख के उससे सिकाई करें, बड़ी राहत मिलेगी। और पैरासिटामोल गोली डॉक्टर से पूछ के आप खा सकते हैं। तो इसका इलाज ये है।
1: अच्छा, तो क्या जो बच्चे 6 महीने से कम के हैं तो क्या उन्हें गाय का दूध या बोतल का दूध देना सही रहेगा?
0: बिल्कुल नहीं। जो बच्चे मैंने बताया 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध देना है, पर्याप्त पोषण है, वो एक बूंद पानी भी नहीं देते हैं, क्योंकि 88% माँ के दूध में पानी होता है। अगर राजस्थान में भी बच्चा पैदा हुआ होगा और वहाँ गर्मी देखें आप कितनी पड़ती है, तो उसको भी हम पानी नहीं देते हैं, तो वो माँ के दूध से हो जाता है। तो 6 महीने तक माँ का दूध ही देना है। गाय भैंस का दूध गाय भैंस के बच्चे के लिए बना है, वो इंसान के बच्चे के लिए नहीं बना, क्योंकि गाय भैंस के दूध में क्या होता है, प्रोटीन ज़्यादा होती है, और प्रोटीन क्या करती है, शरीर का साइज बढ़ाती है, दिमाग नहीं बढ़ाती। तो अगर हम अपने बच्चे का दिमाग बढ़ाना चाहते हैं तो माँ का दूध दें, और शुरू के 2 साल तक सिर्फ माँ का दूध और खाना ऊपर का, उससे दिमाग का जो विकास होता है वो बहुत अच्छा होता है। और अगर आपने जानवर का दूध दिया तो दिमाग का विकास हैम्पर होगा, तो उससे उसका मानसिक विकास में बाधा पड़ेगी, तो मत दीजिए उसको गाय और भैंस का दूध। वो सिर्फ उनके बच्चों के लिए है जिनका गाय भैंस का जो बच्चे हैं उनके, इंसान के बच्चे के लिए सिर्फ इंसान का दूध है।
1: हाँ बिल्कुल। और अभी की अगर बात करें बदलते जीवन शैली की, तो बहुत सारी महिलाएं कामकाजी हो गई हैं, कहीं संस्था में काम करती हैं, कोई महिलाएं खेती किसानी करती हैं, तो उनके लिए केवल स्तनपान कराना कैसे संभव है?
0: देखिए, अब जो एक तो वो था 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है, ये तो उनके लिए जो ऑफिस में काम करती हैं, स्कूलों में जाती हैं, टीचर हैं, तो वो ले सकती हैं बच्चों को पालने के लिए। अब जो खेतों में काम करती हैं उनके लिए क्या है कि वो जब भी बच्चे घर पर हों तो बच्चे को दूध पिला के जाएं, और बीच बीच में वो अपना ब्रेक करके अपने घर पे आके दूध पिला सकती हैं, नहीं तो वो अपना दूध निकालती रहें जब भी उनको टाइम मिले, और दूध अपना जो है आपका जो घर का वातावरण है उसमें रख के 4 से 6 घंटे में उसको कोई भी कटोरी चम्मच से पिला सकता है, बोतल तब भी नहीं लगानी है, और डिब्बे का दूध ऊपर का गाय भैंस का दूध नहीं लगाना है। और कोशिश करें अगर आप जहां काम करती हैं वहां कुछ बच्चे रखने की सुविधा हो तो बच्चे को वहीं रखें, और वहीं बीच बीच में ब्रेक करके आप 3-3 घंटे पर दूध पिएगा आपका बच्चा, तो आप आके पिला सकती हैं। और एक दूसरी चीज़ होती है, अगर रात में आप उसको थोड़ा ज़्यादा दूध पिला दें तो दिन में कम भूख लगेगी, तो वो दिन में ज़्यादा दूध मांगेगा भी नहीं।
1: अच्छा, तो आपने जैसे बात करी कि जो कामकाजी महिलाएं हैं वो अपना दूध निकाल के स्टोर कर सकती हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो क्या तरीका है स्टोर करने का?
0: स्टोर करने का देखिए, जिनके घर में फ्रिज है वो फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन जिनके घर में फ्रिज नहीं है तो जो रूम टेम्परेचर होता है, मतलब कमरे का तापमान 26 से 30 के बीच में, उसमें वो 4 से 6 घंटे रख सकते हैं आराम से, और फ्रिज में अगर 24 घंटे तक हम रख सकते हैं। तो फ्रिज का दूध निकालने के बाद ठंडा होता है वो, एकदम से नहीं पिलाना है उसको, नॉर्मल आने दीजिए। अगर बहुत बच्चा रो रहा है, लगता है कि इसको जो है तुरंत पिलाना है, तो एक गर्म पानी में उसका बर्तन में गर्म पानी ले लीजिए, उसमें वो जो आपने दूध फ्रिज का रखा उसको रख दीजिए, वो अपने आप थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा, उसको आप चम्मच से या कटोरी से पिला दीजिए।
1: डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहते हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि माँ को कोई गंभीर बीमारी हो गई, जैसे HIV हो गया, सीजेरियन डिलीवरी हुई, कमजोर या समय से पहले बच्चे का जन्म हो गया, तो ऐसे में स्तनपान कराना संभव है?
0: बिल्कुल। देखिए, जो HIV की बात कर लेता हूँ मैं, जो गाइडलाइन है वो उसके अनुसार तो ये है कि HIV की माँ अगर सिर्फ और सिर्फ अपना दूध पिला सकती है तो सिर्फ उसको अपने ही दूध पिलाना चाहिए, मिक्स फीडिंग नहीं करना है कि हम बोतल भी दे दे रहे हैं और HIV और अपना भी दूध पिला रहे हैं। अगर वो कहती है हम दोनों चीज़ें करेंगे तो फिर अपना दूध ना पिलाए, वो ऊपर का ही दूध पिलाए, फिर नहीं हम अलाउ करते हैं कि दोनों मिक्स फीडिंग, उससे HIV का खतरा ज़्यादा रहता है। लेकिन हाँ, अगर वो अपना दूध पिला सकती है तो HIV पॉजिटिव मदर, साथ में कोई भी बीमारी वाली मदर, वो अपना दूध पिला सकती है, उसमें कोई मना नहीं है। अभी आपने देखा था कोविड हुआ था, कोविड में भी हमने बच्चे की माँ का ही दूध पिलवाया था। माँ को अगर ट्यूबरकुलोसिस है, मैं यहाँ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर माँ को TB पता चली है, TB वाली माँ अगर 15 दिन के अंदर पता चली, अभी पता चली कि अभी TB थी डिलीवरी बाद, तो कोशिश करें कि दूध निकाल के पिलाए, और अगर नहीं हो सकता तो अपना जो तरीका होता है मास्क लगा के हाथ धो के, उसमें दवा दोनों की चलेगी, बच्चे की भी चलेगी और माँ की भी चलेगी। और जैसे HIV पॉजिटिव मदर है उसमें भी बच्चे की भी दवा चलती है और माँ की भी दवा चलती है, तो दूध अपना पिला सकती है। दूसरी चीज़ सिजेरियन, तो हम मैं जिस अस्पताल से आता हूँ वहाँ सिजेरियन खूब होते हैं, तो वहाँ हम लोग OT में ही, ऑपरेशन थिएटर में ही दूध पिला देते हैं। और उसमें क्या है कि माँ तो लेटी रहती, बैठ नहीं पाती, तो कोई भी घर का या हमारी आया वो बच्चे को मदद करके दूध, मतलब माँ सीधी सीधी लेटी है, उल्टा लिटाल के दूध तुरंत हम एक घंटे के अंदर पिला देते हैं, तो सीजरियन वाली माँ दूध पिला सकती है। और अगर जिसका बच्चा दूध नहीं पी सकता, वो सीजरियन वाली माँ अपना दूध हाथ से निकाल के भी बच्चे को दूध पिलवा सकती है घर का। दूसरी रह कम समय या कमज़ोर बच्चे जो कि आंचल को नहीं चूस पाते, जैसे मैंने बताया जो बच्चा 1800 ग्राम से कम का होता है या 34 हफ्ते से कम का होता है वो आंचल को नहीं सक कर पाता, उसके लिए हम लोग दूध हाथ से निकलवा के और जैसा मतलब बताया कि कटोरी में निकाल के उसको चम्मच कटोरी से कोई पिला सकता है, किसी भी हालत में हमें बोतल नहीं लगानी है।
1: अच्छा, क्या कभी कभी ये भी होता है कि एक बच्चा है और माँ तुरंत गर्भवती हो जाती है, तो क्या ऐसी अवस्था में गर्भवती होने के बाद भी वो स्तनपान करा सकती है बच्चे को?
0: बिल्कुल, अगर ये खतरा ना हो कि उसको पहले प्री टर्म लेबर हुई हो या एबॉर्शन हो गया हो, उस केस में वो दूध नहीं पिला सकती। लेकिन सब कुछ नॉर्मल था, पूरे दिन का बच्चा हुआ, तो कोई उसमें मना नहीं है, वो दूध कंटिन्यू कर सकती, बच्चे को पिला सकती है।
1: अच्छा, स्तनपान कराने से माँ और बच्चे को क्या लाभ होता है?
0: बहुत लाभ होता है, जैसा मैंने बताया कि बच्चे का संपूर्ण विकास, मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, वो बच्चे का माँ के दूध से ही आता है। दूसरी चीज़, बच्चे का जो मानसिक लेवल है जिसे IQ कहते हैं, वो उन बच्चों में अच्छा होता है जो माँ का दूध पीते हैं। तीसरी चीज़, बच्चा का मोटापा नहीं होता। चौथी, आपका बच्चे को एलर्जी, दमा, ये सब शिकायतें नहीं होती आगे जाके। उसके बाद बहुत सी बीमारियाँ जो हम देखते हैं, आजकल भी देख रहे हैं कि हम लोग बुढ़ापे में जो देखते थे वो जवानी में देखने लगे, वजह यही है कि हम माँ के दूध से दूर हो रहे हैं। तो बच्चे को वो बीमारियाँ जो बुढ़ापे में होती हैं वो जवानी में नहीं होती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो गई, और आपका जितना ये गठिया वठिया जितनी सब चीज़ें हो रही हैं, कैंसर वैंसर से बचाव बहुत होता है, तो ये सब चीज़ें नहीं होती। माँ को बहुत फ़ायदा है, माँ का जैसे मैंने बताया कि वज़न आपका बिल्कुल संतुलित हो जाता है, दोबारा गर्भवती नहीं हो सकती अगर वो बच्चे को दूध पिला रही, स्पेशली रात में उठ के पिला रही है, शुरू के 6 महीने कहते हैं, लेकिन आइडियली ये कि 6 हफ्ते के बाद कुछ ना कुछ साधन अपना लेना चाहिए, तो ये सोच के ना बैठे कि 6 महीने तक कोई डिलीवरी नहीं होगी, वो मतलब गर्भवती नहीं होगी। इसके बाद माँ को कैंसर, जो मैंने बताया कि आपके ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, इसका खतरा कम हो जाता है। माँ खुश रहती है जो बच्चे को दूध पिलाती है, तो बच्चे माँ को जो कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन, वो नहीं होता। माँ जो है उसको ब्लड प्रेशर कम हो जाता है अगर उसका हाई है, डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है, अगर ज़्यादा दवा खा रही है तो दवा कम हो जाएगी उसकी, और ऑस्टियोपोरोसिस जो हड्डियों में कैल्शियम कमी होती है वो सही होने लगती है। इतने तो फ़ायदे हैं माँ को। अच्छा। तो ये दोनों चीज़ें दोनों के लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे को अच्छे से स्तनपान कराने के लिए माँ का जो पोषण है वो कैसा होना चाहिए?
0: बहुत अच्छी बात है, देखिए बच्चा तभी सही रहता है जब माँ का पोषण अच्छा हो, क्योंकि बच्चे के हम कहते हैं शुरू के 1000 दिन, 1000 दिन में हम जो है शुरू के 9 महीने तो पेट वाले मानते हैं, फिर 2 साल हम मानते हैं जो बच्चा पैदा होने के बाद है, तो शुरू के जो 2-9 महीने हैं वो वही बच्चे का दिमाग सही रखेंगे जो माँ ने खाया पिया होगा। तो पोषण माँ का संतुलित होना चाहिए। संतुलित में क्या है कि एक तो जो उसको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो भी घर में बन रहा है सब कुछ पहले खाना खाना है उसको, और अपनी रिक्वायरमेंट और दिनों से ज़्यादा रखना, क्योंकि पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको भी खाने की ज़रूरत है। ये नहीं कि बच्चा खुचा पहले बात सब खा लेंगे तो खुद खाएंगे ना, क्योंकि आप 2 जिंदगी जी रहे हैं। दूसरा ये है कि आपको जो आप अस्पताल में दिखाते हो उसमें वो जो आयरन और कैल्शियम देते हैं आपको, मल्टीविटामिन देते हैं, वो आप ज़रूर लेते रहिए, क्योंकि वो भी पोषण का हिस्सा है। ये नहीं है कि गोलियाँ तो आप लिया है लेकिन आप उसको ले नहीं रहे। अगर खून की कमी होगी तो बच्चा भी कुपोषित होगा, उसमें भी खून की कमी होगी, कैल्शियम की कमी होगी उसमें भी होगी। तो पोषण आप इसलिए अपना अच्छा रखिए कि जो बच्चा पैदा हो वो पूरे वजन का हो और उसमें किसी चीज़ की कमी ना हो। तो संतुलित आहार मतलब क्या है कि जो हम कहते हैं ना अलग अलग रंग का खाना, उसमें क्या होता है आपका हरी सब्जियां हैं, दालें हैं, प्रोटीन की चीज़ें में क्या क्या आता है, दूध है, मक्खन, घी, ये लीजिए आप। उसके अलावा आपको क्या आता है जो हरे रंग के अलावा पीले रंग की जो चीज़ें होती हैं जिससे विटामिन ए जिसमें होता है, आंखों की रोशनी अच्छी होती है, इम्यूनिटी अच्छी होती है, आप वो लीजिए। अगर आप मांस खाती हैं तो मांस खाइए, नहीं मांस खाती हैं तो नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो कोई बात नहीं, वेजिटेरियन वाला खाना खाइए। सब चीज़ें आप बराबर लेके चलिए, ये नहीं है कि एक ही दिन में सब ले लें, एक हफ्ते में सब कुछ रिपीट करके लेते रहिए। ये नहीं कि दाल पक रही तो पांचों दिन दाल ही पक रही है, बदल बदल के खाते रहिए।
1: डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिए साथ में कि स्तनपान को सफल बनाने में परिवार और समुदाय की क्या भूमिका हो सकती है।
0: बिल्कुल सही बात है। देखिए हम स्तनपान जो अभी हमारी दर है वो कितनी है ये मैं बता देता हूँ। हमारी अस्पताल में डिलीवरी 90% करीब हो रही है, और हम जो है माँ का दूध एक घंटे के अंदर जो शुरू कर रहे हैं वो हमारा 41% है, 41-42%। हम आधे से भी कम को पिला पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो भागीदारी है लोगों की वो नहीं है इतनी अच्छी। तो हमें सभी के समुदाय को आना पड़ेगा, चाहे वो हमारे हेल्थ वर्कर हों, चाहे घर वाले हों, बच्चे को पैदा होते ही दूध शुरू करवा दें। फिर दूसरी चीज़, बच्चा 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पीना चाहिए, वो भी घट गया है, वो दर और घट गई। वजह क्या है? बोतल लगाने लग गए। उसमें समुदाय में घर के मेंबरों की बहुत भूमिका है, चाहे वो बच्चे का पिता हो, चाहे बच्चे की दादी हो, चाहे बच्चे की बुआ हो, जो भी घर में रहते हैं उनको उसको टोकना चाहिए कि इसको बोतल नहीं लगाना, ऊपर का दूध नहीं पिलाना है, सिर्फ माँ का दूध पिए। और उसमें समाज की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। जब तक हम जागरूकता पैदा नहीं करेंगे इसके बारे में, जैसा कि आप लोग के माध्यम से आप ये लोग कम्युनिटी के लिए कर भी रहे हैं कि हम लोग पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं, सिर्फ माँ का दूध पिलाओ, माँ के दूध के अलावा कोई भी दूध बच्चे को नुकसान करेगा, उसकी मानसिक क्षमता भी कम हो जाएगी। तो ये भागीदारी कैसे होगी? जब सब लोग मिलकर काम करेंगे। तो उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हुई, चाहे ये आशा हुई या पंचायत मेंबर हुए, और जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर हैं, मेन चीज़ जो है डॉक्टर हैं। अगर आप अपने क्लिनिक में बच्चे देख रहे हैं तो पहले ही सवाल पूछें कि कौन सा दूध पिला रहे हो। अगर वो नहीं पिला रहा तो उसको ये समझाएं कि जो दूध तुम नहीं पिला रहे हो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं। तो मेरा यही कहना है, सब लोग मिलकर काम करेंगे तो एक दिन सफलता तो मिलेगी।
1: डॉक्टर साहब जैसे अभी आपने कहा कि स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए सभी को सामने आना पड़ेगा, सहयोग देना पड़ेगा, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। हम जानना चाहते हैं कि समुदाय स्तर पर स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आशा, पंचायत प्रतिनिधि, SHG महिलाओं का जो गाँव में ग्रुप बनता है, तो ये क्या कर सकते हैं स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए, आप हमें इसके बारे में बताएं।
0: देखिए छोटी छोटी जो अभी माएँ बन रही हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि बच्चा पैदा होने से पहले ही हमें समझाना है एंटीनेटल पीरियड में। ये नहीं कि बच्चा पैदा हो गया तब हम कह रहे हैं दूध पिलाओ, तब तो उसके समझ में ना आना है। तो जब गर्भवती हो रही है, गर्भवती से भी पहले, जब वो लड़की अपनी किशोरावस्था में आती है, तब उसको समझाना चाहिए कि स्तनपान का क्या महत्व है। उसके बाद जब वो शादी होती है, फिर वो अस्पताल जाती है, जब वो गर्भवती होती है, तब से समझाना शुरू करें। तब ये धीरे धीरे उसके समझ में आएगा क्यों जो है वो माँ का दूध ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, जब वो पैदा हो जाता है बच्चा, तो हमारे हेल्थ वर्कर को जो हमारा डिलीवरी करा रहा है उसे ज़रूर देखना चाहिए, जो मैंने पॉइंट बताए, बच्चा कैसे लिया, बच्चे का जब चूस रहा है तो क्या देखना है, बच्चे के मुँह में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, माँ के ब्रेस्ट में कोई तकलीफ तो नहीं है, हो सकता निपिल ही ना बनाओ, तो ये हमारे हेल्थ वर्कर को। उसके बाद जब वो घर जाती है, तो घर जाने के बाद जो हमारी आशा बहन जी हैं, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, वो घर जाती हैं, उसके विजिट करती हैं, उनको तब समझाना चाहिए कि आप कौन सा दूध पिला रही हो। और जैसा कि मैं बता रहा कि बोतल और किसी भी उसका दूध ऊपर का, मतलब गाय भैंस का, बकरी का, ये सब दूध अगर पिला रही तो उसे बताएं कि इससे क्या नुकसान होगा, इसको ना दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो सब लोग अगर मिलकर काम करेंगे तभी हम इसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे, वरना इतने दिनों से प्रोग्राम चल रहा है और अगर समाज की भागीदारी नहीं होगी तो हम कुछ भी कहते रहें बगैर इसके समझ किसी कोई हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते।
1: अच्छा, मिथ्स के ऊपर आते हैं, बहुत सारे गाँव में अभी भी मिथ्स है कि बच्चा पैदा होता है तो बुआ आती हैं या चाची आती हैं, शहद चटाती हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे?
0: बिल्कुल, देखिए शहद अब क्या है, शहद पहली बात तो किन हाथों से बना, कहाँ से उसने स्टोर किया, कितनी गंदगी उस शहद में। फिर बच्चे के पेट में जो माँ का दूध जाना चाहिए था वो आपने दूध की जगह उसको भर दिया शहद से, तो बच्चा दूध क्यों पिएगा। फिर शहद में कितना मीठा होता है, हम कहते हैं मीठा मत दो बच्चे को, उसकी आदत बन जाएगी मीठे की। और माँ का दूध आप कभी देखना तो माँ का दूध ऐसा होता है जैसे नमकीन जैसा, जैसे पसीना निकलता है हमारा, तो बच्चे की आदत हमने वहीं से बिगाड़ दी, बीमारी दे दी। बच्चे का पेट जब पैदा होता है तो एक मूँगफली के दाने के बराबर होता है, तो या तो हम माँ के दूध से उसको भर दें या शहद से भर दें, तो नुकसान करना शुरू कर दिया। वहीं से इन्फेक्शन दे रहे हैं बच्चे को, हम बच्चे को वहीं से आदत बिगाड़ रहे हैं, वहीं से हम क्या कर रहे हैं कि बच्चे को माँ के दूध से अलग कर रहे हैं। तो जब बच्चा माँ के आंचल पर चूसेगा नहीं तो दूध बनाने के हार्मोन कहाँ से बनेंगे, तो ये सब चीज़ें देनी ही नहीं है। अगर आंचल को चूसने लगे बच्चा उसी से दूध बनने लगेगा।
1: अच्छा, कभी कभी होता है कि जो माँ बनती है नई नई माँ, उनको उतना अनुभव नहीं होता है, और जब बच्चा रोने लगता है तो उनको लगता है कि बच्चे को भूख ही लगी हो, तो माँ कैसे उसे समझे कि अब बच्चे को भूख लगी है, अब उसको दूध पिलाना चाहिए।
0: हाँ देखिए, बच्चा जब भूखा होता है तो सबसे पहले वो अपनी नज़रें घुमाना शुरू कर देता है, इधर उधर देखना शुरू करेगा, मुँह घुमाएगा, मुँह खोलेगा, ठीक है, और हाथ पैर चलाएगा। सबसे बाद में रोता है जब बिल्कुल उसको अब तवज्जो नहीं दी जाती है। तो आप रोने से पहले समझ लीजिए, अगर बच्चा मुंह चला रहा है, मुंह खोल रहा है, चूसने जैसा मुंह बना रहा है, आंखें इधर उधर घुमा रहा है, कमरा देख रहा है, तो समझ लीजिए कि उसको दूध पिलाना है। जब आप उसको आंचल देंगी तो वो फौरन चूसने लगेगा। अगर वो रो गया बच्चा तो समझ लीजिए वो बिल्कुल इंतहा हो गई उसके सब्र की, वो आने मत दीजिए, फिर छुपाने में बहुत टाइम लगेगा। तो सबसे पहले पहचान लीजिए, तो पता चल जाता है कि बच्चा भूखा है। और ये माँ जो जिनके बच्चे होता है ना, वो बहुत अच्छे से अपने बच्चे को पहचानती हैं, उन्हें पता होता है किस बात से रो रहा है, भूख से रो रहा है या कोई परेशानी है। वो बता दें डॉक्टर साहब इसके पेट में दर्द हो रहा है, तो मैं पूछता हूँ तुम्हें कैसे पता चला, इसने तो कहा नहीं पेट में दर्द हो रहा है, कहीं डॉक्टर साहब हमें लगता है, तो वो सही बात है, माँ पहचान लेती है। तो वो भूख से कब बच्चा, तो माँ उसी वक्त दूध दे दे तो बच्चा सही रहता है।
1: आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने स्तनपान सप्ताह पर बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक हमारे श्रोताओं को बताया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक आप सुनते रहिए सेहत से ही लाभ गई।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण, याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान, टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमे एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइज

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें।
2: तो सुनना ना भूलें, 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

आदाब नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद ही पसंदीदा और प्यारा प्रोग्राम जिसका नाम है सुन सहेली, विताब की अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका। सो कैसे हैं आप सब, फटाफट से आए बताएं क्या है आप सभी का हाल चाल, क्योंकि भाई आज मौसम जो है उसने तो कुछ अलग ही रुख मोड़ रखा है। अगर हम बात करें आज मौसम की तो हर दिन हम कहते हैं ना ये मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा, तो मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है कि ये मौसम जो है वो ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही आज बेईमान हो रखा है। यानी कि मतलब बारिश ने कर दिया है बहुत ही प्यारा, वैसे बारिश का मौसम होता तो बहुत प्यारा है लेकिन आज इस बारिश ने थोड़ा थोड़ा बेहाल भी कर दिया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जगह जगह पर पानी भरा हुआ है बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं बारिश सुबह से ज़्यादा हो रही है, इस वजह से थोड़ी सी तकलीफ़ भी हो रही है। लेकिन इन थोड़ी थोड़ी तकलीफ़ों के साथ हम ज़्यादा ज़्यादा मौसम का मज़ा भी ले रहे हैं। मौसम कुछ होते ही ऐसे हैं, बारिश ज़्यादा होती है तो हम परेशान हो जाते हैं और जब नहीं होती है तो हम कहते हैं हे भगवान काश थोड़ा सी बरसात हो जाती, लेकिन ये बरसात तो बहुत ही प्यारी हो रही है। तो वही बरस रही है बूंदे, हो रही है बरसात, और इन बरसती हुई बूंदों के साथ आइए करते हैं आपके अपने पसंदीदा शो सुन सहेली की शुरुआत। बिल्कुल सुन सहेली की शुरुआत, क्योंकि सुन सहेली में सहेलियां हैं और जहां सहेलियां हैं वहां हैं बहुत सारी बातें और बातों के साथ बहुत कुछ। लेकिन जैसे कि हमारी सुन सहेली का दस्तूर है कि आप अपनी सहेलियों के साथ सुनते हैं या कि आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका के साथ। लेकिन आज क्या है ना कि जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि किसी इम्पोर्टेंट काम की वजह से आरजे समता जी हमारी बहुत ही प्यारी अभी आपके साथ में यहाँ पे नहीं है, उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट काम था इसलिए वो छुट्टी पे हैं फिलहाल। वैसे ये जो बारिश का मौसम है ना इतना प्यारा, इसमें मैम की याद ना मुझे आज कुछ ज़्यादा ही आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों याद आ रही है, याद इसलिए आ रही है क्योंकि अगर अभी वो होती ना इतने प्यारे से मौसम पे और उन्हें आज के दिन पे पोइट्री सुनानी पड़ती, यानी कि आज हमारा थर्सडे है, तो वो कहती कि अंशिका अब आप मुझे रास्ता दोगे ना फिर ही मैं अपनी पोइट्री सुनाऊँगी, और फिर मैं उन्हें बारिश से ही रिलेटेड कोई अच्छा सा रास्ता देती और कुछ पोइट्रीज बताती। लेकिन कोई बात नहीं, वो यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, हम उन्हें याद कर सकते हैं, उनके बारे में बहुत सारी बातें कर सकते हैं और इसी के साथ अपनी सुन सहेली को इंजॉय भी कर सकते हैं। तो सुन सहेली की शुरुआत हो चुकी है, तो आइए लिसनर्स इस बरसते हुए मौसम के साथ और बहुत ही प्यारी सी बरसात के साथ आप सभी को विश कर देते हैं ये प्यारी सी दोपहरिया, शुभ दोपहरिया, शुभ दोपहरिया आप सभी को आपकी अपनी सहेलियों की तरफ से, यानी कि मेरी तरफ से भी और आपकी अपनी आरजे समता की तरफ से भी। तो आइए, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का हमारा सबसे पहला दिन जो होता है वो होता है बड़े बुज़ुर्गों का, बड़े बुज़ुर्गों का दिन, यानी आज है हमारा थर्सडे। तो आइए सबसे पहले करते हैं एक प्यारी सी पोइट्री के साथ इस प्यारे से शो, प्यारे से दिन की शुरुआत, क्योंकि सुन सहेली है आपके साथ। तो आज की जो पोइट्री है वो बड़े बुज़ुर्गों पर है, तो आइए सुनते हैं और आई होप कि आप सभी को ये पोइट्री अच्छी लगेगी। जो एक बड़े पेड़ के समान होते हैं वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, मुश्किलों में जो साथ खड़े होते हैं वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, जिनकी शीतल छाया में सब सुरक्षित हैं वो जीवन की सच्ची पूंजी होते हैं, अनुभवों की एक खुली किताब है वो, अनुभवों की एक खुली किताब है वो, जिंदगी की सही राह का हिसाब है वो, कांपते हाथों से जब आशीष देते हैं, कांपते हाथों से जब आशीष देते हैं तो रास्ते के सारे पत्थर हट जाते हैं, अंधेरों में जो बनकर दीप जलते हैं, अंधेरों में बनकर जो दीप जलते हैं वो हर सीख से हमको संवारते हैं, तोल मोल के बिना जो प्यार लुटाते हैं बचपन में हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, अपनी हर खुशी को जो हंसकर भुला गए, अपनी हर खुशी को जो हंसकर भुला गए हमारी खातिर खुद को खपा गए, उनका हर एक संबल अनमोल होता है, उनका हर एक संबल अनमोल होता है, उनका हर शब्द आशीर्वाद सा होता है, उनका हर शब्द आशीर्वाद सा होता है, मत भूलो उनके एहसानों को कभी,
मत भूलो उनके एहसानों को कभी, ये एहसान भी उनका प्रेम होता है। ये एहसान ही उनका प्रेम होता है जिसे वो कभी जताते नहीं, बस आशीष पाना चाहते हैं, तुम्हारा प्यार पाना चाहते हैं, पर कभी बतलाते नहीं। दो मीठे बोल दे दो, दो मीठे बोल दे दो उनकी झोली को अभी, दो मीठे बोल दे दो उनकी झोली को अभी, बुजुर्ग हैं तो घर की रौनक और बरकत है यही, बुजुर्ग हैं तो घर की रौनक और बरकत है यही, इनकी इज्जत ही हमारी असली ताकत है, इनकी इज्जत ही हमारी असली ताकत है, इनकी सांसों से ही घर आबाद है, इनकी सांसों से ही घर आबाद है, इनकी प्यार भरे सहारे से ही हम हमेशा खुश और खुशहाल हैं। बिल्कुल, इनकी खुशियों से ही हम खुश खुशहाल होते हैं, इनके आशीर्वाद से ही दुनिया की कोई भी बुराई आपका बुरा नहीं कर सकती, अगर आपके घर के बड़े बुज़ुर्गों का हाथ हमेशा आपके सिर पर होता है। तो आज का ये दिन हमारा इन्हीं को समर्पित होता है। तो अभी आपने सुनी बहुत ही प्यारी सी पोएम, तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है हमारा रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ। तो आज का हमारा रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ कहता है कि खुद पर भरोसा करो, खुद पर भरोसा करो और हमेशा अपने हर काम को अपने से करना चाहिए और खुद पर भरोसा भी करना चाहिए। अपने हर काम को अपने से करने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको कोई भी काम करना हो वो आप हमेशा खुद से कीजिए, क्योंकि जब हम खुद से अपने काम करते हैं तो हमें समझ में आता है कहाँ गलती हो रही है, कितना करना है, कितना नहीं करना है, क्या करना है, और साथ ही साथ हमारा काम जो होता है वो जल्दी भी हो जाता है और सही भी हो जाता है। और ये सिखाता है कि कभी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप अपनी किसी काम के लिए किसी और पर निर्भर हैं कि अरे चलो वो कर देगा ना मेरा, तुम ये काम कर देना, हो सकता है कि उसे कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाए या कोई ऐसी चीज़ हो जाए जहाँ पर कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है। हमेशा खुद पर भरोसा करना चाहिए और अपने हर काम को खुद करना चाहिए, और साथ ही साथ में कभी भी आदतें नहीं बनानी चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं कि हम चीज़ों की आदतें बना लेते हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं चीज़ों की, कि हम कुछ चीज़ों की आदतें बना लेते हैं, कुछ हमेशा सप्लीमेंट्स की आदतें बना लेते हैं, कि जैसे मान लीजिए आपको चाय भी चाहिए तो मम्मी ज़रा मुझे चाय बना के दे दो। मम्मी आपको चाय क्यों दें? अगर आपको चाय पीनी है और आपको चाय चाहिए तो आप खुद से बनाना सीख लीजिए ना। अगर आप खुद से बनाना सीख लेंगे तो वो आपके लिए हमेशा के लिए हो जाएगा, मम्मी घर पर हो या ना हो आप आराम से चाय पी सकते हैं खुद से बनाकर। लेकिन हमारी क्या आदत होती है, मम्मी चाय दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मम्मी ये खाना है ये बना दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने जो भी आपके काम है ज़रूरी वो आप खुद अपने हाथों से करें। अपने हाथों से करने से दो चीज़ होंगी, पहली आप सीख जाएंगे और दूसरी कि अगर मान लीजिए कि कभी ऐसा होता है कि मान लो मम्मी कभी मार्केट चली जाती है या कहीं भी चली जाती है तो आप उस चीज़ को अपने हाथों से कर पाएंगे, और इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुद पर भरोसा बढ़ता है। इसलिए हमेशा आपके अपने जो भी ज़रूरी काम है उन्हें आपको सीखना चाहिए। आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ बताने का मोटिव जो है वो यही है कि आपके रोज़मर्रा के वो ज़रूरी काम जो आप हमेशा से करते आते हैं वो आपको सीखने चाहिए। अगर आप सीखेंगे तो वो आपके लिए ही बेहतरी होगी। तो आइए लिसनर्स अब चलते हैं एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग इस प्यारे से कहीं ना कहीं दिन में सुन लेते हैं, और बस इस प्यारे से सॉन्ग के उस पार आते हैं फिर से आपसे बहुत सारी बातें करने के लिए, क्योंकि आज है हमारा सीनियर सिटीजंस वाला डे आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुन सहेली में, और अभी हमारे पास बातों का खजाना है, यानी कि बहुत कुछ है आपसे बताने के लिए। सो आइए चलते हैं प्यारे से सॉन्ग की तरफ, सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग, बस यूं गए और यूं आए। स्टे ट्यून्ड।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद ही पसंदीदा शो जिसका नाम है सुन सहेली। सुन सहेली और वापस आ गए हैं फिर एक बार आपसे बातें करने के लिए। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हमारा दिन होता है सीनियर सिटीजन्स का, इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन्स की। एक बहुत आम, तो हम इसे कहते हैं कि ये बहुत आम उनमें कहीं ना कहीं बीमारी है, लेकिन ये उन्हें परेशान कुछ ज़्यादा ही करती है। आज मैं बात करने वाली हूँ जिस बारे में उसे आम भाषा में कहते हैं गठिया। आम भाषा में इसे गठिया कहा जाता है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो जाती है बड़े बुज़ुर्गों में। लेकिन इसे मेडिकल भाषा में अगर हम जाने तो इसे ऑस्टियोथायराइटिस कहा जाता है। ऑस्टियोथायराइटिस का मतलब होता है कि जोड़ों का घिसना, यानी कि जब हमारे जो जोड़ होते हैं वो घिसना शुरू हो जाते हैं तब हमें गठिया हो जाती है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि गठिया कैसे शुरू होती है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या क्या कारण होते हैं, और उसके बाद हम इसके लिए आपको कुछ प्रिकॉशंस भी बताएंगे। तो अब आते हैं सबसे पहले कि गठिया शुरू कहाँ होती है। तो सभी को लगता है जब हम कभी चेकअप कराते हैं और हमें गठिया डॉक्टर बताते हैं कि आपको गठिया है, तो हमें लगता है कि अरे ये तो अचानक हो गई। लेकिन मैं आपको बता दूं लिसनर्स कि गठिया कभी भी अचानक नहीं होती, बल्कि ये धीरे धीरे आपके शरीर में पनपना शुरू हो जाती है। इसकी शुरुआत के कुछ लक्षण होते हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। इसके शुरुआती लक्षण क्या है, जिससे कि आप ये जान जाएंगे कि आप में गठिया होने की शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है सुबह उठकर अगर आपको मुट्ठी बंद करने में दिक्कत होती है, जैसे जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो उसके बाद हमारी उंगलियों और हाथों में अगर हमें जकड़न महसूस होती है और आप अपनी हाथों की मुट्ठी जब बनाते हैं तो नहीं बना पाते, ये एक लक्षण कहीं ना कहीं होता है कि अगर सुबह उठकर हमारे हाथ पैरों में जकड़न है तो यानी कि ये गठिया की शुरुआत हो सकती है। दूसरा आता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि उठते बैठते हुए या कई बार पैरों को जब हम मोड़ते हैं तो हमारे पैरों में से, जोड़ों में से खट खट की आवाज़ें आती हैं। हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं कि अरे कुछ होगा, चलो ठीक है, हड्डियों में से आवाज़ आ रही होगी। लेकिन इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की आवाज़ अगर आपके पैरों से आती है तो इसका मतलब है कि ये जोड़ों के घिसने की शुरुआत हो सकती है। इसलिए इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, ये भी एक लक्षण है जिसमें कि गठिया की शुरुआत शुरू हो जाती है। जो दूसरे लक्षण हैं कि कहीं ना कहीं बिना कोई भारी काम किए जब हमें लगातार थकान और हल्का बुखार महसूस होता है, सीढ़ियाँ चढ़ने या पैरों को मोड़कर बैठने में आपको परेशानी होती है, घुटनों में तेज़ दर्द होता है, खिंचाव होता है, तो कहीं ना कहीं इसका ये सारी ही जो सिम्टम्स हैं वो गठिया के शुरू होने के सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब है कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो बात आती है वो आती है कि हल्की सूजन, यानी कि अगर आपके घुटनों में हल्की सूजन होती है और एक जगह पे लाल हो जाता है, जैसे जब कभी आपने देखा होगा ना कि हमें चोट लगती है तो रेड रेड हो जाता है, अगर वैसा होता है, आपको ज़्यादा सूजन महसूस होती है और दर्द होता है, तो इसका मतलब है कि ये भी कहीं ना कहीं गठिया की शुरुआत हो सकती है। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हम क्या करते हैं कि अरे छोड़ो, हटाओ, कहीं चोट लग गई होगी, कहीं धक्का लग गया होगा, उसकी वजह से सूजन आ गई होगी, उसी वजह से लाल हो गया। ज़रा सी सूजन आ गई तो कौन सी बड़ी बात है, नसों में कोई दिक्कत हो गई होगी, छोड़ो हटाओ, हमें डॉक्टर को नहीं दिखाना है, हम घर में कुछ कर लेंगे और ठीक हो जाएगा। हम ज़्यादातर यही करते हैं। जब आप कंटिन्यूसली चीज़ों को इग्नोर करते हैं, अपनी बीमारी पर ध्यान नहीं देते, उसके शुरुआती जो लक्षण होते हैं उन पर ध्यान नहीं देते, तो धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ने लगती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसे सिम्टम्स लगातार दिखाई दे रहे हैं तो आप उन पर ध्यान दीजिए। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उन पर ध्यान दें, सोचें कि अगर ऐसी सिम्टम्स मुझे कॉन्टिन्यूसली दिख रहे हैं मेरी बॉडी में तो इसका मतलब है हो सकता है मुझे कोई डिसीज़ होनी शुरू हो रही हो, और हम चेकअप जा कर के कराएं, क्योंकि हेल्थ चेकअप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर हम आज बड़े बुज़ुर्गों की बात कर रहे हैं तो बड़े बुज़ुर्गों के सेशन में एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपके घर में सीनियर सिटीजन्स हैं तो हर 6 महीने में या साल भर पर उनका फुल बॉडी हेल्थ चेकअप ज़रूर कराना चाहिए।
अगर आप उनका फुल बॉडी हेल्थ चेकअप कराएंगे तो इससे अगर उनकी बॉडी में कोई भी डिसीज़ पनप भी रही होगी ना, तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा कि हाँ ये डिसीज़ उनकी बॉडी में पनप रही है, इससे आपको उसे दूर करने में आसानी होगी। आइए अब बात करते हैं कि गठिया होने के क्या क्या कारण होते हैं। तो गठिया होने का सबसे पहला कारण होता है कि बढ़ता हुआ वज़न। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो इससे आपकी बॉडी का जो वेट होता है वो सीधा आपके घुटनों पे जाता है, जिससे कि हमारे जोड़ों पर दबाव पड़ता है और उनके घिसने की जो घिसाव होता है वो ज़्यादा तेज़ हो जाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ वज़न गठिया का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। और इसी के साथ आ चुकी हैं हमारे चैट बॉक्स में प्रीति शुक्ला जी, जो कि हमें बहराइच से सुनती हैं और लिख रही हैं गुड आफ्टरनून आरजेस, गुड आफ्टरनून आपको भी प्रीति जी, कैसी हैं आप फटाफट से बताएं, और बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने शो सुन सहेली में। तो आइए लिसनर्स अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा कारण होता है कि पुरानी चोट। अगर आपको कोई कभी पुरानी चोट लगी हो, या कई बार होता है कि हमारे पैर में ज़्यादा जब चोट लगती है तो रॉड्स वगैरह पड़े होते हैं, ये भी एक कारण कहीं ना कहीं होता है गठिया का, यानी कि पुरानी आपकी कोई भी चोट जो आपने छोटी समझकर छोड़ दी होगी, उसका अच्छे से इलाज नहीं किया होगा, वो जब अंदर ही अंदर ज़्यादा बढ़ जाती है तो गठिया बन जाती है। तीसरा कारण होता है कि कहीं ना कहीं हम हमेशा कहते हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, 2400 घंटे कहीं ना कहीं बस आपने खाया लेट गए, खाया सो गए, कोई भी काम नहीं किया ज़्यादा फ़िज़िकल, अगर आपने रूटीन नहीं किया

चले जाना, या अगर हो सके तो सुबह टहलने चले जाना। देखिए 10-15 मिनट 20 मिनट टहलना ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है, चाहे आप मॉर्निंग वॉक करें या इवनिंग वॉक करें, दोनों ही आपके लिए ऑप्शन है, लेकिन करें ज़रूर। क्योंकि जब हम मॉर्निंग वॉक करते हैं तो हमें अच्छी ऑक्सीजन मिलती है और इससे हमारी बॉडी की फिज़िकल एक्टिविटी होती है, जिससे कि आपको बहुत सारी जो डिसीज़ हैं वो नहीं होती हैं। और यही इवनिंग वॉक के साथ भी होता है कि अगर हम मान लीजिए किन्हीं कारणों से आप नहीं जा पाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, तो आप इवनिंग वॉक पे जाइए। फिज़िकल एक्टिविटी करना बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये थे कुछ कारण जिनकी वजह से ये आमतौर पर हमें गठिया की प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि सीनियर सिटीजन्स पे बहुत ज़्यादा देखी जाती है। अब आते हैं इसके बाद इसके निवारण पे, लेकिन निवारण पे आने से पहले हम एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनेंगे और इन्जॉय करेंगे। वैसे निवारण के नाम से आप सभी को कुछ तो याद आया होगा ना, कि हमेशा मैं क्या करती थी कि मैं निवारण बताने का काम मैम पे डाल देती थी कि भाई निवारण तो आपकी अपनी प्यारी आरजे समता जी ही बताएंगी। लेकिन आज क्या है ना कि वो कोई किन्हीं कारणों से यहाँ पे नहीं है, इसलिए निवारण बताने के लिए मैं उन्हें थोड़ा सा मिस कर रही हूँ। अगर वो होती ना तो अभी कहती कि अंशिका आप निवारण तो तुम मुझे ही दोगी बताने के लिए, क्योंकि निवारण की जिम्मेदारी तो आपने हमारे कंधों पर दे दी है। तो बिल्कुल निवारण की जिम्मेदारी हमने उनके कंधों पर दे दी है और उन्हीं के कंधों पर रहेगी, लेकिन जो कि आज वो यहाँ पे नहीं है अभी फिलहाल, तो मैं आपको बता देती हूँ, वरना जब वो वापस आएंगी ना तब तो वही आपको बताएंगी। तो आइए लिसनर्स चलते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुन लेते हैं, इंजॉय कर लेते हैं, बस यूं गए और यूं आए। स्टे ट्यून्ड।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 88400918123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान, पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
5: गोंडा शहर की धड़कन।
6: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
7: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बहुत ही प्यारा और पसंदीदा शो जिसका नाम है सुन सहेली और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो आइए अब चलते हैं और बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाले हमारे टॉपिक पर, जो कि अभी हमने बताया आपको कि गठिया को लेकर के किस तरीके से क्या क्या शुरुआती सिम्टम्स होते हैं, कैसे क्या क्या कारण होते हैं। अब आते हैं निवारण पे, निवारण जो कि सिर्फ आज के लिए मेरी जिम्मेदारी है और नहीं तो फिर जिनकी ये जिम्मेदारी हमेशा से है वो आएंगी और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी हमेशा से निभाती हैं और आगे भी निभाती रहेंगी, यानी कि आपकी अपनी प्यारी वाली RJ समता जी। तो चलिए फिलहाल चलते हैं, अभी के लिए तो मैं ही आपको बता देती हूँ कि इसके निवारण क्या क्या है। तो गठिया के लिए कुछ जो कि निवारण यानी कि प्रकॉशंस हैं, वो सबसे पहले है कि अपने वजन को जो है काबू रखना चाहिए। वजन पे काबू रखने का मतलब है कि कभी भी अपने वजन को ज़्यादा बढ़ने ना दें, क्योंकि जब हमारा वजन ज़्यादा बढ़ जाता है तो वेट पूरा जो होता है वो हमारे जोड़ों पर आ जाता है, जिससे कि जोड़ों के घिसने का खतरा ज़्यादा होता है। दूसरा आता है कि आप रूटीन से व्यायाम ज़रूर करें। हमेशा हम बताते हैं कि अगर आपको अपने पैरों को, अपने जोड़ों को फिट रखना है तो उसके लिए कॉन्टिन्यूसली एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जोड़ों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है और आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों की का ये दर्द दूर हो और आपको ज़्यादा पैरों की प्रॉब्लम ना हो, जोड़ों की प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए आप फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह भी ले सकते हैं। हल्की एक्सरसाइज करें, जैसे रोज़ 20 से 30 मिनट वॉक करना या फिर बैठ करके हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस को आप कर सकते हैं। तीसरा आता है कि गर्म और ठंडी सिकाई, यानी कि अगर आपके जोड़ों में जकड़न ज़्यादा होती है तो आप गर्म पानी से सिकाई करें, और अगर सूजन और लालपन हो जा रहा है तो आप ठंडी सिकाई करें यानी कि बर्फ से सिकाई करें। अब आता है कि क्या कुछ हमें चेंज करना चाहिए हमारे डेली रूटीन में। तो सबसे पहले आपको अपने डेली रूटीन में जिसे चेंज करना है वो है आपका अपना खान पान। खान पान का हमारे, हम हमेशा कहते हैं कि हम जो खाते हैं उसका हमारी हेल्थ पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका गठिया जल्दी ठीक हो जाए तो आपको खाने में भी कुछ चीज़ों को अवॉइड करना होता है। हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन जब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये नुकसानदेह भी हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप चावल कम खाएं, ऐसी चीज़ें कम खाएं जो आपका फैट बढ़ाए। चावल हो गया, चीनी हो गया, तला भुना हो गया, ज़्यादातर मसाले वाली चीज़ें हो गई, ये सब अवॉइड करना चाहिए। हल्की और जल्दी डाइजेस्ट होने वाली चीज़ें ही आपको खानी चाहिए। दूसरा आता है कि लक्षण शुरू होते ही दिखते ही आप एक बार टेस्ट ज़रूर करवाइए, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, ऐसी चीज़ें ज़रूर करानी चाहिए। दूसरा आता है कि डॉक्टर जो भी आपको दवाई प्रिस्क्राइब करें वो आप ज़रूर लें, मेडिसिंस के साथ कोई भी लापरवाही ना करें, क्योंकि अगर हम मेडिसिंस के साथ लापरवाही करते हैं तो ये हमारे आगे के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनकर उभर सकता है। इसलिए कभी भी अपनी दवाइयों के साथ कोई भी आप चांस मत लीजिए। आपको जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वैसी ही दवाई खाएं, डेली रूटीन के साथ एक्सरसाइज करें, अपनी डाइट को चेंज करें, जितना हो सके प्रोटीन वाली चीज़ें यानी कि फ्रूट्स लें अपनी डाइट में, अच्छी चीज़ें खाएं, ज़्यादातर हो सके तो पालक का सूप ज़रूर पिएं, और इसी के साथ फैट वाली चीज़ें, बाहर का जंक फूड और ऐसी चीज़ें जो कि आपको नुकसान करती हैं उनसे दूर रहें। सिकाई ज़रूर करें जैसे कि हमने आपको बताया, और इसी के साथ साथ अपने छोटे छोटे कामों को खुद करने की कोशिश करें जहाँ तक हो सके। अगर आप अपने कामों को खुद करेंगे तो इससे दो फायदे होते हैं, इससे हमारा काम भी हो जाता है और हमारा मन भी लगा रहता है। इसलिए कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि आप अपने छोटे छोटे कामों को खुद करें, इससे आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी हो जाएगी और आपको कहीं ना कहीं एक अंदर से चीज़ भी फील होती है, हमें खुशी फील होती है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमने कुछ कामों को खुद से किया। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम कहीं ना कहीं अपने कामों को खुद ही करें। तो आइए लिसनर्स, अब चलते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग हमारा वेट कर रहा है, इसे सुन लेते हैं, इन्जॉय कर लेते हैं। बस आएंगे इस सॉन्ग के उस पार आपसे फिर सारी बातें करने के लिए और आपको बताएंगे कि आज हमारे पास क्या कुछ है प्लांट्स को लेकर के, क्योंकि अभी तक हमने बात की सीनियर सिटीजन्स की हेल्थ को लेकर, उनकी केयर को लेकर, अब हम बात करेंगे कि क्या कुछ हमारे पास है जो कि प्लांट्स को लेकर के, क्योंकि आज का हमारा थर्सडे सेक्शन प्लांट्स को लेकर भी होता है। तो कुछ होम रेमेडीज बताएंगे, और सॉरी कुछ होम टिप्स बताएंगे जिनसे कि आप अपने प्लांट्स को बेहतर रख सकते हैं। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं, और उससे पहले सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। आप सभी सुने, इंजॉय करें और बने रहे अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुन सहेली में, विद आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका। स्टे ट्यून्ड।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88-40-33-95-84। अब सपने होंगे साकार।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
3: आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद ही पसंदीदा शो जिसका नाम है सुन सहेली। तो वापस आ गए हैं फिर एक बार आपसे बातें करने के लिए, लेकिन उससे पहले आइए सीधा चलते हैं चैट बॉक्स में। और मैं देख रही हूँ कि प्रीति जी के साथ साथ RK श्रीवास्तव जी भी आ चुके हैं, लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। गुड मॉर्निंग आपको भी RK जी, कैसे हैं आप? तो आइए लिसनर्स, अब बात कर लेते हैं प्लांट्स को लेकर के। आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम हमेशा परेशान होते हैं कि हमने प्लांट्स को लगाया, उसमें अच्छी खाद भी दी, सब कुछ किया, लेकिन कई बार प्लांट्स जो होती हैं वो ग्रोथ नहीं करती। तो आज प्लांट्स के ग्रोथ करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगी। सबसे पहले हमारी जो टिप्स हैं वो आज लेकर के है कुछ चीज़ों को। आप सभी के घर में मैच बॉक्स आता होगा। मैच बॉक्स यानी कि माचिस जो है वो हम अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं, आप सभी भी यूज़ करते होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि माचिस की तीलियों का ये जो पानी होता है वो पौधों के लिए कितना अच्छा होता है। माचिस की तीलियों में जो मसाले लगे होते हैं उन मसालों को आपको लेना है और उन्हें रात भर भिगो देना है। सुबह तक मसाले निकाल करके, जैसे कि 5 से 6 तीलियां आप ले लीजिए माचिस की, और उनका मसाला जो है उसे निकाल लीजिए और उसे एक पानी में घोल करके रख दीजिए। रात भर में आप देखेंगे कि उस पानी का रंग बदल जाएगा और आप उस पानी को अपने पौधों में डाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी खाद होती है जो घर में बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपके घर पर मिर्च, हरी मिर्च का, टमाटर का पौधा है तो आप ज़रूर से ये खाद उन पौधों में डालिए। बाकी भी आप अपनी, जैसे तुलसी का पौधा है, एलोवेरा का पौधा है, आप इन सब में भी इस खाद को डाल सकते हैं। माचिस की तीलियों का पानी हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम होता है, सल्फर होता है और उसके साथ फास्फोरस भी होता है जो बहुत ज़्यादा काम आता है। इसलिए आज की एक टिप्स क्या करें, आज थर्सडे है और हम जो है वो बातें करते करते में ब्यूटीफुल वाले फ्राइडे में पहुंच जाते हैं। सो आज के लिए ये टिप ज़रूर है कि आप माचिस की तीलियों का पानी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आता है कि अगर पत्तियों पर सफ़ेद रंग की फंगस लग जाती है, यानी कि वाइट फंगस लग जाती है, जमने लगती है, तो दूध इसके लिए सबसे नया और असरदार इलाज है क्योंकि दूध में प्रोटीन्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक स्प्रे बॉटल में दूध ले लेना है और उसमें थोड़ा सा पानी मिला लेना है और सुबह इसे फंगस लगी हुई पत्तियों पर डाल देना है। अच्छी तरीके से स्प्रे कर दीजिएगा फंगस लगी हुई पत्तियों पर और फिर कभी दोबारा वाइट फंगस आपके पौधों में नहीं लगेंगे और आपके पौधे बेहतरीन तरीके से ग्रो भी कर पाएंगे। अब आइए बात कर लेते हैं कि क्या करना है। थर्ड टिप जो हमारी है उसमें आपको क्या करना है कि जब भी हम मनी प्लांट, गुलाब या किसी भी पौधे की कटिंग अगर आप करते हैं तो उसके निचले हिस्से को थोड़े से कच्चे शहद में डाल करके मिट्टी में लगाएं। इससे जड़ों में क्या होता है, रूटिंग जो होती है वो बहुत तेज़ी से होती है और आपकी कटिंग जो है वो ख़राब नहीं होती। और शहद हमेशा एक एंटी फंगल होता है जो कभी भी हमारे पौधों में कीड़े लगने से भी बचाता है। इसलिए जब भी आपने पौधों की कटिंग की है तो उसके निचले हिस्से में थोड़े से कच्चे शहद में मिट्टी को जो है डिप कर दीजिए और फिर ही मिट्टी को लगाइए अपने पौधों पे। इससे क्या होगा, इससे दो चीज़ें होंगी, आपके एंटी फंगल हो जाएगा तो आपको कोई भी कीड़े नहीं लगेंगे, और शहद जो होता है वो रूटिंग को यानी कि जड़ों को बहुत ही जल्दी ग्रो करता है। शहद से पौधे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, इसलिए अगर आपके पास मनी प्लांट है, गुलाब है या कोई भी इस तरीके का पौधा है तो वो आप ले सकते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। अब आते हैं दूसरे पर जो कि है, हमेशा ऊपर से पानी देने से मिट्टी के नीचे की जो जड़ें होती हैं वो सूखी रह जाती हैं, और ऊपरी मिट्टी गीली होने से छोटे कीड़े यानी कि फंग्स जो हैं वो लगने लगते हैं, पनपने लगते हैं पौधों में, जिससे कि पौधों की ग्रोथ कम हो जाती है। देखिए लिसनर्स, हमने हमेशा आपको बताया है कि कभी भी पौधों में पानी ऊपर से नहीं डालना चाहिए। ऊपर से डालने का मतलब होता है कि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि पानी का पाइप लिया और ऊपर से ही पौधों में पानी देना शुरू कर दिया। पौधों में कभी भी ऊपर से पानी बिल्कुल भी मत दीजिए। जब भी आपको पौधों में पानी देना है तो हमेशा नीचे जड़ों से पानी देना चाहिए। अभी अभी आपने सुना कि ऊपर से पानी देने से क्या होता है कि छोटे कीड़े जो होते हैं वो पनपने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि नीचे की जड़ सूखी रह जाती है। इसलिए जब भी पानी दें तो नीचे से पानी देना चाहिए। गमले को किसी गहरे बर्तन या टब में रखें जिसमें कि 2 इंच पानी भरा हो। गमले के नीचे छेद होना बहुत ज़रूरी होता है। गमले के नीचे होल यानी कि ऑक्सीजन होल पौधों में रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि पानी जो है वो निकलता रहे। अगर एक्स्ट्रा पानी भी हो जाए तो वो निकलता रहे। इससे क्या होता है कि पौधों में पानी जो है वो इकट्ठा नहीं होता है। कई बार जब हम ऑक्सीजन होल नहीं बनाते हैं तो सबसे पहले तो क्या होता है कि हमारे पौधों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिससे वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और दूसरा कारण ये होता है कि हमारे पौधे उसी वजह से सड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पहले तो उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलता और दूसरा उनमें एक्स्ट्रा पानी जो होता है वो बाहर नहीं निकल पाता है, कहीं ना कहीं पौधों में ही रह जाता है। इसलिए एक्स्ट्रा पानी का बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप होल ज़रूर बनाएं। और इसी के साथ साथ एक और मैं होम रेमेडी आपको बता दूं जो कि पौधों को कीड़े लगने से बचाती है, वो होता है नीम का पानी। अगर आपके पास नीम है तो आप ढेर सारी नीम की पत्तियाँ ले लीजिए, एक बड़ा सा कंटेनर ले लीजिए, और उन पत्तियों को उस कंटेनर में उस पानी में तब तक उबालें जब तक कि पानी का रंग हरा ना हो जाए। जब पूरा पानी का रंग हरा हो जाए तो आप उसे पत्तियों को निकाल करके फेंक, मतलब अलग कर दीजिए, और उसका जो पानी है उसे ठंडा करके एक स्प्रे बॉटल में आप डाल लीजिए और उन्हें अपने पौधों पर स्प्रे करिए। नियमित रूप से सुबह शाम अगर आप स्प्रे करेंगे तो इससे आपके पौधे कभी भी खराब नहीं होंगे। तो आइए लिसनर्स, अब चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं। बस यूं गए और यूं आए, आप सभी भी सुनिए, इन्जॉय करिए और बने रहिए अपने फेवरेट प्रोग्राम में जो कि है सुन सहेली, विद आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका। स्टे ट्यून्ड।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

बिल्कुल यूं जिए मरेंगे कि दुनिया याद करे, कुछ ऐसा ही जज्बा होता है हमारे घर के बड़े बुजुर्गों में भी, जिसे लेकर के कि आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले पहले पहले वेलकम बैक लिसनर्स, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है आपके अपने पसंदीदा शो सुन सहेली में। और इसी के साथ आशु जी भी आ गई है, लिख रही है शुभ दोपहरिया दोनों आरजे मैम को, शुभ दोपहरिया आपको भी। तो आइए, अब आ गई है हमारी लास्ट बट नॉट लीस्ट वाली बारी, जो कि आज की मोटिवेशनल स्टोरी की। और आज की मोटिवेशनल स्टोरी है चेन्नई की रहने वाली किरण बाई की, जिन्होंने कि 80 साल की उम्र तक एक साधारण घरेलू महिला की तरह जीवन जिया। लेकिन बढ़ती ही उम्र में, कहीं ना कहीं बढ़ती उम्र में उन्हें क्या हुआ कि उन्हें गठिया हो गया और हड्डियों की कमज़ोरी की ने उन्हें बुरी तरह घेर लिया। वो इतनी लाचार हो गई थी कि उठने बैठने में भी उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में भी नहीं जा पाती थी और उन्हें सहारे की ज़रूरत पड़ती थी। एक दिन क्या हुआ कि जब दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उनके पोते चिराग ने कहा कि क्यों ना हम एक फिटनेस ट्रेनर रख लेते हैं, यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट, जो कि दादी को पूरी तरीके से ठीक कर सके। उन्होंने फिटनेस ट्रेनर रख लिया और धीरे धीरे उस फिटनेस ट्रेनर ने उन्हें बहुत ज़्यादा अवेयर किया अपनी हेल्थ को लेकर और वो पूरी तरीके से फिट हो गई और धीरे धीरे उन्होंने उसी से स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग भी ली। लेकिन क्या हुआ कि जब वो ट्रेनर उनको ट्रेंड कर रही थी तो उस दौरान उन्हें फिजियोथेरेपी का काफ़ी अच्छी नॉलेज हो गई और 82 साल की उम्र में उन्होंने अपना फिजियोथेरेपी सेंटर खोला और साथ ही साथ इतनी फिट हो गई कि उसके बाद उन्हें कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम कभी हुई ही नहीं। और उन्होंने खुद का अपना फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर भी खोला और उसी के साथ में कहीं ना कहीं दूसरे और बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट को मौका दिया कि वो उनके सेंटर में काम करें और इस फिजियोथेरेपी को और ज़्यादा बढ़ाएं और हड्डियों की कमज़ोरी और इस गठिया को लोगों से दूर करें। पर फिजियोथेरेपी के थ्रू उन्होंने बताया कि खुद को फिट रखना, फिजिकल एक्टिविटी करना और फिजियोथेरेपी का सहारा लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। यही होता है जब हम अपने दर्द से उभरते हैं और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, जो कि कोशिश की चेन्नई की किरण जी ने। उन्होंने सिर्फ अपना दर्द नहीं दूर किया, सिर्फ अपना इलाज नहीं करवाया, बल्कि फिजियोथेरेपी सेंटर खोलकर और भी बहुत लोगों को रोज़गार भी दिया और बहुत सारे लोगों का इलाज भी किया। और साथ ही साथ ये माइंडसेट भी कहीं ना कहीं ये उदाहरण, ये एग्जांपल भी सबके सामने रखा कि अगर एक कोई बीमारी हो जाती है या आपको कोई तकलीफ हो जाती है और उससे आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है तो ज़िंदगी वहीं ख़त्म नहीं हो जाती। हर दिन एक नई शुरुआत कीजिए।

नए जज्बे के साथ उठिए, क्योंकि जब हम नए दिन के साथ नई कोशिशें करते हैं तो हमें बेहतर चीज़ें मिलती ही हैं। इसी प्यारे से मैसेज और प्यारी सी स्टोरी के साथ आज के लिए बस इतना ही लिसनर्स। अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और मुझे फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। कल मिलूंगी आपसे फिर आपके अपने पसंदीदा शो सुन सहेली में। तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
1: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें

0: लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क डेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
5: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
4: सच में? क्या खास है वहाँ?
5: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
4: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
5: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
4: और फोटोग्राफी वगैरह?
5: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
4: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
5: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
4: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क डेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के साथ लिसनर्स वेलकम वेलकम वेलकम, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कॉलिंग वाले प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो भाई कैसे हैं आप सब, और हमने हमारी दोस्ती को किया है थोड़ा सा एक्सटेंड और फिर से आ गए हैं क्योंकि आज है आपका अपना थर्सडे, और थर्सडे होता है आपका यानी कि बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा और पहेलियों वाला दिन, जिस दिन कि हम आपसे पहेलियां पूछते हैं, जवाब मांगते हैं और बहुत सारी बातें भी करते हैं, और इन्हीं बातों के साथ आइए शुरुआत भी करते हैं आपके अपने शो की जिसका कि नाम है कॉलर ट्यून गोंडा कॉलिंग प्रोग्राम, जिसमें कि आप फरमाइश करते हैं और हम आपकी फरमाइशों को आप तक पहुँचाते हैं यानी कि आपकी पसंद के आपको सॉन्ग्स सुनाते हैं। तो आज हमारी सबसे पहली फरमाइश जो होने वाली है वो होने वाली है मोहम्मद मुशीद जी की। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद मुशीद जी का ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, और इसी के सॉन्ग के साथ इस प्यारे से मौसम के साथ करते हैं आप बहुत ही प्यारी सी शुरुआत आपके अपने प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा की। तो आइए सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं ये पहला सॉन्ग और हमारी ये पहली फरमाइश भी, और इसी पहली फरमाइश के साथ हमारे जो भी लिसनर्स हमारे साथ बने हुए हैं यानी कि मोहम्मद मुशीद जी, अरविंद जी, धर्मेश त्रिपाठी जी, उन सभी का स्वागत स्वागत स्वागत तहे दिल से है स्वागत। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग, सुने एंजॉय करें और बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका, स्टे ट्यून्ड।

तुझी पर लुटाऊंगी, मैं तो मर के भी तुझे चाहूंगी। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी फरमाइश की थी मोहम्मद मुर्शीद जी ने। आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है देवी प्रसाद जी की। तो आइए सुनते हैं देवी प्रसाद जी के सॉन्ग को।

बंद कर दूँ, दरिया में फेंक दूँ चाबी। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। आइए अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश होने वाली है। तो आइए चलिए देखते हैं कि अगली फरमाइश किसकी होने वाली है। हमारी अगली फरमाइश होने वाली है सबीहा जी की। तो आइए सुनते हैं सबीहा जी के सॉन्ग को। मिलती हूँ आपसे इस सॉन्ग के उस पार, तब तक के लिए आप सभी बने रहें आपके अपने बहुत ही प्यारे से शो में, जिसका कि नाम है कॉलर ट्यून गोंडा।

0: जब मैं बादल बन जाऊं तुम भी बारिश बन जाना, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी की फरमाइश की थी सबीहा जी ने। आइए अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है शारदा प्रसाद प्रजापति जी की, जो कि हमें मथुरा वृंदावन से सुनते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं उनकी फरमाइश की तरफ, शारदा प्रसाद प्रजापति जी की, और सुनते हैं उनका सॉन्ग बस यूं गए और यूं आए, इस प्यारे से सॉन्ग के उस पार। और हाँ, आज है आपका थर्सडे यानी कि पहेलियों वाला दिन, और पहेलियाँ रेडी हैं बस आप तक पहुँचने के लिए। लेकिन उससे पहले आइए चलते हैं चैट बॉक्स में, और चैट बॉक्स में मैं देख रही हूँ कि प्रमुख जी आ चुके हैं, और इसी के साथ अरीबा शाकिर जी भी आ गए हैं जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आपको भी। और इसी के साथ में अरविंद जी आ गए हैं, धर्मेंद्र मोहन जी आ गए हैं जो कि हमें आवाज़ विकास से सुनते हैं, लिख रहे हैं आरजी अंशिका जी गुड आफ्टरनून, माई सॉन्ग ये दुनिया तुझे कुछ नहीं कहने देगी, ज़रूर सुनाएंगे धर्मेंद्र जी। लेकिन फिलहाल के लिए आइए आगे बढ़ते हैं शारदा प्रसाद प्रजापति जी के सॉन्ग के साथ।
1: अभी झुकने वाली

बिल्कुल, पैरों में बंधन है, पायल ने मचाया शोर, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। और आइए अब इससे पहले कि हम हमारी अगली फरमाइश की तरफ बढ़ें, चलिए बढ़ते हैं हमारी सबसे पहली पहेली की तरफ। तो आज की सबसे पहली पहेली आप सभी के लिए है, तो ध्यान से सुनिए और इसका जवाब दीजिए। मैं हूँ एक ऐसी अनोखी चीज़ जो आग में तपकर और निखर जाती हूँ। मैं हूँ एक ऐसी अनोखी चीज़ जो आग में तपकर और निखर जाती हूँ। मुश्किलें जितनी ज़्यादा आएं मुझ पर, मेरी चमक उतनी ही बढ़ती जाती है। मैं हूँ एक ऐसी अनोखी चीज़ जो आग में तपकर और निखर जाती है। मुश्किलें जितनी ज़्यादा आएं मुझ पर, मेरी चमक उतनी ही बढ़ती जाती है। तो ये है आपकी पहेली आप सभी के लिसनर्स, तो सुने और फटाफट से इसका जवाब दें। तब तक के लिए आइए हम बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है राजकमल यादव जी की। तो आइए सुनते हैं राजकमल यादव जी के सॉन्ग को और मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार। तब तक के लिए सोचें और हमें जवाब चैट बॉक्स में ज़रूर दें।

सलाम मेरे महबूब तुझे सलाम। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। आइए अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश होने वाली है सतीश जी की। तो आइए सुनते हैं सतीश जी के सॉन्ग को और मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार। तब तक के लिए सुने और आप सभी इंजॉय करें। और मैं बता दूँ लिसनर्स कि मैंने आपसे जो पहेली पूछी थी उसका जवाब आ चुका है और जवाब दिया है सुरेंद्र यादव जी ने, जो कि है सोना। और इसी के साथ सरोजनी राजपूत जी ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, जो कि है सोना। अबरीक जी ने भी अरीबा शाकिर जी ने भी जवाब बिल्कुल ही सही दिया है, गोल्ड या सिल्वर। तो मैं आपको बता दूं कि गोल्ड या सिल्वर नहीं, गोल्ड है। और मोहित जी ने, जो कि मालवीय नगर से सुनते हैं, उन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो आप सभी ने दिया है बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब आप सभी इस सॉन्ग के साथ करें अपनी अगली पहेली का इंतज़ार, जो कि आपको बहुत ही जल्द मिलेगी। फिलहाल आइए सुनते हैं सतीश जी के सॉन्ग को।

वादा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। तो आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश होने वाली है सुरेंद्र यादव जी की। तो आइए सुनते हैं सुरेंद्र यादव जी के सॉन्ग को, मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार अगली प्यारी सी पहेली के साथ। तब तक के लिए आप सभी सुने, इंजॉय करें आपके अपने पसंदीदा शो कॉलर ट्यून गोंडा को।

लगी आज सावन की फिर वो लड़ी है, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश होने वाली है धर्मेंद्र मोहन जी की, जो कि हमें आवाज़ विकास से सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं धर्मेंद्र जी के सॉन्ग को।

अभी अभी आपने जो सॉन्ग सुना वो था धर्मेंद्र मोहन जी का, जो कि हमें आवाज़ विकास से सुनते हैं। आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि होने वाली है एहसान जी की। तो आइए सुनते हैं एहसान जी की फरमाइश को, और इसी के साथ मैं आपको आपकी नई पहेली भी बता देती हूँ। लिस्टर्स, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। तो आपकी अगली पहेली है, जितना आगे बढ़ाओगे तुम उतना मुझे पीछे छोड़ जाओगे। जितना आगे बढ़ोगे तुम उतना मुझे पीछे छोड़ जाओगे। बीत गया जो एक बार, लाख चाहो पर वापस नहीं पाओगे। जितना आगे बढ़ोगे तुम मुझे उतना पीछे छोड़ जाओगे। बीत गया जो एक बार, लाख चाहो पर वापस नहीं पाओगे। ये है आप सभी की अगली पहेली, तो आप सभी इसका जवाब सोचे। तब तक के लिए आइए हम सुन लेते हैं एहसान जी के सॉन्ग को।

पानी जरा जम के बरसो, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। और इससे पहले कि हम हमारी अगली फरमाइश की तरफ बढ़ें, आइए देखते हैं कि किसने दिया है पहेली का सही जवाब। तो यहाँ मैं देख रही हूँ राजकमल यादव जी ने, जो कि उन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, टाइम यानी कि समय। और इसी के साथ सुरेंद्र यादव जी ने भी सही जवाब दिया है, और मोहित मालवीय नगर से उन्होंने भी सही जवाब दिया है। और इसी के साथ रोशनी रावत जी ने, जो कि उन्नाव से हैं, उन्होंने भी बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया है। तो भाई आप सभी ने दिया है करेक्ट करेक्ट करेक्ट जवाब। तो आइए इसी के साथ अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश होने वाली है चांद बाबू की। तो आइए सुन लेते हैं चांद बाबू जी के सॉन्ग को, और मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार्ट। तो के लिए सुने, इन्जॉय करें और बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। स्टे ट्यून्ड।

रास्ता है जिंदगी, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। आइए अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है अक्षा खान जी की। तो आइए सुनते हैं अक्षा जी के सॉन्ग को।

मैं तुझको चाहूंगा हरदम, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। आइए अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है मुमताज अंसारी जी की। आइए सुनते हैं मुमताज अंसारी जी के सॉन्ग को।

तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। आइए अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है राम नरेश तिवारी जी की। तो आइए सुनते हैं राम नरेश तिवारी जी के सॉन्ग को।

ये है गीता का ज्ञान, जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल देगा भगवान। बिल्कुल सही। आइए अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश, आइए देखते हैं कि किसकी होने वाली है। सो हमारी अगली फरमाइश होने वाली है सुरेश कुमार जी की, जो कि हमें चौक से सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं सुरेश कुमार जी के सॉन्ग को।

0: आजकल ढल गया बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग दिन। आइए अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है निशा जी की। तो आइए सुनते हैं निशा जी के इस प्यारे से सॉन्ग को, और इसी सॉन्ग के साथ में हम आपको बाय भी करेंगे क्योंकि हमारा टाइम बस थोड़ी देर में होने वाला है। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग, जो कि फरमाइश है निशा जी की।
1: था गुल एक

प्यार तेरा होठों पे गितवा, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि फरमाइश थी निशा जी की। और इसी के साथ लिसनर्स, इसी प्यारी सी फरमाइश के साथ आप सभी को छोड़े चलती हूँ। सुनिए, इंजॉय करिए और बने रहिए अपने फेवरेट एफएम रेडियो यानी 99.6 एफएम में। और अभी के लिए मुझे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
4: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

कमरे की हो जाए कब तो प्यार दो प्यार दो और बेचैन दिल ठर की

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनएस

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोदली, जहाँ ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोदली स्पेशल खेत खलिहान, जहाँ हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में। स्टे ट्यून्ड।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ

0: ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: हाँ जी, आप सब लोगों का वेलकम करते हैं आपके अपने शाम के स्पेशल शो गोधुली में। ऑफ कोर्स आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। और आप सभी लोगों का बहुत अच्छे से इस बात का अंदाजा है कि जैसे ही बृहस्पतिवार का शाम 5 बजता है, वैसे ही आरजे अदनान आ जाते हैं और साथ में आवाज होती है हमारे एक्सपर्ट की। यानी हर बार अलग अलग विषय के साथ हम अपने किसान भाइयों के लिए जो प्रोग्राम लेकर के आते हैं खेत खलिहान, उसमें हर हफ्ते अलग अलग विषयों पे हम बातचीत करते हैं, समस्याओं पे बातचीत करते हैं और साथ ही साथ उसके समाधान पे बात करते हैं। सो आज का जो विषय है वो बहुत ज़्यादा अहम है और उतने ही अहम आज के हमारे गेस्ट भी हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो हम अपने गेस्ट का वेलकम करते हैं, क्योंकि हम आपको बता दें आज का जो हमारा विषय है वो है गन्ना में उर्वरक प्रबंधन, जिस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मिस्टर सुनील कुमार सिंह मौजूद हैं, जो कि जिला गन्ना अधिकारी हैं। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस शो में।
2: थैंक यू सो मच।
1: और किसान भाइयों के लिए चूंकि ये प्रोग्राम समर्पित है और हमने आपसे हर बार ये कहा है कि भाई आप दो तरह से हम अपने सवाल पहुंचा सकते हैं हम तक। जी हाँ, एक तो आपका नंबर है 6393 3164 29, यानी 6393 3164 29, 6393 3164 29। इस नंबर पे आप हमको कॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ जिस रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम के एप्लीकेशन से सुनते हैं उस पर भी आप हमको टाइप करके बता सकते हैं कि आपकी विषय से संबंधित कौन सी समस्या आ रही है। मुझे बचपन की एक बात याद आ रही है कि बचपन में छोटा से अनार, बड़ा से आम, छोटी से इमली और बड़ी से ईख होता था। तो मेरा पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये गन्ना है या ईख है, अपने एक्सपर्ट से।
2: ईख हमारा जो इस भाषा है भारतीय, उसमें ईख यूज करते हैं, गन्ना भी यूज करते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण फसल है ये भारत वर्ष की, क्योंकि इससे इंडस्ट्री भी जुड़ी हुई है और चीनी उत्पादन होता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने अच्छा उठाया कि हम लोग भी प्राइमरी में जब पढ़ते थे तो इसे ईख ही होता था।
1: बिल्कुल, मैंने कभी गा से गन्ना नहीं पढ़ा, गा से गमला पढ़ा।
2: तो बहुत अच्छा।
1: ये बहुत अहम प्रश्न है, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि हमारे साथ में हमारे को होस्ट इरफान शाह भी मौजूद हैं और इरफान शाह का भी हम वेलकम करते हैं अपने इस शो में।
3: बहुत बहुत शुक्रिया सर।
1: थैंक यू सो मच। सो आइए दोस्तों, चलते हैं विषय की तरफ बिना किसी देरी किए हुए। और जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि आज के विषय का नाम है गन्ना में उर्वरक प्रबंधन। सो आइए जानते हैं अपने एक्सपर्ट से। सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है सर, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप जिला गन्ना अधिकारी हैं और अभी हमने जस्ट ऐसे ही एक सवाल किया आपसे कि भाई ईख क्या है, तो आपने कहा ये तो हमने भी पढ़ा, ये तो बहुत सही बात है। मैं पहला प्रश्न तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष में पूरे सबसे ज्यादा कौन से राज्य में गन्ना का उत्पादन होता है?
2: हमारे सौभाग्य की बात, हम लोग उत्तर प्रदेश के वासी हैं और उत्तर प्रदेश में ही होता है सबसे ज्यादा गन्ना, सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन।
1: क्या बात है, मतलब आपने ये बता दिया कि अपना यूपी जो है वो अव्वल है गन्ना उत्पादन के मामले में भी और चीनी उत्पादन के भी मामले में। बेशक बेशक, सही बात है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि हमको भी ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे यहाँ का जो तराई एरिया है ये कहीं ना कहीं गन्ने की फसल के लिए बहुत ज्यादा सही है, इसी वजह से शायद गन्ने का उत्पादन यहाँ सबसे ज्यादा होता है। गन्ने की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हर चीज में उसकी किस्में होती हैं, तो हम गन्ने को लेकर के भी जानना चाहेंगे कि यह गन्ने में भी कोई किस्म होती है, और अगर होती है तो कौन कौन सी?
2: बिल्कुल बिल्कुल, गन्ने में भी दो प्रजातियां हैं जो हम लोग किसानों को सजेस्ट करते हैं, उसमें एक अगेती है और एक सामान्य या मिड लेट उसको बोलते हैं।
1: जी,
2: अर्ली वैरायटी की एक्चुअली हमारे यहाँ जो कैटेगरी है वो शुगर की जो चीनी पड़ता है, कितना उसमें चीनी बन रहा है, तो अर्गेती जो प्रजातियां हैं वो हमारी करीब करीब 10 महीने में उनमें जो उनकी रिकवरी क्षमता उतने तक चीनी बन जाती है, तो उनको हम लगते हैं अगेती में। और जिनमें करीब 12 महीना लग जाता है, 11, 11.5, 12 महीना लग जाता है चीनी पड़ता पाने में मैक्सिमम जो उनकी लिमिट है, उनको हम मिड लेट में रखते हैं।
1: मतलब ये दो तरह

0: हाँ, क्या आपने बताया?
1: जी जी जी जी,
0: एक तो अगेती बोला आपने, कहा एक मिड लेट।
1: जी जी जी
0: जी, और आपने दोनों का ड्यूरेशन भी बताया कि 10 महीने में अगर तैयार हो रहा है तो वो अगेती, और अगर 12 महीने मैच्योरिटी में उसका हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं वो मिड लेट है। बेशक। अच्छा, अगर जैसे मान लीजिए हम अपने गोंडा की बात करते हैं, तो यहाँ ज्यादातर कौन सी किस्म का इस्तेमाल करते हैं हमारे किसान भाई?
1: देखिए, इस समय जो वर्तमान हमारा सिनेरियो है उसमें अगेती प्रजातियां करीब करीब 80-90% तक हो गई हैं। चूंकि चीनी परता ज्यादा होता है, जो भी चीनी मिल लगी हुई है मैक्सिमम चीनी बनाने के लिए, कि उनको ज्यादा चीनी जब बनेगी तो ज्यादा उनको लाभ भी होगा, किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान भी समय से होगा। तो मैक्सिमम जो हमारा एरिया है वो अगेती प्रजाति में ही है।
0: अच्छा, तो मतलब ज्यादातर जो हमारे किसान भाई हैं गोंडा के, वो अगेती फसलों पे ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आपने कहा कि जल्दी हो जाता है, 2 महीने का फर्क लगभग होता है, इसके अलावा भी कोई फर्क होता है दोनों फसलों के बीच में?
1: नहीं, उसके अलावा कोई ऐसा फर्क नहीं है गन्ने में, केवल केवल शुगर रिकवरी का जो चीनी पड़ता है।
0: जी,
1: हम किसी भी प्रजाति का जो मूल्यांकन करते हैं गन्ने के संस में, तो उसमें चीनी पड़ता को प्राथमिकता देते हैं, कि उसमें चीनी है कितनी, उसी के आधार पर डिसाइड करते हैं और उसी के हिसाब से करते हैं।
0: जी, तो ये बात तो हमको समझ में आ गई कि अगेती और मिड लेट के बीच में अंतर बस इतना ही है कि अगेती जो है वो 2 महीने पहले लगभग मैच्योर हो जाती है, और जिससे किसान भाइयों को हमारे फायदा होता है। अगला सवाल मेरा ये है कि भाई, गन्ने की बात चल रही है और ऐसा तो है नहीं कि फसल आप कभी भी साल भर में उठाइए और बो दीजिए, हर चीज का अपना एक समय होता है जो निश्चित होता है। गन्ने के लिए कौन सा सही समय होता है बुआई के लिए?
1: गन्ने की खेती हम लोग वर्ष में 2 बार जो है, इसके लिए जो उचित समय होता है वो निर्धारित है, करीब 15 सितंबर से 15 अक्टूबर या 31 अक्टूबर मान लीजिए, एक समय तो हमारा वो हो गया, इसको हम शरदकालीन गन्ना बोलते हैं।
0: जी,
1: और दूसरा होता है बसंतकालीन, जिसका हमारा समय है 15 फरवरी से लेकर के 31 मार्च तक, या थोड़ा सा जो लोग गेहूं काट के वगैरह बोते हैं तो उनके लिए हम 15 अप्रैल की बात करते हैं। एक्चुअली गन्ने मेन है टेम्परेचर का, इस पे जमा होता है, तो करीब अगर 30 डिग्री के इर्द गिर्द टेम्परेचर जब बना रहता हमारा, तो समय गन्ने का जब हम बोते हैं तो जमाव अच्छा होता है। सभी किसान भाइयों से मेरा सुझाव ये है कि शरदकालीन जो गन्ना होता है उसकी पैदावार करीब करीब बसंतकालीन गन्ने की तुलना में 15-20% ज्यादा होती है। और उसमें चूंकि वो आप सितंबर अक्टूबर में लगा रहे हैं, चीनी मिले जनरली चलती है नवंबर के महीने में, तब तक वो मैच्योर हो जाता है करीब 11-12 महीने का, तो उसमें चीनी पड़ता भी मैक्सिमम आ जाता है। और सबसे बड़ा जो फायदा शरदकालीन बुआई का है, उसके साथ आप फसली खेती कर सकते हैं, क्योंकि गन्ने में लागत बहुत आती है बुआई के टाइम पे, सीड भी महंगा है, फर्टिलाइजर हो चाहे लेबर हो, कोई भी इनपुट हो आपका, वो करीब करीब बहुत कास्टली पड़ जाता है जब गन्ने की हम फसल बोते हैं। तो अगर गन्ने के साथ हम साहफसली ले लेते हैं तो जो उनका कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है, लागत है, वो काफ़ी कुछ साहफसल के माध्यम से निकल आता है। और जो जमीन, क्योंकि गन्ना बड़ी फसल है साल भर की, तो उसको हम करीब करीब 4 फीट के बीच में बोते हैं, तो जो बीच की जमीन है उसका भी उपयोग हो जाता है, किसान को एक आर्थिक लाभ भी मिल जाता है। गन्ने के साथ जो फसल के रूप में हम लोग प्राथमिकता देते हैं वो मेनली है दलहनी फसल या तिलहनी फसल। दलहन में जैसे आपका है, आप उसके साथ चना भी ले सकते हैं, राजमा ले सकते हैं, मसूर ले सकते हैं। तिलहनी फसल की बात करें तो हम उसके साथ आप सरसों ले सकते हैं। सरसों में भी केवल पीली वाली जो छोटी होती है, जो बड़ी वाली काली वाली होती है थोड़ा सा फसल के ऊपर डोमिनेंट हो जाती है तो गन्ने की फसल को प्रभावित करता है, इसलिए सलाह देते हैं उसमें। बाकी वेजिटेबल में ढेर सारी हैं, आप जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है गन्ने के साथ आलू है, गन्ने के साथ आप लहसुन कर सकते हैं, गन्ने के साथ आप प्याज कर सकते हैं, गन्ने के साथ आप गोभी लगा सकते हैं, गन्ने के साथ आप कोई भी वेजिटेबल जो बीच के 4 फीट का गैप है उसके बीच में आप यूज करके उसको यूज करके, क्योंकि सब्जी जो भी है वो भी 3-4 महीने की फसल होती है, तो जब तक गन्ना हमारा जमता है बड़ा होता है उस बीच में हमारी जो फसल हो तैयार हो जाती है और उसका एक किसान को अलग बेनिफिट मिल जाता है।
0: तो पहला तो आपने ये कहा कि शरदकालीन में लगाना ज्यादा फायदेमंद होता है, कहीं ना कहीं 10-15% का जो है वो बढ़ोतरी उसमें हो जाती है
1: उत्पादन में।
0: एंड दूसरी बात आपने ये कही कि कहीं ना कहीं सहफसली जो है इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि इसकी बुआई करते समय इसमें काफी लागत आती है। तो पहले बात तो हम इसको थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहेंगे कि आखिर इसकी लागत में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी क्यों हो जाती है?
1: एक्चुअली जो गन्ना की फसल है इसमें जो बीज है वो हम पूरा पूरा गन्ने को इस्तेमाल करते हैं, तो जो एक पर हेक्टेयर सीड रेट है वो करीब करीब आपका हमारा 50 से 60 क्विंटल का है, क्योंकि गन्ना 375 रुपए तो रेट ही है अर्ली वैरायटी का जो सरकार निर्धारित की है बिल्कुल परचेज करने के लिए। तो वो मन अगर उसको हम 375 या 400 की रेंज में रखें तो 20-25 हज़ार का तो सीड ही हो गया, फिर फर्टिलाइजर हो गया, फिर आपकी खेत की तैयारी हो गई, लेबर कंपोनेंट हो गया, तो करीब करीब 1,00,000 रुपए के ऊपर आता है खर्चा। तो इस वजह से क्योंकि गन्ना हमारी 4 फिट पे हम बोते हैं, दूरी उसके बीच में होती है, तो उस जगह का उपयोग भी होता है और किसान को आर्थिक लाभ भी होता है, खरपतवार वगैरह नहीं होते हैं उस बीच की दूरी में, तो गन्ने की फसल को भी एक दोनों का सहयोग जो हो जाता है उससे गन्ने की फसल को भी लाभ मिलता है सब फसल लेने से।
0: अच्छा, तो ये चीज तो आपने बताया कि एक फायदा तो ये होता है कि जो बीच में हम सहफसली करते हैं उससे हमारी लागत जो होती है लगी गन्ने में उसका कहीं ना कहीं खर्चा निकल आता है, एंड दूसरी बात आपने कहा कि इससे गन्ने की फसल को फायदा होता है, इस बात को थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि सहफसली करने से गन्ने को कितना फायदा होता है।
1: गन्ने की फसल जैसे आप दलहनी फसल की खेती कर रहे हैं, साथ में लगा दिया आपने चना या मसूर लगाया, चूंकि वो दलहनी फसल में उनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, वो लगाने से उसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन बढ़ जाता है।
0: जी
1: ठीक है, तो वो जब दलहनी फसलों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं बोते हैं अपने खेतों में, तो उससे उनको नाइट्रोजन की मात्रा जो है जमीन में बढ़ जाती है, बैक्टीरिया उनमें होते हैं जड़ों में उनके, तो अल्टीमेटली वो गन्ने की फसल को भी लाभ पहुंचाते हैं, क्योंकि वो तो 3-4 महीने में कट जाएगी जो सा फसल आपकी है, और गन्ना तो पूरे वर्ष भर का है।
0: बेशक,
1: जी जी जी,
0: ये बात तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये बात समझ में आई कि कॉस्ट कटिंग करने के लिए यानी लागत को निकालने के लिए आप सहफसली करें, दूसरी बात यह कि गन्ने की फसल को भी सहफसली से काफी ज्यादा फायदा मिलता है। आइए अगले प्रश्न के लिए अपने को होस्ट इरफान शाह की तरफ चलते हैं।
2: सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
2: सर, अभी हम लोग सा फसली की खेती की बातचीत कर रहे थे।
1: जी जी जी।
2: तो अपने यहाँ गोंडा में अगर हमारे किसान भाई सा फसली खेती करना चाहते हैं,
1: जी जी जी,
2: तो उसमें कौन सी वैरायटी लगाएं कि जिससे गन्ने का उत्पादन अच्छा हो और जो सा फसली खेती हो वो भी अच्छा हो?
1: देखिए, गन्ने में जो मेन वैरायटी हमारे जिले में इस समय प्रचलित है वो है CO0118, आपका KOLK14201 है।
2: जी,
1: CO0238 वैरायटी थी, थोड़ा रोग ग्रसित हो गई तो उसका एरिया काफ़ी घट गया, लेकिन थोड़ा बहुत अभी भी है वो।
2: जी,
1: उसके अलावा एक CO15023 है। गन्ना आप जो अर्ली है, मैक्सिमम अर्ली एरिया ही है
2: जी,
1: गन्ना आप कोई भी लगाइए ठीक है, लेकिन उसकी दूरी 4 फिट रखिए, टाइम से बुवाई करिए, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर का या 31 अक्टूबर मैक्सिमम है तो उस पीरियड में बोइए। सा फसल के रूप में जो चयन कर रहे हैं
2: जी,
1: वो ऐसी हो जो गन्ने की फसल को नुकसान न पहुंचाए।
2: जी,
1: कई बार होता है जिसे आपने सरसों लगा दी, काली वाली सरसों, उसमें बौंडा वैरायटी बड़ी होती है
2: जी,
1: तो पता लगा गन्ना के जमा हो रहा, गन्ना तो नीचे पड़ गया और फसल ऊपर उठ गई वो। इसीलिए हम लोग ऐसी फसल लगाते हैं, विशेषकर दलहनी, दलहनी में आपका चना है, मसूर है, राजमा है, ये कॉमन क्रॉप है जो हम लोग यूज करते हैं इनमें।
2: जी,
1: इधर बहुत ज्यादा लोकप्रिय गन्ने के साथ आलू भी है
2: जी,
1: क्योंकि इनमें हम लोग जो आलू की खेती जो करते हैं उसमें भी हम लोग जो कल्चरल एक्टिविटी जो वो दो है कर्तव्य का कर्षण क्रियाएं करते हैं खेत में, तो जब क्योंकि आलू को गुड़ाई करते हैं, मिट्टी चढ़ाते हैं, तो वो हमारे गन्ने की फसल को भी लाभ पहुँचाता है।
2: जी
1: जी जी।
2: सर, एक सवाल है कि अगर गन्ने का बीज किसी अनुसंधान से लेना उचित रहेगा या फिर जो किसान उगे हुए
1: नहीं, देखिए गन्ने की वैरायटी कहीं मार्केट में नहीं मिलती है कि धान गेहूं जैसा आपने खरीद लिया।
2: जी,
1: गन्ने के शोध केंद्र हैं, जैसे आपका हमारा UPCSR शाहजहांपुर में है
2: जी,
1: सेवरही है
2: जी,
1: भारत सरकार का IISR आपका लखनऊ में है, या SBI हमारा सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर का एक शाखा करनाल में है, तो वहाँ से वैरायटी रिलीज होती हैं। रिलीज होने में काफ़ी समय लग जाता है, तो वो जो किसान को बीज चाहिए जो रिलीज होती है वैरायटी में, विभाग के माध्यम से उनको थोड़ी मात्रा में दिया जाता है हर साल हर सीजन में।
2: जी,
1: इसे अभी शरद काल की बुआई शुरू होगी हमारी, तो हमारा अलाटमेंट आ जाएगा जो भी नई प्रजातियां हैं, प्रचलित प्रजातियां हैं, कितना क्विंटल बीज का आवंटन हो गया है, तो उस बीज को हम किसान को देते हैं।
2: जी,
1: किसान अपने खेत में उगाता है, मल्टीप्लिकेशन उसका होता है, तो वो पौशाला के रूप में बनाते हैं, हमारी आधार पौशाला हो गई। फिर उससे जब बीज वितरण करता है तो उसे प्राथमिक पौशाला बनती है, उससे जो बीज किसान लेता है फिर वो चला जाता है आपका जनरल, उसमें जो चीनी मिल सप्लाई करते हैं हम लोग
2: जी।
1: बीज का मल्टीप्लीकेशन ये माना जाता है कि 10 टाइम होता है। मान ली हमने 25 क्विंटल किसी को बीज दिया तो 25 क्विंटल किसान लगाएगा तो माना जाता है 250 क्विंटल गन्ना तैयार होगा। फिर बीज में इस्तेमाल हो गया, 250 की बुआई किया तो पता लगा 10 टाइम कर दिए तो 2500 हो गया। इस तरीके से हम लोग बीज का प्रचार प्रसार किसानों के बीच में करते हैं और जो भी उन्नतशील प्रजातियां होती हैं उनको शोध केंद्र के माध्यम से शरद काल में और बसंत काल में दोनों में उपलब्ध कराया जाता है।
2: सर, भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में
1: जी जी
2: क्या कोई उन्नतशील प्रजातियां वहां पर उपलब्ध है, अगर हमारे किसान भाई अगर जैसे जब
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: बोने का समय
1: अभी,
2: है।
1: अभी अभी अभी देखिए जो हमारी COLK 14201 वरायटी है वो ISR लखनऊ की है
2: जी।
1: अभी एक वरायटी उन्होंने COLK 16200 दे दिया है, बहुत थोड़ी मात्रा में कुछ किसान भाई ले आए हैं, उसका प्रचार प्रसार होगा। तो कई वरायटियां उनकी हैं जो अच्छी निकल रही हैं, चल रहा बढ़िया चल रहा ठीक है
0: जी। बेशक, तो भाई गन्ने पे चूंकि आज हम बात कर रहे हैं और जैसा कि हमने आपको अभी शुरुआत में बताया था कि आज का हमारा विषय है गन्ने में उर्वरक प्रबंधन, साथ ही साथ आज हमारे एक्सपर्ट के रूप में मौजूद हैं श्री सुनील कुमार सिंह, जिला गन्ना अधिकारी गोंडा। और आइए, म्यूजिकल ब्रेक का वक्त हो गया है, एक छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक के लिए चलते हैं, वापस से आएंगे। और आने के बाद ऑफकोर्स बहुत अहम सवाल है कि भाई कौन कौन से रोग होते हैं, उनका क्या समाधान है, इसके अलावा सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसमें हमारे किसान भाइयों को ऐड मिलता है, और इसके अलावा मार्केटिंग सबसे अहम बात है उसको लेकर के भी हमें बातचीत करनी है। तो बहुत अहम सवाल है, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, बल्कि इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार आपसे वापस से आकर के मुलाकात करते हैं। सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: यार कुछ अच्छा और अलग खाने का मन कर रहा है।
1: तो फिर चलो
0: कहाँ?
1: फूड मोहल्ला रेस्टोरेंट, जहाँ मिलता है टेस्टी चाइनीज फूड, पास्ता, सूप, ब्राउनी, बर्गर, पिज्जा, बहुत सारी वैरायटीज के साथ। होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 6393-564-005। पता है काली भवानी मंदिर के पास, स्टेशन रोड, गोंडा। जब भी मन हो कुछ अच्छा खाने का, सीधे फूड मोहल्ला रेस्टोरेंट आने का।
2: अरे वाह रोहन, नया स्कूटर!
0: ओ वाह!
1: अब सभी बोलेंगे वाह, क्योंकि लाखों भारतीयों की तरह अब रोहन के पास भी है इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो एक बार की चार्जिंग में चले 100 किलोमीटर। अब ना पेट्रोल की फिक्र, ना ही प्रदूषण की चिंता। अब अपने कंफर्ट के साथ रोड पर निकलिए स्टाइल से। आज ही विजिट करें रुकमणी एंटरप्राइजेस इलेक्ट्रिक स्कूटर एजेंसी, नियर गोंडा सर्विस सेंटर, लखनऊ रोड, पोटरगंज, गोंडा। मोबाइल नंबर 9918-529-110 और 9506-689-000।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
1: हाँ जी, ब्रेक के बाद एक बार वापस से आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं आपके अपने स्पेशल शो। आपको पता है कि हर बृहस्पतिवार शाम 5 बजे, यानी हर थर्सडे इवनिंग 5 बजे से हम लेकर के आते हैं खेत खलिहान, और हर सप्ताह अलग अलग विषय के साथ अलग अलग एक्सपर्ट्स से बातचीत करते हैं। आज का विषय है गन्ने में उर्वरक प्रबंधन, और साथ ही साथ हमारे बीच एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं श्री सुनील कुमार सिंह, जिला गन्ना अधिकारी। क्योंकि जाने से पहले हमने बहुत सारे प्रश्नों के बारे में बताया था कि आने के बाद अपने किसान भाइयों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न करने हैं। तो सर, मेरा अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ये है कि सबसे मेन होता है फर्टिलाइजर किसी भी फसल के लिए, तो गन्ने में क्या डोज होना चाहिए फर्टिलाइजर का, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो?
4: गन्ने में देखिए, चूंकि ये साल भर की फसल है और जो इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ वगैरह होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, किसी भी फसल में 15-16 तत्व हैं जो फर्टिलाइजर के रूप में हम लोग यूज करते हैं, लेकिन मेजर जो उसमें है NPK है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, साथ में अब सल्फर की भी है क्योंकि सल्फर की भी काफ़ी कमी हो रही है, तो इनको हम मेजर रूप से यूज करते हैं। गन्ने में चूँकि शरद काल और बसंत काल दो समय में गन्ना बोने की व्यवस्था है, तो शरद काल में हम थोड़ा सा फर्टिलाइजर का डोज ज़्यादा रखते हैं। उस समय हम नाइट्रोजन करीब 200 kg, फास्फोरस 80 kg, पोटास 60 kg, सल्फर हम करीब 30 kg, ये पर हेक्टेयर हम इस्तेमाल करते हैं। रही बसंत काल की बात, तो उस समय नाइट्रोजन की मात्रा जो है करीब कम थोड़ा सा यूज होता है, 180 kg, फास्फोरस 80, पोटेशियम 60 और सल्फर 30। नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसमें 1/3 तो हम गन्ना बुआई के वक्त दे देते हैं, उसकी कूण में। जब भी गन्ना बोते हैं तो सबसे पहले हम जब गन्ने की कूण निकालते हैं तो उसमें नीचे फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं जो हमारा बेसल डोज के रूप में है, उसके बाद गन्ने का टुकड़ा उसके ऊपर डालते हैं, उसके बाद उसके ऊपर जो भी हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं दीमक वगैरह के नियंत्रण के लिए वो करते हैं, फिर उस पर मिट्टी से ढक देते हैं उसे। लेकिन जो 2/3 हमारा नाइट्रोजन का डोज है वो हम बुआई के बाद जब पानी लगाते हैं गन्ने में 35-40 दिन में फिर इस्तेमाल करते हैं, फिर 60-70 दिन में जब पानी लगाते हैं तो फिर इस्तेमाल करते हैं, और आपका 90-100 दिन पे। ये तीनों डोज हम जून के आखिर तक इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद जून के आखिर में या जुलाई के फर्स्ट में मिट्टी चढ़ा देते हैं उनकी जड़ों में ताकि गन्ना गिरना ना पाए, उसके बाद फिर हम कोई फर्टिलाइजर का डोज नहीं देते उसमें।
1: जी, तो ये तो आपने बताया कि किस तरह से फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है गन्ने की फसल के लिए। क्योंकि आपने अभी एक बात कहा था कि भाई दीमक लग जाता है, तो मुझे अगला सवाल यही जहन में आ भी रहा था कि आपसे ये जाना जाए कि गन्ने में मुख्यतः कौन कौन से रोग होते हैं, पहले तो उन रोगों के बारे में बताइए और उसके बाद उनका समाधान क्या है।
4: देखिए, जो मेजर रोग है गन्ने में वो फंगस रिलेटेड हैं, विशेषकर जो सबसे बड़ी बात है गन्ने में जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है वो है रेड राट, गन्ने का लाल सड़न रोग। बाकी और बीमारियां हैं छोटी मोटी, लेकिन ये जो सबसे मेजर है गन्ने का लाल सड़न रोग है, फंगस से फैलता है। इसी के लिए हम भूमि शोधन की भी बात करते हैं और बीज शोधन की बात करते हैं। भूम शोधन के लिए हम लोग ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर रहे हैं और बीज शोधन के लिए हम लोग कार्बन डाइजीम का इस्तेमाल करते हैं। दोनों शोधित कर देते हैं तो कम से कम इससे काफ़ी कुछ हमारा पौधा सुरक्षित हो जाता है। फिर भी अगर किसी प्रजाति में ये दिख गया कि गन्ने में रेड राट का शुरुआत हो गई है, इस समय सबसे अनुकूल चल रहा है, इस समय जो है कहीं कहीं पर दिखने लगे हैं कुछ प्रजातियों में गन्ने का लाल सड़न रोग, तो उसमें हमारे किसान भाइयों से यही अपील है कि जहाँ पे जिस क्लंप में लगा हुआ उसको उखाड़ दीजिए और उखाड़ने की जगह पे ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल करके उसको ढक दीजिए और जो आपने पौध उखाड़ा है उसको आप भी ज़मीन में कहीं गाड़ दीजिए, ताकि क्योंकि इसका फैलाव बहुत तेज़ी से होता है तो इसमें बड़ा निगाह डालने की ज़रूरत है। मेन हमारी जो बीमारी वही है, बाकी तो हमारा पक्का बोइंग भी है, फिर आपका असमट भी है, कई और बीमारियां हैं, लेकिन मेजर यही है लाल सड़न, जिस पे हमारा किसान भाइयों से अनुरोध है कि उस पर विशेष ध्यान रखें, विशेष सावधानी रखें और उसका विशेष प्रिकॉशन यही है कि बुआई के पहले बीज का भी शोधन कर लें, अपने भूमि का भी शोधन कर लें।
1: जी, तो आपने बताया कि लाल सड़न रोग जो है वो मुख्यतः गन्ने की फसल में देखा जाता है और उसका बेहतर इलाज ये है कि बीज शोधन भी कर लें और भूमि शोधन भी कर लें। और एक तरीका आपने बताया कि मान लीजिए किसी के गन्ने की फसल में ऐसा लगा तो जहां लगा है उस पार्ट को निकाल के अलग कहीं भूमि में उसको हम उसकी उसको गाड़ दें
4: और वहां ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल करें
1: और वहां ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल करना है। लेकिन उसके साथ ही आपने बताया कि उसको ढकना है, तो ढकना मतलब किस
4: ब्लीचिंग पाउडर डाल के जो जहां गड्ढा हुआ है जब आप निकाल रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर यूज कर रहे हैं तो उस गड्ढे को ढक दीजिए।
1: अच्छा, उस गड्ढे को ढकने की आप बात कर रहे हैं।
4: जी।
1: ओके, ये तो हुआ। लेकिन इसके अलावा हम ये भी चाहेंगे कि इसके लक्षण बता दे कि जब ये लाल सड़न रोग होता है तो कैसा क्या होता है फसलों में।
4: लाल सड़न रोग में सबसे बड़ा जो शुरुआत होती है इसकी जो पत्तियां होती हैं गन्ने की, उसके जो बीच वाली धारी होती है, सबसे पहले शुरुआत वहीं से होती है
1: जी।
4: फिर उसमें जैसे नहीं वो छोटे छोटे आपके छर्रे जैसे दाने उस पर दिखने लगते हैं पत्तियों में, और जब गन्ने को आप उसको फाड़ेंगे तो उसमें बीच में पूरा उसका गूदा लाल दिखाई पड़ता है और सिरके जैसी बदबू आती है एकदम, जिससे आइडेंटिफाई हो जाए। गन्ना आसानी से टूट भी जाता है, इससे उसमें जो पोरी बनी हो अगर उसको आप तोड़ेंगे बहुत आसानी से टूट जाता है। तो ये हमारी पहचान है मेजर, तो हर सब किसान भाई लगभग सबको जान जाते हैं कि हाँ ये गलने के लाल सड़न की शुरुआत हो गई है। इस समय सबसे गंभीर मुद्दा बना हुआ है। हमारी एक वैरायटी थी GCO 0238, बहुत ही ज़्यादा पैदावार देने वाली, किसानों के लिए भी चीनी मिल के लिए भी बड़ी फायदेमंद थी, अभी रेड राट से प्रभावित हुई है तो किसान भाइयों को बड़ा नुकसान हुआ है, उसकी एरिया काफ़ी कम हो गई है और सिर्फ उसके पीछे हमारी ये रेड राट बीमारी ही मेजर थी। तो किसान भाइयों से फिर मेरा अनुरोध है कि जब भी गन्ने की बुआई करने जाए तो बीज शोधन जरूर करें और आपका जमीन का भी शोधन कर लें।
1: जी, सो बीज शोधन और जमीन का शोधन जो आपने कहा, ये दोनों होना बहुत ज्यादा जरूरी है लाल सड़न से बचाने के लिए। आपने एक बीमारी का नाम और लिया था जिसका नाम बताया था पुक्का बोइंग, जिसके बारे में थोड़ा सा इन शॉर्ट बता दें।
4: पुक्का बोइंग एक ये भी फंगस डिजीज है और ये आजकल जब बरसात का मौसम आता है उस टाइम पे पत्तियों में ये शुरुआत इसकी होती है, पत्तियां जो है वो सिकुड़ने लगती हैं और वहां पे जहां आपका गन्ने का मुख्य भाग होता है वहां से वो कट जैसा लग जाता है और वहीं से वो टूट के गिरने लगता है। बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसी बीमारी नहीं कि बहुत ज़्यादा क्षेत्र में इसका फैलाव हो, इसके लिए भी आपका वो जो सीड ट्रीटमेंट कर दे रहे हैं और बीज उपचार कर रहे हैं तो उससे भी इसमें भी लाग देगा, क्योंकि ये भी फंगल डिजीज ही है। अब अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है नुकसान हो रहा है तो आपका कॉपर आर्सीक्लोराइड का आप स्प्रे कर सकते हैं।
1: ओके, तो ये आपने बता दी है पुक्का बोइंग बीमारी के लिए कि क्या सॉल्यूशन है और इसमें क्या प्रॉब्लम होती है। मुझे उम्मीद है कि किसान भाइयों को इस बीमारी के बारे में एक अंदाजा हो गया होगा और क्या करना है इसका समाधान भी मिल गया होगा हमारे एक्सपर्ट से। अगला सवाल जो बहुत ज्यादा अहम है वो ये है कि जाहिर सी बात है आप जिला गन्ना अधिकारी हैं तो कई योजनाएं चलती रहती हैं कृषि के क्षेत्र की, अगर हम बात करें सो स्पेशली अगर हम गन्ने की फसल की बात करें तो कौन कौन सी योजना इस वक्त मौजूद है हमारे किसान भाइयों के लिए।
4: देखिए, गन्ना किसानों के लिए हमारे विभाग की तरफ से दो योजनाएं चलती हैं, एक हमारी जिला योजना है, एक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और एक है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन।
1: जी,
4: जिला योजना हमारा जो है उसके 4-5 कंपोनेंट मेजर हैं। एक तो है वो जो हमने बात किया था कि मृदा एवं बीज उपचार, अब चूंकि ये आपको किसान को करना है तो उसके लिए उसको आपको पेस्टिसाइड भी चाहिए, कहाँ मिलेगा तो वो हम अपने समितियों के माध्यम से किसान को उपलब्ध कराते हैं और जो हम देते हैं उस पर 50% की छूट भी मिलती है। जो किसान गन्ना बोरहा हमारे गन्ना समिति का सदस्य है, वो हमारी समितियों से वो पेस्टिसाइड प्राप्त कर सकता है और अपने खेत में इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा है बीज वितरण की जो बात आई थी कि अच्छा बीज कहाँ मिलेगा, उसके लिए भी हम जो पौशाला स्थापित करते हैं आधार या प्राथमिक, उस पर भी हम सब्सिडी देते हैं। जो शोध केंद्र से बीज आता है, किसान अपने खेत में बोता है, उसमें भी किसान को 15 रुपये प्रति क्विंटल यातायात के रूप में सुविधा देते हैं, और जो बीज तैयार हो जाता है, बीज का वितरण करता है, तो 50 रुपये क्विंटल उस पर हम सब्सिडी देते हैं। आधार पौशाला से जो किसान ले जाके अपने खेतों में गन्ना बोता है, उस पर प्राथमिक पौशाला बनाते हैं, उसमें हम 25 रुपये क्विंटल की सब्सिडी देते हैं। तो इस तरीके से उस पर भी सब्सिडी की व्यवस्था है, ताकि किसान को एक लाभ भी हो और जो बीज का फैलाव है वो पर्याप्त मात्रा में पूरे क्षेत्र में हो जाए। तीसरा उसका कंपोनेंट आता है हमारा जैविक का। जैविक एक्चुअली आजकल देख रहे हैं कि रासायनिक खादों का प्रयोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार की चीज़ें, प्रदूषण सब कुछ हो रहा है
1: जी।
4: जबकि जो हम खाद यूज करते हैं उसमें आपका फास्फेटिक उर्वरक जैसे ले लीजिए DAP डालते हैं, तो पौधा बहुत कम इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो सॉल्युबल नहीं है, जहाँ पे पड़ता है वहीं पे पड़ा रहता है, पौधे की जड़ वहाँ गई तो ले लिया, नहीं तो नहीं लिया। तो उनको अगली फसल के इस्तेमाल में अगर उनका उपयोग करना है तो हम उसके लिए ये जैविक खादों का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे सोसाइटी पे उपलब्ध है, उनको ले जा करके गोबर की खाद में मिला करके उनको भी आप डाल देंगे तो वो पौधों को उपयोग में आता है, उस पर भी छूट पे है वो
1: जी।
4: इसी तरीके से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट पे है, जिससे खेतों में आपकी बेसिकली जिंक की कमी हो रही है, सल्फर की कमी हो रही है, तो भी छूट पे देने की व्यवस्था 50% का है। NFSM की बात आई थी जो साफसली की हो रही है, गन्ने के साथ अगर आप दलहन और तिलहन की खेती कर रहे हैं तो उसमें भी हम दे रहे हैं 9,000 रुपये हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर का सब्सिडी का है प्राविधान। तो ढेर सारी सुविधाएं विभाग द्वारा दी गई हैं। ज़्यादा किसान को जानकारी के लिए अपना गन्ना समिति जो है, गन्ना परिषद है, कार्यालय है, वहाँ पहुँच जाए, हमारे SDI वहाँ बैठते हैं, हमारा स्टाफ होता है, उनसे पूरी बात जानकारी कर सकते हैं और प्रॉपर लाभ उठा सकते हैं
1: जी। और हम एक बार वापस से चाहेंगे कि एक बार हमारे किसान भाइयों को आप वापस से बताएं कि अगर किसी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए हो तो कहाँ पे उनको रीच करना है।
4: उनको जानने के लिए देखिए, हमारे गन्ना समितियाँ और गन्ना विकास परिषदें, गन्ना समितियाँ जो जिम्मेदार हैं वो मार्केटिंग के लिए, गन्ने के विपणन के लिए, और गन्ना विकास परिषद जो है वो गन्ने की अच्छी पैदावार, उन नस्ल प्रजातियों की उपलब्धता, इन चीज़ों के लिए। तो वहाँ पे जाके अपनी बात रख सकते हैं। अगर चीनी मिल के नज़दीक है तो चीनी मिल में भी गन्ना विभाग का एक शाखा रहती है, उनके चीनी मिल की अपनी व्यवस्था, गन्ना विभाग का ऑफिस वहाँ भी होता है, वहाँ जाके अपनी बात रख सकते हैं, हमारे कार्यालय में आके हम बात रख सकते हैं। नहीं, सबका आजकल सबके पास CUG नंबर है उनका अपना, लेकर के अपने फ़ोन पे भी बात रख सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम के रख सकते हैं। तो पूरी सुविधा, कोई सी दिक्कत नहीं है। और सभी किसान भाई हमारे यहाँ, सबके मोबाइल नंबर हमारे जुड़े हुए हैं, सबको मैसेज करते हैं, मैसेज पे ही तौल होती है, गन्ने की पेमेंट जाता है उसका मैसेज जाता है, कोई विशेष एक्टिविटी होनी तो उसका मैसेज हम लोग करते हैं। तो किसान भाइयों से हमारा विभाग का नेटवर्क बहुत ही अच्छा है और सब लोग जुड़े हुए हैं।
1: चलिए, ये बहुत अच्छी बात आई, लेकिन आपने बीच में चूंकि एक लफ्ज का इस्तेमाल किया था कि जो किसान भाई समितियों के मेंबर होते हैं, तो मान लीजिए कोई किसान भाई है जो समिति का मेंबर नहीं है, तो उसको बनने के लिए मेंबर क्या करना होता है?
4: देखिए, हमारे यहाँ जो विभाग की व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, अगर आप किसान को गन्ना आपूर्ति करना है चीनी मिल को, तो गन्ना समिति का मेंबर बनना अनिवार्य है। यदि गन्ना समिति का मेंबर नहीं बनेगा तो चीनी मिल को गन्ना आपूर्ति नहीं कर सकता। अब सदस्य बनने के लिए क्या क्या जरूरत है? सबसे पहली बात तो यह है कि उसके पास अपने नाम से जमीन हो खेती की, फिर उस पर उसने गन्ना बो रखा हो, साथ में उसका अपना बैंक खाता हो, मोबाइल नंबर तो इसलिए है कि कम्युनिकेशन के लिए है, मैसेज वगैरह भेजने के लिए,
1: बिल्कुल।
4: और 221 रुपये की फीस है, जो वन टाइम है, बार बार नहीं देना, एक बार उसको देना है। उसमें भी उसका 200 रुपया तो शेयर मनी है और 21 रुपये फीस है। जब मेंबर अपनी सदस्यता रद्द कराना चाहेगा किसी बात होता है तो उसका 200 रुपया वापस हो जाएगा।
1: अच्छा,
4: तो मेन डॉक्यूमेंट्स यही है कि 221 रुपये वो खतौनी उसके पास ले आए जमीन की, आपका मोबाइल नंबर जो उसका अपना हो, बैंक खाता उसकी ओरिजिनल पासबुक ले आए ताकि फीडिंग में आसानी हो, कहीं उल्टा ना हो जाए, आधार नंबर का भी है आजकल सबके पास आधार की उपलब्धता, तो भी ये मेजर डॉक्यूमेंट्स है, अपने खेत में गन्ना बोया।
1: तो कहीं ना कहीं ये प्रोसीजर है अगर कोई किसान भाई समिति का मेंबर बनना चाहते हैं।
4: बहुत अच्छा आपने याद दिला दिया, 30 सितंबर लास्ट डेट भी है इस सीजन के लिए। अगर जो 30 सितंबर तक मेंबर बन जाएंगे वही गन्ना आपूर्ति के लिए जो है एलिजिबल होंगे, नहीं तो फिर उनके लिए दिक्कत होगी।
1: बेशक बेशक, तो ये दी गई डेडलाइन से पहले आपको जुड़ना है, मेंबर बनना है, और प्रोसीजर जो है वो हमारे एक्सपर्ट ने आपको बता दिया है। चलिए अगले प्रश्न के लिए चलते हैं अपने को होस्ट इरफान शाह की तरफ।
5: सर आप जानना चाहेंगे, अभी हम लोग योजनाओं के बारे में बातचीत कर रहे थे, अगर इस योजना का कोई किसान भाई लाभ लेना चाहता है तो सर बहुत महत्वपूर्ण होता है दस्तावेज, डॉक्यूमेंट क्या क्या लाएं उससे, जिससे उन किसान भाइयों को लाभ हो सके। क्योंकि सर अगर हम लाभ लेना चाहते हैं कुछ सरकारी योजनाएं, तो उसके लिए हमें क्या क्या कागजात लाना।
4: देखिए कागजात लाने कुछ नहीं, जो हमारे गन्ना समिति के मेंबर हैं उस समय में आपने अपना लगा रखा है, जो साइट है कृषि विभाग की agriculture.com जिस पे हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, सब किसान को सम्मान निधि मिली रहा, सबका रजिस्ट्रेशन है ही है, तो एक उस पे ऑनलाइन जा करके गन्ने से उसको क्या लाभ लेना अपना रजिस्टर दे। अगर वो नहीं कराना चाहे तो गन्ना समिति में जाए, अपने हमारे स्टाफ है, गन्ना पर्यवेक्षक है, SDI है, किसी से बोले कि मुझे ये योजना का लाभ चाहिए तो तुरंत उसको मिलेगा।
5: जी सर, अब हम लोग गन्ने पे ही बात कर रहे हैं तो सर गांव की एक समस्या होती है किसान की कि किसान भाइयों का सट्टा जो होता है गांव में, तो उनका सर ये जब सट्टा नहीं बना होता है तो ये कहां से मतलब कैसे संपर्क करें किसान भाई, क्योंकि गांव के किसान होते हैं बहुत सारी, इनको सर जानकारी नहीं होते होता है, तो ये जानकारी इसका कहां से मतलब इनको जानकारी मिल सकती है कि जिससे इनका सट्टा जो है वो बन भी जाए और जो समय समय पर जो इनका पर्ची है गन्ने का वो इनको मोबाइल पे उपलब्ध हो सके।
4: देखिए आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा
5: जी।
4: देखिए गन्ने की हमारे नए सीजन की शुरुआत होती है गन्ना के सर्वे से
5: जी।
4: ये माना जाता है कि जब पिछला चीनी मिल बंद हुई हमारी
5: जी,
4: चीनी मिल अधिकतर मार्च के लास्ट में बंद होती है, अप्रैल में बंद होती है, कभी कभी मई में चली जाती है
5: जी।
4: मई से हम गन्ना सर्वेक्षण की शुरुआत करते हैं
5: जी।
4: तो मई जून के महीने में हमने खेत खेत गन्ना सर्वे करके अपने आंकड़े जुटा लिए
5: जी।
4: अब बहुत ही सही समय है, इस समय हम 20 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक गांव-गांव उन आंकड़ों का प्रदर्शन कर रहे हैं
5: जी।
4: उसको हम बोलते हैं 63 कालम
5: जी,
4: और वो दो प्रतियों में है
5: जी।
4: एक प्रति में तब उस पूरे पेज पे किसान का पूरा डिटेल लिखा हुआ है, उसका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, गांव क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, बैंक खाता क्या है, आधार नंबर क्या है, उसकी जमीन कितनी फीट है, किस वैरायटी का गन्ना बो रखा है, पौधा है कि पेड़, ये सारी सूचनाएं होती हैं
5: जी।
4: उस समय उसको देख ले, वो सूचनाएं हम सबको दे रहे हैं, चाहे मेंबर हो चाहे मेंबर ना हो वो
5: जी।
4: तो अगर मेंबर नहीं है तो हमारा स्टाफ गांव में जा रहा है इस समय
5: जी,
4: वहां उससे संपर्क करके, वो भी ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था है
5: जी,
4: जो हमारा गन्ने का पोर्टल है SGK का
5: जी,
4: उस पे जाके ऑनलाइन वो आवेदन कर सकता है। लेकिन हम कह रहे हैं अगर किन्हीं कठिनाइयों को जैसे उसे दिक्कत हो रही है तो हमारा स्टाफ गांव-गांव जा रहा है, उससे संपर्क करके अपने डॉक्यूमेंट्स देते हुए वो समिति की सदस्यता ग्रहण कर सकता है
5: जी। सर क्या कोई टोल फ्री नंबर भी है कि जिस पे किसान भाई अपनी समस्या।
4: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल है
5: जी
4: जी जी, 1880-3203।
5: चाहेंगे सर एक बार पुनः सर बता दीजिए हमारे किसान भाइयों को।
4: जी जी जी जी जी जी,
5: तो किसान भाइयों हमारे सर जो है वो टोल फ्री
4: 1800
5: जी
4: 1800-3203
5: जी। आशा करते हैं कि हमारे किसान भाई जो टोल फ्री नंबर सर बताए हैं इससे अपना समाधान जो है किसान से या गन्ना से संबंधित जो भी सवाल है उनके मन में या जो भी योजना है वो इससे लाभ ले सकते हैं। और आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं गन्ना में उर्वरक प्रबंधन, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि अब सर हम एक सवाल और करना चाहेंगे, क्योंकि सर अब तो घड़ी जो है वो इजाज़त दे रही है क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है। सर हम चाहेंगे कि इस समय जो गन्ना लग गया है तो जो बाढ़ग्रस्त एरिया में जो गन्ना है सर, हमारे किसान भाई क्या सावधानी बरतें और गन्ने का वो क्या देखें कि जिससे उनका जो गन्ना है वो गिरे ना और गन्ना उत्पादन जो है वो अच्छा हो।
4: देखिए गन्ने की फसल इस समय जो है वो कई स्टेज में है, कुछ जो शरद काल का गन्ना बोया था उसकी लंबाई तो 6.5-7 फीट तक हो चुकी है, जो बसंत काल में बोए हैं वो भी थोड़ा छोटा हुआ है, रेटून क्रॉप हमारी लगभग वो भी 5-6 फीट के इर्द गिर्द है। तो इस समय मेजर काम तो था जून के लास्ट में मिट्टी चढ़ाने का। एक्चुअली गन्ने की फसल लंबी होती है, वजन होता है, उसमें पत्तियां बहुत होती हैं, लंबाई अधिक होती है, तो गन्ना बहुत जल्दी गिर जाता है
5: जी।
4: इसीलिए सलाह दी जाती है कि जून के अंतिम सप्ताह में या जुलाई के फर्स्ट वीक में मिट्टी जरूर चढ़ा दें
5: जी।
4: गन्ने को इसीलिए सुझाव दिया जाता है कि हमेशा पूरा पश्चिम लाइन में बोएं,
5: जी,
4: गैप रखें 4 फीट का ताकि हवा इधर से उधर आर पार हो जाए।
5: जी।
4: फिर भी वो सब चीजें हैं। अब गन्ने की बधाई का वक्त आ रहा है
5: जी।
4: आप जिनका भाई साहब का गन्ना आपका बड़ा हो रहा है 6.5-7 फीट का 8 फीट का हो रहा है, वो अगस्त महीने में पहली बधाई जरूर कर दें
5: जी।
4: ठीक है
5: जी,
4: पहली बधाई कर देंगे तो गन्ना उनका गिरेगा नहीं, जिससे उनका नुकसान नहीं होगा। गन्ना जब गिर जाता है तो उसमें बड़े नुकसान हो जाते हैं, चूहे वगैरह लग जाते हैं, तो उनको सप्लाई में भी दिक्कत होती है, वजन भी घटता है, कई दिक्कतें पैदा होती हैं। इसलिए गन्ने की बधाई का अब अगस्त में पहली बधाई कर दें और उसके बाद सितंबर के आखिर में वो दूसरी बधाई कर दें ताकि गन्ना उनका पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे और सीधा रहे।
5: जी सर, अभी हम बधाई की बात कर रहे हैं तो सर हम अगर बधाई कर रहे हैं तो उस समय हमें क्या क्या सावधानी बरतना है सर?
4: बधाई में सावधानी ये बरतना है कि जो हमारी हरी पत्तियां ऊपर वाली हैं
5: जी,
4: वहां जाके बधाई न कर दें, क्योंकि अगर ऊपर बधाई बहुत कर देंगे तो गन्ने का विकास प्रभावित होगा, गन्ने की बढ़वार प्रभावित होगी
5: जी।
4: तो जहाँ पे पत्तियों की शुरुआत होती है, जहाँ पे हमारा मेन स्टेम वाला हिस्सा है, वहीं से शुरुआत करें बधाई की
5: जी।
1: जी सुनील कुमार जी, मेरा आपसे एक और प्रश्न है, चूंकि हम सभी को पता है कि गन्ने की फसल में अभी आपने स्टार्टिंग में ही बताया था कि काफी लागत आ जाती है, और कहीं ना कहीं जब हम फसल की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, बहुत सारे यंत्र होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी किसान भाई के पास इतना पैसा नहीं है, आर्थिक जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है, और आप जो है वो खरीद नहीं सकते हैं सब कुछ, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? क्या आपके विभाग द्वारा कोई व्यवस्था की जाती है? कैसे किसान भाई उन यंत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बहुत महंगे हैं?
4: बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम लोग कुछ दिन पहले शुरुआत किए हैं। जो भी हमारी गन्ना समितियां हैं वहां पे हमने कुछ समितियों में, जैसे गोंडा की अगर हम बात करते हैं तो 3 समितियों में हमारे ट्रैक्टर भी हैं, गोंडा, नवाबगंज और मनकापुर। बाकी हमारे जिले में 6 समितियां हैं। उन सब पे जो मेजर कृषि यंत्र हैं, महंगे हैं, जिनको किसान परचेज नहीं कर सकता, उनको हम मामूली किराए पे यंत्र हमारे, देखिए वहां पे एमबी प्लाऊ है जो गहरी जुताई करता है
1: जी,
4: करीब करीब 1 फीट की मल्चर है जो हमारा जब गन्ना कटता है उसके बाद जो पत्तियां सत्तियां होती है उनको काटने के लिए बड़ा अच्छा उसका उपयोग होता है। RMD रेटून मैनेजमेंट डिवाइस, गन्ने को जो ठूंठ है उसको छांटने के लिए पावर स्प्रेयर है, गन्ने की फसल में दवाओं के स्प्रे करने के लिए ट्रैक्टर संचालित है वो। और उसके अलावा अभी आपका रोटावेटर भी आ गया है, क्योंकि किसान अधिकतर रोटावेटर का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी किराए पे ले सकते हैं। तो यंत्र कई प्रकार के हैं, उनका प्रयोग वो लोग कर सकते हैं किराए पे, और बहुत ही साधारण किराया, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, 45-46 रुपये इस टाइप के किराए हैं। तो जाके वहाँ सोसाइटी से अपना एप्लीकेशन दे करके और ले सकते हैं, और उनको बहुत ही लाभ होगा। अभी हमारा जो एमबी प्लाऊ है उसका किसानों के बीच में इतनी लोकप्रियता है कि पूछिए ना, कई कई बार तो बेटिंग टाइम बढ़ जाता है।
1: अच्छा,
4: हाँ, बहुत ज्यादा उपयोग उसको लोग कर रहे हैं, और 1 फीट गाड़ी जुताई करता है, बहुत ही अच्छा है।
1: देखिए, जो मुझे एक बहुत बड़ा प्रश्न लगा था कि भाई हाँ, इतने महंगे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, कृषि यंत्र आते हैं, और सच तो ये है कि हर किसान भाई उसको खरीद नहीं सकता है। तो आपने बताया इतनी लाजवाब पहल है कि आपके विभाग के जरिए वो कृषि यंत्र जो है बहुत ही मामूली, मतलब ना के बराबर पैसा लेकर के उन यंत्रों को दिया जाता है ताकि किसान भाई अपनी खेती को और भी उन्नत कर सके। ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, चूंकि ये सारी बातें हो गई है और आपने हमारे सारे प्रश्नों का बहुत अच्छे से उत्तर दिया, लेकिन एक प्रश्न जो सबसे लास्ट में है और मुझे लगता है सबसे अहम है, भाई हमने बुआई कर दी, समय देख लिया, लगा दिया, बीमारी से बचा लिया, सब कुछ कर दिया, एट द एंड बात आती है कि अब इसको लिया तो खारी जाता है ऑफ कोर्स चीनी मिल में, तो इसकी मार्केटिंग की बात बहुत अहम है। मार्केटिंग को लेकर के जब कोई किसान भाई मार्केटिंग करने जा रहा है तो उस दौरान किसान भाइयों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, हम आपसे जानना चाहेंगे।
4: देखिए, गन्ने की आपूर्ति तो मतलब चीनी मिल एक मेजर वो है, बाकी गन्ना किसान बहुत से ऐसे हैं जो गुड़ बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं
1: जी,
4: कुछ लोग बहुत छोटी खेती कर रहे हैं तो अपना जूस में ही बेच दे रहे हैं, तो मेजर, लेकिन जो मेजर उसका उपयोग है वो चीनी मिल में चीनी बनाने में किया जाता है
1: जी।
4: चूंकि प्रदेश में 120 चीनी मिलें चल रही हैं, ढेर सारे किसान हैं, एक व्यवस्था बनाई गई कि हर चीनी मिल का एक आरक्षित क्षेत्र है
1: जी।
4: तो हमारे यहाँ कि अगर कोई किसान ये स्वतंत्र नहीं कि किसी भी चीनी मिल में जाके गन्ना बेच ले, उसकी गन्ना अपनी समिति है, उस समिति का मेंबर बनना उसके लिए अनिवार्य है। हर समिति के निर्धारित एरिया है, वहाँ किसान भाई वो जो डॉक्यूमेंट्स पहले पूर्व बताया, अगर वो गन्ना अपने खेत में बोया है उन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से जाके गन्ना समिति के मेंबर बन जाएं। मेंबर बनने की फीस वन टाइम है, हर साल उनको नहीं देना है, और जब मेंबर बन जाएंगे तो वो गन्ना सप्लाई के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जब हम चीनी मिल की शुरुआत होगी, कैलेंडरिंग होगी, पर्चियां जारी होंगी, तो उन किसान भाइयों को भी गन्ना आपूर्ति करने के लिए मोबाइल पे मैसेज जाएगा, उनका सट्टा बनेगा, उनका कैलेंडरिंग होगा, सारी चीजें होंगी
1: जी। तो यानी आपने कहा कि वही बात लौट करके वापस आई कि गन्ना समिति का मेंबर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपने 6 समितियों की बात की गोंडा में, और क्या ये इस हिसाब से कि जिस एरिया में जो नियर बाई पास में समिति होगी वहीं आप जा सकते हैं, या आप कोई अलग समिति का भी मेंबरशिप ले सकते हैं?
4: हर समितियों के अपने निर्धारित गांव हैं, ये नहीं कि कोई किसान गोंडा का हो जाके नवाबगंज में मेंबर बनेगा, ऐसा नहीं है। जो गोंडा समिति है इसके गांव निर्धारित हैं, ये गांव गोंडा समिति में शामिल हैं, ये गांव कर्नलगंज समिति में शामिल हैं, ये गांव नवाबगंज समिति में शामिल हैं। तो जो गांव जिस समिति में शामिल होगा वहीं से मेंबर बनेंगे वो।
1: क्या बात है, तो ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और बहुत ही ऑफकोर्स शब्दों का जो हमने चयन किया वो बहुत ही सहज रखा ताकि हमारे किसान भाइयों तक बात पहुंच जाए। और एकदम लास्ट में एंड में आपसे मैं ये कहना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर कितना मुनाफा है इस गन्ने की खेती में, चूंकि किसान भाई मुनाफे के लिए ही करते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा एक अंदाजे के तौर पे।
4: देखिए, गन्ने की जो जिस विधि विधान से हम लोग बात कर रहे हैं, अगर किसान खेती कर रहा है तो करीब करीब उसकी पर हेक्टेयर यील्ड जो है वो 1,000 कुंटल हम मान लेते हैं पर हेक्टेयर पैदावार हो रही है
1: जी।
4: अब 1,000 कुंटल की अगर हम बात करते हैं पैदावार की, तो करीब 375 रुपया रेट सरकार ने निर्धारित कर रखा है अर्ली वैरायटी का, और 365 रुपये निर्धारित है आपका सामान्य का। तो अगर मान लीजिए 375,000 का गन्ना पैदा हो रहा है एक हेक्टेयर में, और उसकी लागत मैक्सिमम जो आती है वो करीब करीब 1.5 लाख तक आती है, तो 1.5 से 1.75 लाख उसको एक हेक्टेयर में आमदनी हो जाती है साल में।
1: क्या बात है, तो एक साल में 1.5 से 1.75 लाख में आपको कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट, एक आपने एक जनरल तौर पे एक आइडिया दिया
4: जी, है। जी, जी, जी, जी, जी।
1: बाकी जाहिर सी बात है वो
4: किसान के अपने ऊपर है किस ढंग से खेती कर रहा है, किस ढंग से उसकी व्यवस्थाएं हैं।
1: हाँ बिल्कुल,
4: क्योंकि मेजर कंपोनेंट लेबर का है। अब लेबर मैनेजमेंट कैसे करता है, अपने आप काम कर रहा है या लेबर के माध्यम से कर रहा है, कैसे कर रहा है, उस पर मेन डिपेंड करता है।
1: बेशक बेशक, तो ये तो आपने हमारे सारे सवालों का बखूबी उत्तर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे चैट बॉक्स पे कई सारे लिसनर्स हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं इस बात से, और ये भी कहा गया है कि हाँ गन्ना के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और साथ ही साथ हमारे कई लिसनर्स जो थे वो इस बात से खुश हैं कि भाई हर बार जो हम इस तरह का शो लेकर के आते हैं और हर अलग अलग विषय में लेकर के आते हैं, तो हमारे किसान भाइयों को जो भी उस फसल से या उस विषय से संबंधित समस्या होती है उसके समाधान के लिए वो हमारे एक्सपर्ट्स से डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम वापस एक बार बता दें कि आज का जो हमारा विषय था वो था गन्ना में उर्वरक प्रबंधन, और बतौर एक्सपर्ट मौजूद रहे श्री सुनील कुमार सिंह, जिला गन्ना अधिकारी गोंडा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त दिया।
4: थैंक यू।
1: और इसके अलावा हम इरफान शाह का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने आज हमारे को होस्ट की भूमिका बखूबी निभाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सो आइए दोस्तों, अब लेते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ रुख, और अगला प्रोग्राम है आपका आरजे बीना के साथ गोंडा मैसेज मसाला। फिलहाल आज का प्रोग्राम कैसा लगा हमको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जाते जाते बतौर तोहफा ये गाना आप सभी लोगों के लिए पेश खिदमत करते हैं। सुनते रहिए गोंडा वाला एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
6: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
7: मतलब
6: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
7: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
8: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
9: ओ छोटे, आजकल तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है?
10: अली बली वही तो पता नहीं चला कि चलते चलते कितनी दूर चली गई।
9: ओ क्या?
10: अली वही पढ़ाई।
11: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो की है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
4: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
4: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी करें 7234-020-202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
6: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट, तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9018-935-94 और 8072-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
7: भारतीय डाक विभाग लाया है पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र योजना। इस योजना के तहत समस्त पेंशन भोगी अब घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए डाक विभाग के मोबाइल ऐप पोस्ट इन्फो के माध्यम से या वेबसाइट IPPBonline.com पर रिक्वेस्ट डालनी होगी और डाकिया आपके घर जाकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना कर देगा। साथ ही 10 वर्ष से कम बच्चियों का सुकन्या समृद्धि खाता डाकघर में अवश्य खुलवाए एवं बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित करे। भारत सरकार ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान प्रमाण पत्र योजना का शुभारंभ किया था, जिसके तहत महिलाएं अधिकतम ब्याज के साथ बचत कर सकती हैं। ये सूचना अधीक्षक डाकघर गोंडा मंडल द्वारा जनहित में जारी।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

घन घन गरजे बदरिया, टप टप बरसे पानी, भीज गई गलियन सारी, भीज गई ई जवानी। माटी महकी अंगनवा मा सोंधी सोंधी खुशबू, पेड़न के डार हिले लागी, नाचे मन की धू धू तू। कच्ची डगरिया चमक उठी, पोखर भरिगवा पानी, कागज की नाव चलावत हैं गांव के छोट छोट प्राणी। छप्पर ऊपर बूंदन बाजे, छप्पर ऊपर बूंदन बाजे, जैसे बाजे सितार, दूर कहीं से कजरी गूंजे, मनवा होई बेकरार। अम्मा कहें भीतर आवा, भींज गवा सारा तनवा, बचपन हंस के कहीं देत हैं अम्मा बरसे दाना। भादो की ई कारी बदरी ले आई सुख संदेश, सूखल मनवा हरियर होएगा, मिट गवा सब कलेश। बरखा तू बस पानी नाही, तू माटी का प्यार, तू गांव के मीठी बोली, तू सावन के श्रृंगार। जब जब बरसे बदरिया याद आवे गांव के द्वार, भींज भींज के कहत मनवा, फिर आवा रे बरखा बारंबार, फिर आवा रे बरखा बारंबार। तब भाई सबके स्वागत है, राम राम शुभ संध्या। और ये भादो के जोन बारिश है आज के, ये जनवावत है कि भाई भादो मा भी सावन के जोन गरज रही वो अभी बाकी है। सबके भाई स्वागत है, जे जहाँ जहाँ हो भाई सब जने उठ जाओ और शुरू ही जाए आज के शाम के बात बतकही। और आप सबके भोजपुरिया उधी शाम माँ स्वागत है, राम राम सभी के। गोंडा के आसपास के गांव कस्बा शहर जोन जोन लोग जहाँ जहाँ से सुनत हैं और पूरे देश से जहाँ जहाँ सुनत हैं, सबका आपके आरजे बीना के तरफ से प्यार और दुलार हैं। तो आप सबका बताइए कि आपके पसंदीदा कार्यक्रम गोंडा मैसेज मसाला शुरू हो चुका है और आज कुछ आपके शहर के, आपके गोंडा के और आपके आसपास के क्षेत्र से जुड़ा कवि लोगन के बात हुई, उनसे जुड़ी कहानी बताई और कहा थे कि सावन के हरियर चूनर के बाद जब भादो आपन रंग लेके आवत है तो गांव के गली खेत के मोड़ पोखरी में पानी पेड़न के पत्ता और माटी के खुशबू सब कुछ जैसे नया कहानी सुनावे लागत है। भादो आयो बदरा आयो माटी महकी मन हर्ष आयो, ऐसे चीख चीख के कहत है। भादो खाली कैलेंडर में एगो महीना नहीं है, भादो तो गांव के वो बोली के याद है जमा दादी माँ का याद है। बरखा माँ भीजत बचपन माँ वो छोटी सी नाव का याद है। खेत माँ ललहात धान माँ जोन हल्की खुशबू है ओकर याद है। और कभू कभू खिड़की के बाहर गिरत पानी देख के बस माँ बस हो जात है भादो। भादो के बतकही करे के जब शुरू होती बात तो कबो मौसम के बात होती, कबो खेती किसानी के बात होती, तो कबो त्योहारन के बात होती, कजरी और लोक गीतन के बात होती और कबो पुरानी याद के बात होती। पर आप जरा सोचिए कि ये भादो का है। जी हाँ, ये बरखा के समय आए वाला एगो महीना है जो उनकी भारतीय परंपरा से जुड़ा है। सावन माँ जहाँ हरियाली और झूला झूले के रंग देखे का मिलत हैं, वहीं भादो माँ बरखा अपन गंभीर रूप धर लिया था जैसे उनकी आज। कहूँ घनघोर बादल तो कहूँ रिमझिम फुहार, तो कहूँ खेत माँ पानी और कहूँ कच्ची सड़क पर कीचड़। गांव माँ भादो के मौसम अलगे मजा माँ दिखावत है। सुबह उठी तो खिड़की खोली, बाहर काला काला बादल रही, पेड़ के डार हिलत, चिड़ई चुरंग बोलत और माटी के खुशबू एगो अलगे खुशबू देत। वो पहली बरसात वाली खुशबू तो बिल्कुल नहीं होत। भादो माँ पूरे के पूरे गांव के शहर के सब जगह के रंगत बदली रहती जैसन की आज बदली है।
अब खेतन के बात करी तो आप सबका पता है खेत में धान अब तनी बड़ा हो चुका है, सबके खेते में पानी फिर जरूरत रही और आज सबके खेत में पानी मिल चुका है। लेकिन आज हम गांव और शहर दोनों का मिलाए के कहा जाए थे कि हमारे सबके गांव में जब भादो के महीना आवत रहा तब कोहड़ा यानी कि कद्दू के फूल लग जाते रहा घरन में सबके, और उकर पकौड़ी बनाए के जैसे कि बेसन और चावल के आटा मिलाए के और वहाँ डुबोई डुबोई के पकौड़ी बनाई जाती रही, इतनी कुरकुरी होती रही क्योंकि खाए के बाद माँ खाली आहा हा एक सोंधा सोंधा स्वाद मुँह में रह जात रहा। तो आज भी वो पकौड़ी खाए के मन है तो चला बनावा जाए और भादो के कुछ त्यौहार के भी बात कर ली जाए। जी हाँ, भादो के महीना में कृष्ण जन्माष्टमी होता है। भादो के महीना में भाई जन्माष्टमी के संगे आपके पसंदीदा भगवान यानी कि आपके गणेश भगवान के भी जन्म होते हैं। तो ऐसन हल्का फुल्का महीना ना है भादो। भादो बहुत खूबसूरत महीना है। कान्हा जरा बांसुरी बजावा, भादो के शाम सुहानी बनावा, कान्हा तनी बांसुरी बजावा। तो आगे बात हुई और कान्हा के बांसुरी तो बजते हैं और सावन से जुड़ा अगर कोई गाना ना सुना जाए अपने अवधि में तब मजा का है। तो चलिए सुनी और बताएं ये प्यारा सा गीत आप सबन का कैसन लाग।

0: करी।
1: अब अपन पसंद के गाना सुन सुन के इतनी खुश कम हुई काहे कि अभी होने वाली है बात आपके पसंदीदा कवि लोगन के जोन यूपी से आप सबन के फरमाइश के चीजन का लिखे हैं। ओ इजी ही टाइम से सबके भोजपुरी फरमाइश से शुरू हो गए लेकिन पहले हाल चावल तो हाल और चावल बताइए अपन जुगल जी चुप संध्या का हाल है रुआ बानी और धर्मेंद्र का हाल है शुभ संध्या हमार नैहर के ओरिया उठाला बदरा आहा लेकिन अभी तो फरमाइश ना बजी चाहे नैहर के उठे और बदरा उठावे चाहे जिन उठावे। अरविंद जी स्वागत है शुभ संध्या महेश शर्मा बस्ती वाले राम राम जी रवा के का हाल है अनुष्का का हाल है रवा कैसन बानी हम तो बिल्कुल ठीक बानी और आज कैसे सोए के उठ के हमार रास्ता भुलाए के आए गई नी तनी बताएं ता सबका बताई दी कि आप सबका अगर खास कवि के नाम बताई तो बहुत ऐसा खास कवि जैसे कबीर दास के बात कह ली और आपके गोस्वामी तुलसीदास के बात कह ली तो और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बात कह ली ये सब आपके यूपी के प्रसिद्ध कवि हैं जिनकर लेखनी पढ़े के बाद माँ आप सबके जो जियरा है वो हल्काए जात है। तो सबसे पहले आजा हम जो कवि के बात करे वाली हैं वो हैं मलिक मोहम्मद जायसी और इनके कुछ खास रचना के बारे में भी बात हुई तो सबसे पहले जानी है कि इनके जो जीवन काल रहा वो कैसन रहा। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली अमेठी क्षेत्र में जायस नामक के जो नगर रहा हुआ है जन्म स्थान से वह जायस ले लीन और अपने साथ मलिक मोहम्मद जायसी लगाए दीन। सब कवि लोग अपन उपनाम रखते थे वैसे उन्हों रख दीन और उनकर पिता का नाम रहा मलिक राजे अशरफ और वह बहुत ही प्रतिष्ठित और धार्मिक व्यक्ति रहे। जायसी बहुत कम उम्र में अपने माता पिता का खोए दीन। बचपन में चेचक बीमारी के कारण उनकर एक आँख और एक कान खराब हो गया रहा वह शारीरिक रूप से कुरूप रहे लेकिन ईश्वर उन्हें असाधारण प्रतिभा दीन और उदार हृदय दीन। वैराग्य स्वभाव उनके जीवन का एगो ऐसन मोड़ रहा जो उनके जिंदगी बदल दीस। अगर जीवन में उनके विवाह के बात करी तो उनके विवाह भवा उनके संतान भई परंतु एक दुर्घटना में उनके जो पुत्र रहे दुई तीन जो पुत्र रहे उनकर मृत्यु हो गए और ई उनके ऊपर वज्रपात के निहायत भय उनके पूरा मोह भंग हो गए और वह गृहस्थ जीवन त्याग दीन और फकीर बन गए यहाँ वहाँ घूमे लागिन मतलब सब दुख देख के ही। देखा एक बात बिल्कुल सही बताई आपका कि इंसान जीवन में वैराग्य या सन्यासीपन तबे लावत है जब वो केहू के अपार दुख देख लिया था। भगवान बुद्ध के बारे में भी आप पढ़े हुई हैं कि उनके माता पिता उन्हें ई डर से एकदम पैक किया रहे कि कहूँ माँ लड़का सन्यासी न बन जाए लेकिन जब वह 16 साल के उम्र में आए 16 नहीं 26 साल के उम्र में आए तो नगर दर्शन के लिए निकली तो वहाँ वह तीन मनई का देखी एक ऐसन मनई जो उनकी बुढ़ापे से दुखी रहा दूसर मनई जो उनकी मतलब बीमारी से दुखी रहा तीसर एक मृत आदमी तीनन का देख के उनके जीवन में ऐसा वैराग्य भवा कि मतलब अगर भगवान सब जगह है तो वे दुख काहे दिए थे कई सवाल उनके मन में ऐसा आया और जो ने वजह से वे साधु करो धारण कर लीन। तो ऐसा नहीं बात है कि कोई इंसान इच्छा से बना चाहता है वह आसपास के जो उनका था ना कि दुनिया का देख के विमुख हो जाते हैं। तो चलिए मलिक मोहम्मद जायसी के कुछ रचना भी पढ़ दी आपके सामने जेका सुने के बाद माँ आपके भी जेरा कही कि वाह का लिखत रहे उनके लेखनी लेखनी नहीं रही उनके रचना सबके जेरा पर राज करे वाली रचना रही।

विषय रचना के बात करी तो बहुत ऐसन रचना ही जो ना आप सब भी सुने होबो, लेकिन शायद आपका ही ना पता हुई कि उनके रचना है, या आप जानत भी हो वो कि उनके रचना बड़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी उनके कुछ खास रचना ही जैसे कि पद्मावत उनके सबसे लोकप्रिय और सर्वश्रेष्ठ रचना है, अखरावट एमा वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का आधार बनाए के दार्शनिक और आध्यात्मिक बात लिखी गई, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्रलेखा, ये सब इनके जो मुख्य लेखनी रही। वह ज्यादातर अपने लेखनी में ठेठ अवधि का प्रयोग करते रहे। तो उनके कुछ रचना के जो कुछ कलाम है अपने आवाज में आपके सामने पढ़ा चाहिए थे, कोशिश करा चाहिए थे, कहे कि हम तो उतनी लायक नहीं हैं कि उनके रचना उतने अदब से पढ़ पाई, लेकिन जो हमें एगो कहते ना कि आवाज़ मिली है तो वो आधार पे कुछ कहा चाहिए था, जो ने का सुन के आप सब बताई हैं कि कैसन है। वैसे आप सब बताई हैं कि आपका मलिक मोहम्मद जायसी के रचना कैसन लाग, और आपके पसंदीदा रचना उनके कौन वाली है। कहा थे कि गगन होता नहीं मति होती, चंद नहीं सूर, ऐसे ही अंधकूप मा रचा मोहम्मद नूर, साई केरा नाव हिया पूर कया भरी, मोहम्मद रहा न ठाओ दूसर कोई ना समाई, अब आद हुते जो आद गुसाई, जई जब खेल रचा दुनियाई, जस खेलस तस जाई न कहा, चौदस भुवन पूरी सब रहा, एक अकेल न दूसर जाती, उपजे सहस अठारह बाती, जो वै आनी ज्योति निर्माई, दीनहस ज्ञान समुझे मोहि भई, औ उन आन बार मुख खेला, भई मुख जीव बोल में बेला, वे सब किछु करत किछु नाही, जैसे चले मेघ पर छाही, परगट गुपुत विचार सुबूझा, सो तसी दूसर ना सूझा, कहो सो ज्ञान कहरा सब आखर महलेख, पंडित पढ़ अखरावटी टूटा जो रही देख। तो ऐसे कह के उनके बड़ी अच्छी रचना रही जिसका नाम है आप सबके सामने अखरावट। अब एक अगर हम आप सबका व्याख्या करे शुरू करी तो हाँ जी कविता तो पूरी ना हुई। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में जितना हम तारीफ करी वो कमे हुई। आप सबके जहन में अगर उनसे जुड़ी कोई बात है जो ना आप जानत है हमें नहीं पता तो आप जरूर हमें बताई हैं, ताहे कि ऐसा महान आदमी के बारे में कुछ जानब और उनके बारे में सबसे चर्चा कर बड़ी बात होती। कहा थे कि वह साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण प्रेम शर्फी यानी कि उन्हें सूफी धारा के सबसे प्रसिद्ध और महान कवि माना जाता रहा। उनके जीवन में ऐसन ऐसन घटना भय जो उनकी उन्हें एकदम तोड़ के रख दी। सात पुत्रन के एक साथ उनके मौत हो गई रही, जोने का सुने के बाद में कोई भी इंसान टूट सकत है, लेकिन वो टूटा हुआ इंसान इतनी लेखनी लेख के चला गवा जेका हम सब आज पढ़ी थे। कहूं दूर नहीं, बस आपके शहर से कुछ किलोमीटर दूर अमेठी के रहे वाले रहे। जायसी कहते हैं कि जीवन के अंतिम दिन में अमेठी के जंगल, एको जंगल है अमेठी के लगे जेका कहते मंगरावन, हुआ साधना करे चला गए।
उनके मृत्यु से जुड़ी कहानी भी बेहद चमत्कारी मानी जाती। कहा थे कि जायसी अपने योग बल के साधना से कबो कभार शेर का रूप धारण कर लीन करते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। एक दिन जब वह जंगल मां कुटिया के भीतर रहिन, तब बाहर एक शिकारी गुजरत रहा। शिकारी जंगल मां कोनो शेर के आवाज सुन के हुआं पहुंच गवा। उ जानवर का धोखे से उ दिशा मां गोली चलाए दिस। जब शिकारी के पास शिकारी उकरे पास गवा तो हुआ कोनो बाघ नहीं रहा, बल्कि सूफी संत मोहम्मद जायसी मृत पड़ा रहे। इस प्रकार सब कहते हैं कि सन 1542 मां उनकर जोन है प्राणांत हुई गवा। चित्तौड़ के राजा रत्नसेन, रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी का ऐतिहासिक काल्पनिक कहानी का वह अवधि भाषा में पिरोधिन, जेका वह जाए के देखिन नहीं जाने नहीं ओका भी वह अवधि भाषा का पिरोधिन। सूफी विचारधारा के तहत वह प्रेम कहानी के राजा रत्नसेन का साधक यानी कि आत्मा मानत रहे और रानी पद्मावती का ईश्वर कि रत्नसेन जोन है वह साधक हैं, वह आत्मा हैं और वह ईश्वर यानी कि पद्मावती के प्रतीक मान के लौकिक प्रेम करत हैं, जो उनकी अलौकिक आध्यात्मिक प्रेम का संदेश दिया था। तो आज मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में जान के ना आप सबका भी सुकून मिलत हुई कि हम सब कितना भाग्यशाली हैं कि ऐसी धरती पर जन्म है जहाँ इतने बड़े बड़े कवि भाई। तो चलिए एगो प्यारा सा गीत सुन लीन जाए और ये गीत हमरे और आपके मलिक मोहम्मद जायसी का समर्पित।

तोहरा सैया जी के दिलवा टूट जाए, और अब बारी है जूही के फरमाइश के गाना सुने के। बंधन बंधन बड़ा अच्छा गाना है, प्यार के बंधन।

गाना के पहले आप सभी सुने नहीं अरविंद के फरमाइश के राजा जी के दिलवा टूट जाए, और अभी आप सुना थे जूही के फरमाइश के गाना बंधन बंधन, और अब आप सुनिए एक बाद गाना धर्मेंद्र मोहन जी के, जो उनकी आप सब एक बार सुन चुका है। हाँ, दूसरी फरमाइश इनकर ना प्ले हो पाई और अगला गाना हुई अनुष्का के फरमाइश के। तब तक के लिए सुनत रहिए और मजा करिए अवधी गाना के संगे।

प्यारा सा गाना सुने के बारी है यही कहीं जियरा हमार श्रीदेवी के फरमाइश के पर ये प्यारा गाना जो उनकी पुराना फिल्म के है लेकिन दिलवा आप सबके आज भी लुट जाएगी।

निब्बर जी के फरमाइश के अब गाना बजे के बारी आ चुकी है। निब्बर जी सुना चाहत है गाना, बड़ा ही प्यारा आप सबके पसंद वाला गाना। जी हाँ, मालिनी अवस्थी के सैया मिले लड़कैया मैं का करूं। चलिए सुना जाए ये प्यारा सा गाना मालिनी अवस्थी के आवाज़ में। और अगर आपका पसंद आए तो फिर आप भी अपना जो जेरा है उका चैटू में ज़रूर भेज दिए।

शुभ संध्या सबलू जी, शुभ संध्या राहुल, शुभ संध्या जुगल, शुभ संध्या नागेश्वर, शुभ संध्या सभन के। और भाई सबलू जी का हाल है भाई, एकदम से गायब। और धर्मेंद्र जी परेशान ना होइए, आखिरी में आपके गाना जरूर बजेगा।

और ब्याह के बाद गौना भी हो गया, लेकिन लोकगीतों की एक खासियत है, लोकगीत वही कहते हैं जो आम आदमी सोचता है, जो भोले आदमी सोचते हैं।

अरे संयम तो चलिए आप सबन के लिए अगला गाना बजावे के बारी है। और अगला गाना भी बड़ा गजब के गाना है, जेका सुन के आप सबके जेरा कही कि आहा का बात है, कौन गाना आज सुनने का मिले वाला है। तो बिना देरी के आप सबके फरमाइश के गाना नागेश्वर धाकड़ के गाना सुनने के बारी है। नागेश्वर धाकड़ सुना चाहत हैं ई गाना, यानी कि लाली पाप लागे लू आहा का बात है। तो बड़ा पुराना गाना नहीं याद नहीं।

भाई इंस्टा पे भौजी छा गई ये गाना सुन के, तो भाई हमें बड़ी हंसी लगा थी कि गाना तो हम ना ही सुने ना पहले, और चला अगला गाना सुने के बारी है। आराध्या के आराध्या सुना चाहती गाना, हम ता तोरा खुशी खातिर आपर जिंदगी जरौनी, आ हा का बात है, सुन के बताएं कैसन है।

अगला गाना पप्पू के फरमाइश के, और पप्पू सुना चाहत हैं मैं इतनी सुंदर हूँ का करूँ और बिहार वाला डांस। भाई ये गाना पवन सिंह की आवाज़ में है, सुन के बताएं कैसन है।

बाद आपसे आरजे बिना ले हैं इजाजत। ये गाना सुनने के फरमाइश है हमरे श्रोता रेखा के, जिनकी हमें सबका सुनत है अयोध्या से। और एक बाद अंतिम फरमाइश है आप सबके दोस्त अमित के, उड़ जाइबो मैना। एक साथ है आरजे बिना का दिया इजाजत। कल फिर मिली है फिल्मी बात के संग।

सत्यकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए।

ऐसा क्यों होता है जब मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ तो कोई ना कोई ग्लिच आ जाता है? दोस्तों अपने आप माइक कब ऑन हुआ, कब ऑफ हुआ, मुझे पता ही नहीं चला, इतने एक्साइटमेंट में। तो एक बार फिर से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी सुपर महेशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल के साथ में। और जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और डेफिनेटली लगा दीजिए हजारों लाखों करोड़ों चांद। क्यों? क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके, और ये आपकी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल, तो हमेशा हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ही ना दोस्तों। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। आशु मिश्रा जी लखनऊ से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, आवास विकास गोंडा से, रवि धर्मेश त्रिपाठी गोंडा से, अनुष्का श्रावस्ती से, मोहित मालवे नगर गोंडा से, धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, महेंद्र राजस्थान से, सुरेश कुमार जी चौक से, निधि कश्यप गोंडा से, उषा कश्यप, कार्तिक कश्यप, रौनक तिवारी, राजू सीतापुर से, राजेश कुमार सिंचाई विभाग से, शगुन बालपुर से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, निब्बल जी रानी बाजार सोनार गली गोंडा से, सबीहा गोंडा से, निशा पटेल नगर गोंडा से, आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल है आपकी अपनी बारिश वाली, रोमांटिक वाली फरमाइशी की महफिल में। वाओ दोस्तों, इतनी अच्छी बरसात, मतलब अभी तक मैं, मतलब पूरा मॉनसून चला गया, पूरा सावन निकल गया, मैं यही कहते कहते निकल गया कि घर के पास मेरे बारिश होती रहती है, मैं अगर सोचूं कि मैं ऑफिस से निकलूं और बरसात में निकलूं तो वो इम्पॉसिबल सा हो जा रहा था, लेकिन आज वो पॉसिबल हो गया दोस्तों। ऑफिस आते हुए भी मैं बारिश में आई हूँ, और आई एम डैम श्योर कि ऑफिस से जाते वक्त भी मैं बारिश में भी जाऊँगी और बहुत मज़ा आएगा। लेकिन दोस्तों आज ही मैं मम्मी से कहने वाली हूँ कि मम्मी अगर कल ठंडी ऐसे ही बरकरार रहेगी तो प्लीज़ मेरा स्वेटर तो निकाली देना, क्योंकि मुझे बहुत ठंडी लगने लगी है दोस्तों आज ही से, सुबह से ही मुझे तो ऐसा लग रहा है कल से रजाई निकालने की भी जरूरत पड़ जाएगी। आप लोग का क्या हाल है गोंडा वालों, मुझे जरूर बताना, और बस्ती बहराइच वालों, लखनऊ वालों, बाराबंकी वालों, क्या हाल चाल है दोस्तों? हमारे गोंडा का मौसम तो हो रखा है बहुत ही सुहाना, और आपका क्या हाल चाल है, आपके शहर का मौसम कैसा है, मुझे चैट बॉक्स में बताना। फिलहाल एंजॉय करते हैं हमारा पहला गाना, आशु जी को लखनऊ से सुनना है गाना, उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नंगीना। अच्छा जी, सो एंजॉय करते हैं ये नगीना अंगूठी वाला गाना, राम अवतार पिक्चर का, लता मंगेशकर, मोहम्मद अजीज जी की आवाज में, आशु जी की फरमाइश पर। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी लेकिन रियलिटी चेक करवाने वाली बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन, स्टे ट्यून्ड।

में ना गीना हमने एंजॉय किया है राम अवतार पिक्चर का लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज जी की आवाज में। ये गाना आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर जो की है लखनऊ से। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। प्रीति शुक्ला जी बहराइच से आपका स्वागत है, उदालक शर्मा मनकापुर से स्टे ट्यून्ड, राहुल कुमार गौतम गोंडा से स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो, और इसी के साथ में देवी प्रसाद जी ने हमें फ्रीक्वेंसी से ज्वाइन किया है, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। निबर जी आपका भी स्वागत है। इंजॉय करते हैं अगली फरमाइश दोस्तों, इंजॉय करेंगे अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले हमारे लिसनर्स का कहना है, मीन्स आशु जी का कहना है कि लखनऊ में आज शाम से बारिश हो रही है, और इसी के साथ में हमारे लिसनर नागेश्वर धाकर का कहना है कि बाबू राव की बोतली से दो घूंट ले लो ठंडी नहीं लगेगी। अरे आजकल ना बाबू राव अपने दूसरे मित्र के साथ में बिजी है, तो बाबू राव मिलता ही नहीं, और जब बाबू राव नहीं मिलेगा तो उसकी बोतली कहाँ से मुझे मिलेगी नागेश्वर धाकर, इसीलिए तो मैं और प्रताड़ित हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड नो। सो एंजॉय करते हैं अब हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहूंगी कि हवा के साथ बहती जा रही हैं बूंदे, आए हाय हवा के साथ बहती जा रही हैं बूंदे, किसी के आने की आहट बढ़ा रही हैं बूंदे। एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों, जानते हैं किसकी, जुगल किशोर वर्मा जी की एमपी से, और उनको सुनना है गाना तुम मगर साथ देने का वादा करो। सो महेंद्र कपूर जी की आवाज में एंजॉय करते हैं हमारे जुगल किशोर वर्मा मीन्स हमारे जग्गू दादा जी की फरमाइश पर ये बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही प्यारा सा नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

मस्त नगमे लुटाता रहूं। महेंद्र कपूर की आवाज में हमने एंजॉय किया है हमराज का ये गाना हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर जो कि है एमपी से। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ दोस्तों, लेकिन इसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। गीता श्रीवास्तव जी आपका स्वागत है। राम जाने स्टे ट्यून एंड मीनो कश्यप स्टे ट्यून। एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है आवाज विकास गोंडा से रवि की, और रवि को आवाज विकास गोंडा से सुनना है राजस्थानी सुपरहिट सॉन्ग। सो एंजॉय करते हैं ये तड़कता भड़कता सा एनर्जी से भरपूर वाला नगमा रवि की फरमाइश पर। और रवि ने इस गाने को डेडिकेट किया है सभी राजस्थानियों को। स्टे ट्यून।

इश्क तेरा इश्क मैनू सोण न देवे, हमने इंजॉय किया गुरु रंधावा का ये गाना। लेकिन दोस्तों, ये इश्क और नींद में आखिर ये क्या दुश्मनी है? जहाँ इश्क आता है वहाँ नींद गायब हो जाता है, जहाँ नींद रहता है वहाँ इश्क का कोई लेना देना ही नहीं रहता है। तो आखिर ये दुश्मनी कब से है? क्या कलयुग से ही है या फिर जितने युग बीत चुके हैं उन सभी युगों से प्रेम और नींद इन दोनों की दुश्मनी है? मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल एंजॉय करते हैं अगला गाना, लेकिन उसके पहले धर्मेश त्रिपाठी का कहना है कि दिल से स्पेशल थैंक्स टू आरजे सिंपल, मेरी फरमाइश पूरी करने के लिए बहुत शुक्रिया। आपका शो हमेशा की तरह कमाल है और आपका अंदाज सबसे अलग है और आप भी सबसे अलग हैं। थैंक यू सो मच धर्मेश त्रिपाठी जी। इनका कहना है कि मुस्कुराहटों पे उनके जान निसार था, कैसे मैं बताऊं उनसे कितना प्यार था, दिल के जर्रे जर्रे में बसे हुए थे वो, कैसे मैं भुलाऊं वो तो पहला प्यार था। आए हाय, इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है अनुष्का की श्रावस्ती से। अनुष्का को श्रावस्ती से सुनना है गाना, वो फिर की वाली तू कल फिर आना नहीं फिर जाना अपनी जुबान से, क्यों क्योंकि तेरे नैना है जरा बेईमान से, बट आई लव नैनाज नो। इंजॉय करते हैं अनुष्का की फरमाइश पे, ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। और हमारी बहुत ही खूबसूरत सी अनुष्का है बहुत ही खूबसूरत सी जगह श्रावस्ती से। स्टे ट्यून्ड।

वाह, हमने ये AI वर्जन एंजॉय किया है सिर्फ और सिर्फ अनुष्का की फरमाइश पर, जो कि है श्रावस्ती से फिलहाल। बहुत ही कमाल का गाना था, बचपन से बचपन वाला गाना है, भले ही ओल्ड स्कूल वाला नगमा है लेकिन हर एक दिल को खुरेद देता है, क्यों सही कहा ना मैंने। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, अरविंद निखिल आपका स्वागत है, और इसी के साथ में विशाल बेदर्दी, वेरी वेरी गुड इवनिंग इन योर शो। इनका कहना है कि सलाम एंड गुड इवनिंग आरजे सिंपल जी, सलाम विशाल बेदर्दी। वैसे कौन सा वाला सलाम था ये भी मुझे बताना, फिलहाल एंजॉय करते हैं अगला गाना। अगली फरमाइश हमारे पास में है मोहित की मालवीय नगर गोंडा से, और मोहित को मालवीय नगर गोंडा से सुनना है गाना, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी चिल्लाए चाय चाय। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। अब कुछ याद आए चाहे ना याद आए, बोली सूरत याद आए चाहे ना आए, आंखों में मस्ती याद आए चाहे ना याद आए, लेकिन दोस्तों चाय तो बहुत ही तेजी से याद आ रही है, वो भी कड़क अदरक वाली और कड़क पत्ती वाली। स्टे ट्यून्ड एवरीवन एंड लाइट शुगर यू नो।

मोहित की फरमाइश पर जो की है मालवीय नगर गोंडा से भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी चिल्लाए चाय चाय। अब बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश गीत की तरफ और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से। धर्मेंद्र मोहन को आवाज विकास गोंडा से सुनना है गाना बहुत ही अजीब सा बहुत ही अतरंगी सा मुझसे जुदा होकर। इसे इंजॉय करते हैं SP बाल सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश पर जो की है आवाज विकास गोंडा से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो अरविंद एंड जारा खान, स्वागत है आपको आपका।

रंग लाएगा इंतजार, वैसे इंतजार तो रंग लाता ही है। ऐसे ही थोड़ी कहा गया है कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन इंतजार करना सबको नहीं आता, सब्र करना सबको नहीं आता। और ये सबसे मुश्किलात आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए है कि सब्र नाम की चीज़, संतोख नाम का चीज़, ये सारी चीज़ें मेरे अंदर है ही नहीं दोस्तों। मेरा भाई बोलता है कि थोड़ी सी मैच्योर हो जा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मैं इमेच्योर होती जा रही हूँ। लेकिन इस चीज़ पे मैं बहुत गर्व फील करती हूँ दोस्तों। बड़ा किसको होना है, रिस्पॉन्सिबल किसको होना है, सीरियस किसको होना है। जब तक बचपना है तब तक जिंदगी है, और इसी का नाम जिंदगी है। इंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। है तो फरमाइश थी धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से, और अगली फरमाइश हमारे पास में है महेंद्र के राजस्थान से। महेंद्र को राजस्थान से सुनना है गाना वो हसीन दर्द दे दो। सो इंजॉय करते हैं हम साया का ये गाना आशा जी की आवाज में, हमारे महेंद्र की फरमाइश पर जो की है राजस्थान से। इसी के साथ में विजय पाल यादव जी का ललहुआ लखीमपुर खीरी से कहना है कि आज के गाने बहुत मस्त हैं। अच्छा जी, आप भी एकदम बहुत मस्त लगते हैं, और आपकी फरमाइशी गीत तो मुझे और भी ज्यादा मस्त मस्त लगते हैं। फिलहाल एंजॉय कर लेते हैं अगली फरमाइश, मींस महेंद्र की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो नाजिया अंसारी, आपका स्वागत है।

जिसे मैं गले लगा लूँ। एंजॉय किया हम साया का ये बहुत ही अतरंगी सा गाना हमारी आशा जी की बहुत ही यूनिक सी आवाज में। एंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। ये तो फरमाइश हमारे पास में आई थी महेंद्र की राजस्थान से, और महेंद्र का राजस्थान से कहना है कि थैंक यू आरजे सिंपल मैम जी, थैंक यू सो मच महेंद्र, इट मीन्स रियली अ लॉट। और महेंद्र ने अभी एक सफ़ेद कप में बहुत कड़क चाय मुझे भेजी है, उसके लिए भी शुक्रिया, शायद आप ही हैं। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है निधि कश्यप की गोंडा से, और निधि कश्यप को गोंडा से सुनना है गाना जिस पथ पे चला। सो एंजॉय करते हैं यादगार पिक्चर का ये गाना लता जी की आवाज में, बहुत ही खूबसूरत सा सुनहरा नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, ये गाना मुझे बहुत पसंद है निधि जी।

हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सनम निधि कश्यप की फरमाइश पे जो की है गोंडा से, और उन्हीं के साथ में इसकी फरमाइश आई थी उषा कश्यप जी की तरफ से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ दोस्तों। बाय द वे आई लव दिस सॉन्ग, इस गाने को मैंने पहली बार आरजे मनु की आवाज में सुना था दोस्तों, झूठ नहीं बोलूंगी। पहली बार आरजे मनु की आवाज में जब मैंने इस गाने को सुना तो मेरा मन हुआ कि इस गाने को मुझे सुनना चाहिए, और जब मैंने सुना तो ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश, लेकिन इसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, इट्स कुमार फ्रॉम एमपी रीवा, स्टे ट्यून। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है रौनक तिवारी की गोंडा से। रौनक तिवारी को गोंडा से सुनना है गाना। तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, और तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। ऐसा ही होता है दोस्तों, ये दुनिया बहुत जालिम है और ये दिल बहुत बड़ा फरेबी है।

प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। हमने इंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा रौनक तिवारी की फरमाइश पर जो की है गोंडा से। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों देवी प्रसाद जी की गोंडा से, और देवी प्रसाद जी को गोंडा से सुनना है अलका याग्निक की आवाज में गाना मुखड़ा चांद का टुकड़ा। सो एंजॉय करते हैं ये नगमा देवी प्रसाद जी की फरमाइश पर जो की है गोंडा से। Thank you.

बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों राजेश कुमार की सिंचाई विभाग से। राजेश कुमार को सिंचाई विभाग से सुनना है गाना लाखों में हजारों में है मेरा महबूब। सो एंजॉय करेंगे विनोद राठौड़ और हरिहरन की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सनगमा। इसी फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सो दोस्तों एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। मिलते हैं सीधे 9 बजे। जिन लोगों ने पेट पूजा नहीं की है फटाफट से पेट पूजा कर लेना, फिर सीधे फरमाइशी की महफिल में मिलेंगे।

0: तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। सेंसेक्स 1248 अंक गिरकर 73581 पर हुआ बंद। जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स रिले दौड़ और वुशु में रोशिबिना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स्ड स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: श्री मोदी ने कहा कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्निहित होनी चाहिए।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज बात मिशन कर्मयोगी की।
2: मिशन कर्मयोगी की शुरुआत सितंबर 2020 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय मूल्यों पर आधारित और वैश्विक दृष्टिकोण रखने वाली भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करना है। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों की क्षमता और कौशल को मजबूत करना तथा सिविल सेवाओं को अधिक नागरिक केंद्रित बनाना है। इस कार्यक्रम के तहत सिविल सेवाओं को नियम आधारित व्यवस्था से भूमिका आधारित व्यवस्था की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सही व्यक्ति को सही समय पर सही जिम्मेदारी देना है। मिशन कर्मयोगी के तहत iGOT प्लेटफॉर्म पर 1,70,00,000 से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। इस प्लेटफॉर्म पर विभिन्न विषयों, कार्यों और व्यवहार संबंधी क्षमताओं से जुड़े 6,500 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े 200 से अधिक पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को नागरिकों की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील और नागरिक केंद्रित बनाना है।
1: हम मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों का सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए। हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे ट्रेनिंग कोर्स को बेहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहे।
2: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान ने कहा कि मिशन कर्मयोगी की स्थापना विकसित भारत 2047 के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से और और उच्च गुणवत्ता के साथ हासिल करने की दृष्टि से की गई है।
3: विकसित भारत का जो एक आशावादी हमारे लक्ष्य है, उनको समय से प्राप्त करना, गुणवत्ता के साथ प्राप्त करना, और सबसे अहम बात जो हमारे नागरिक हैं उनको गुणवत्ता युक्त सर्विसेज किस तरह से हमारे लोक सेवक प्रदान करें।
2: केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए आईगोट प्लेटफॉर्म पर हर वर्ष निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना जरूरी है। इन पाठ्यक्रमों को उनकी वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर 0 कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% किया गया है। परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क को भी घटाया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने वनस्पति तेल या स्टार्च से बने कृत्रिम पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत पहले से लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों को अपने नामकरण, लेबलिंग या विपणन में पनीर शब्द का उपयोग बंद करना होगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। नई दिल्ली में पुस्तक विश्व संचार हिंदुत्व का लोकार्पण करते हुए उन्होंने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अहम सामाजिक मुद्दों पर किताबें और शोध पर आधारित साहित्य प्रकाशित करने की इसकी परंपरा की प्रशंसा की।
5: A good book opens a window of ideas, history and experience. It invites us to think, not only to think, to question. Not only to question, to understand and sometimes to look at familiar subjects from a new perspective.
0: प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजासुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर भी बल दिया। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है।
6: The character of war,
7: युद्ध की प्रकृति तेजी से बदल रही है और हमें भी खुद को इसके अनुरूप ढालना होगा। इसके लिए हमारी औद्योगिक व्यवस्था, खरीद प्रक्रिया और कार्य प्रणाली में भी तेजी से बदलाव जरूरी है, ताकि हम बदलती युद्ध परिस्थितियों के साथ कदम मिला सकें।
5: With the changing character of war.
0: भारत ने मजबूत व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को पारस्परिक रूप से लाभकारी बनाने के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता व्यक्त की है। वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव नितिन कुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के आर्थिक मंत्रियों की बैठक और आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों के परामर्श में भाग लिया। इस दौरान आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की चल रही समीक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पर निर्वाचन आयोग के कामकाज और विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया को लेकर लगाए गए आरोपों के लिए आलोचना की। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम निर्वाचन आयोग को किसी भी समय जब वो उचित समझे SIR आयोजित करने का स्पष्ट अधिकार देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। एक रिपोर्ट।
8: गहरे डिप्रेशन ने कोरापुट, गजपति, मलकनगिरी, गंजाम, नवरंगपुर और रायगढ़ जिलों को प्रभावित किया है, जिससे 37 ब्लॉक, 127 ग्राम पंचायतें और 273 ग्राम प्रभावित हुए हैं। 20 वाड़े वाले 5 शहरी इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने बताया है कि 8,082 लोगों को जोखिम वाले इलाकों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। सरकार ने 2400 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम चालू कर दिए हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स NDRF और फायर सर्विस के टीमों को तैनात किया गया है और राहत सामग्री का इंतजाम किया गया है। मौसम विभाग ने कल व परसों भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे और तेलंगाना में भी तेज बारिश की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
9: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1,248 अंक लुढ़ककर 73,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 384 अंक फिसलकर 23,063 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: आर्थिक विशेषज्ञ उद्यन रे ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने सहित कई कारणों से शेयर बाजार में गिरावट आई है।
10: आज स्टॉक मार्केट में जो हमने गिरावट देखा है, उसके कुछ प्रमुख कारण ऐसे हैं। सबसे पहले जो कच्चे तेल के दाम फिर बढ़े, दूसरा है बॉन्ड्स की जो यील्ड्स हैं उसमें बढ़ोतरी की वजह से एक नर्वसनेस आई। पर सबसे महत्वपूर्ण जो घटना आज हुई है वो IRDA जो रेगुलेटरी बॉडी है बीमा क्षेत्र में, उन्होंने एक डिस्कशन पेपर निकाला है जिसमें वितरण में जो कमीशन होते हैं उसमें कटौती के बारे में बात की है।
0: और अब जापान एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
11: एथलेटिक्स में 4x400 मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम ने रजत पदक जीत लिया है। वहीं रश्मिना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया।
12: अच्छा लगा, ये मेरा थर्ड एशियन गेम्स मेडल है, उसके लिए भी मैंने काफी मेहनत किया है। चैलेंजिंग ये था कि मैं इस बार भी गोल लाने का, पर मैं नहीं दिला पाया। नेक्स्ट टाइम और ज्यादा मेहनत करके जो भी गलतियां हैं वो सुधार के वापस आएंगे।
11: निशानेबाजी में अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने स्केट मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अनिमेश कुजूर और गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। सीमा ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। मुक्केबाजी में परवीन ने 65 किलो के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। स्क्वाश और टेबल टेनिस के अलग अलग वर्ग में खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 7 और 9 कांस्य सहित कुल 17 पदकों के साथ 15वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
0: जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में मानवाधिकारों के उल्लंघन और सामाजिक आर्थिक अभाव का मुद्दा उठाया गया है। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। और जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स रिले दौड़ और वुशु में रोशी बिना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आँखियाँ नाल मैं चन्न सितारे की करने वाह आई लव दिस सॉन्ग डोंट नो व्हाई। और एक बार फिर से इस्तकबाल है आप सभी का आपकी अपनी फरमाइशी की महफिल में आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं डेफिनेटली रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। कैसी है पब्लिक कहाँ? और ये मुझे बताना गोंडा वालों की क्या अभी बरसात बाहर हो रही है क्या? फाइनली घर जाते जाते मैं बारिश में भीगते हुए जाऊंगी? मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। फिलहाल एंजॉय करते हैं अगला गाना। अगली फरमाइश हमारे पास में है शगुन की बालपुर से। शगुन को बालपुर से सुनना है गाना प्यार इकरार मुझे प्यार हो गया। सो एंजॉय करते हैं ये जय विक्रांता का हाउ रोमांटिक सदाबहार नगमा हमारी शगुन की फरमाइश पर। और आप सुन रहे हैं डेफिनेटली रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। लव यू ऑल स्टे ट्यून्ड।

हो गया, हमने एंजॉय किया है शगुन की फरमाइश में ये गाना, और शगुन है बालपुर से। एंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन है मेरा आप सभी से। जितने लोग बालपुर रहते हैं या फिर बालपुर के आसपास रहते हैं, आखिर बालपुर का नाम बालपुर क्यों पड़ा? मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। इन बालों की वजह से बालपुर पड़ा कि वो जो बच्चों का बाल रूप होता है इसकी वजह से बालपुर पड़ा है? बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नाम है, तो मुझे इसके बारे में जरूर जानना है। और जो आसपास रहते हैं उनको हिस्ट्री के बारे में पता होता है, खास तौर पे नाम के हिस्ट्री के बारे में। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में निम्बर जी की रानी बाजार सुनार गली गोंडा से। निम्बर जी को रानी बाजार सुनार गली गोंडा से सुनना है बेवफा से वफा पिक्चर का गाना लता मंगेशकर जी की आवाज में। हम जैसा कहीं आपको दिलबर ना मिलेगा, घर छोड़ के ना जाओ कहीं घर नहीं मिलेगा। स्टे ट्यून्ड। ओह वाओ, हाउ सैड सॉन्ग इज दिस नो।

मिलेगा और घर छोड़ के न जाओ कहीं घर न मिलेगा। हमने एंजॉय किया है निबर जी की फरमाइश पर ये गाना, और निबर जी हैरानी बाजार सुनार गली गोंडा से। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों नागेश्वर धाकड़ की। एंजॉय करते हैं नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश जो कि है इंडिया से।

सो दोस्तों हमने एंजॉय किया है ये गाना जन्नत सिर्फ और सिर्फ नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश पर। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों राहुल कुमार गौतम की, उनको सुनना है गाना मोहब्बत एक तिजारत बन गई है। सो एंजॉय करते हैं राहुल गौतम की फरमाइश पर।

मोहब्बत अब तिजारत बन गई है। एंजॉय करते हैं दोस्तों हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है शिवम दुबे की, उनको सुनना है गाना काका का। सो एंजॉय करते हैं काले जो लिबास सिर्फ और सिर्फ शिवम दुबे की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। फरमाइशें इतनी ढेर सारी हैं और वक्त इतना कम है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मेरे कुछ लिसनर्स पूछ रहे हैं शेरो शायरी, वक्त ही नहीं है दोस्तों। पहले आपकी फरमाइशें फिर सब कुछ।

वाओ, हमने एंजॉय किया। काका का ये बहुत ही बेहतरीन इंसान संग में बढ़ेंगे हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइशी गीत की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है राजू की सीतापुर से, और राजू को सीतापुर से सुनना है गाना। मिले तुमसे बिछड़ के हम, मेरे साजन दुआ करना। सो एंजॉय करेंगे हम ये वाला नगमा राजू की फरमाइश पे, जो कि है सीतापुर से, और इसी के साथ लेना चाहूँगी अलविदा। अलविदा करते वक्त मैं कुछ कहना भी चाहूँगी, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिसनर के कहने पर, दो लाइन्स। कमाले जब्त को खुद भी तो आजमाऊंगी, कमाले जब्त को खुद भी तो आजमाऊंगी, मैं खामोश रहूंगी और चीख जाऊंगी। सो चलती हूँ इसी के साथ, लेती हूँ अलविदा। सो दोस्तों, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल के साथ में। गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, आप सबकी तरफ से बे इंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए, लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं कल फिर से। इसी के साथ में हमारे एक लिसनर का कुछ कहना है, आपने मुझे कितनी जगह देखा, मुझे हर जगह जाना अच्छा लगता है, हर जगह सर झुकाना अच्छा लगता है, मैं जाना नहीं चाहता लेकिन फिर भी जाना पड़ता है, रब से पहले यारों के बीच सर झुकाना अच्छा लगता है। बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं कल फिर से एक नई शुरुआत के साथ, एक नई जज्बात के साथ, एक नई फरमाइशी गीत के साथ। एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, मिले तुमसे बिछड़ के हम, मेरे साजन दुआ करना। लेकिन दोस्तों, अब कौन ही समझाए कि अगर मिलना होता तो तकदीर में बिछड़ना क्यों लिखा होता, है ना? हाउ सिंपल इज दिस नो। वैसे जो बिछड़ जाए उसको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, जो बिछड़ा है वो सिर्फ आगे बढ़ने के लिए बिछड़ा है, पीछे मुड़ने के लिए नहीं बिछड़ा। दोस्तों का बायला व्यवर स्टे ट्यून्ड, छोटी हूँ लेकिन जितने भी तजुर्बे हैं उन्हीं को साझा कर रही हूँ, स्टे

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
2: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है NV ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 901-935-5394 और 872-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
3: अरे सुना
4: क्या,
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
4: वाओ,
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
5: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
6: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
6: आज ही कॉल करें 92-981-976-9260-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
5: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
6: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। शाम का सलाम कबूल करें आप, आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो गणेशली 89.6 FM। ये गोंडा ही नहीं, अब बन चुका है हमारे और आपके दिलों की धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास। मौसम भी बड़ा प्यारा सा खुशगवार सा है और इस प्यारे से मौसम में प्यारी सी बातें हों और फिर प्यारी सी गजलें चलें तो मौसम का आनंद दुगना हो जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम बात करते हैं नींव के ईंटों की, यानी जो ईंटें हमको दिखाई नहीं पड़ती लेकिन उनके दम पर बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी होती है, बहुत बड़ी इमारत खड़ी होती है। जी हाँ, कवि कविता लिखता है, गजलें लिखता है, शेर लिखता है, संगीतकार धुन बनाते हैं, गायक कलाकार गाते हैं और इस प्रकार से जो नगमे हैं वो हमेशा वादियों में गूंजा करते हैं। और आइए आपको ले चलते हैं आज ऐसे ही एक बहुत महान शायर की तरफ। नाम आप सभी ने सुना होगा, बावस्ता होंगे आप। अजहर इकबाल बहुत ही आसान लफ्जियात में अपनी बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि घुटन सी होने लगी उसके पास जाते हुए, घुटन सी होने लगी उसके पास जाते हुए, मैं खुद से रूठ गया हूँ उसे मनाते हुए। उन्होंने सफ़र के बारे में कहा कि एक मुद्दत से है सफ़र में हम, घर में रहकर भी जैसे बेघर से। उन्होंने तन्हाई और काम की जब बात की तो उन्होंने ये कहा कि नींद आएगी भला कैसे उसे शाम के बाद, नींद आएगी भला कैसे उसे शाम के बाद, रोटियां भी न मैसर हों जिसे काम के बाद। और उन्होंने कहा कि तुम्हारी याद के दीपक भी अब जलाना क्या, तुम्हारी याद के दीपक भी अब जलाना क्या, जुदा हुए हैं तो अहले वफा निभाना क्या। बसीत होने लगी शहरे जापर तारीकी, खुला हुआ है कहीं पर शराब खाना क्या। खड़े हुए हो मियां गुंबदों के साये में, खड़े हुए हो मियां गुंबदों के साये में, सदाए दे के यहां पर फरेब खाना क्या। हर एक समत, समत मतलब चारों ओर, हर एक समत यहां वहशतों का मस्कन है, जुनू के वास्ते सहलो आशियाना क्या। बहुत ही आसान लफ्जियात में अपनी बात कहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जब नारी की बात हुई तो उनकी कलम कुछ यूं चली कि हर तरफ घात में बैठे हुए हैं दुशासन, हर तरफ घात में बैठे हैं यहाँ दुशासन, वीर अर्जुन सा लड़ैया नहीं आने वाला, खुद तुम्हें दुर्गा के अवतार में ढलना होगा, खुद तुम्हें दुर्गा के अवतार में ढलना होगा, घोर कलयुग है कन्हैया नहीं आने वाला। इसी प्रकार की बातें वो करते हैं और जब वो पढ़ते हैं तो लगता है कभी कभी कि उर्दू के बहुत महान शायर हैं, और वो जब हिंदी में लिखते हैं तो लगता है कि हिंदी के बहुत अच्छे कवि हैं। तो कवि और शायर, इन दोनों के मिश्रण का नाम है, इन दोनों के कम्बिनेशन का नाम है अजहर इकबाल। आज करेंगे उन पर चर्चा, उनके व्यक्तित्व पर करेंगे बातचीत। और अरविंद जी हमारे साथ हैं। हेलो आर्य मनुष्य, कैसे हैं आप? जी हाँ, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप भी अरविंद जी। और शुभ संध्या वो कह नहीं सकते जो दिल कहना चाहता है, बस एक तेरी मुस्कान ही सब कुछ कह जाता है। क्या बात है। अभिजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी आप नोट कीजिए, मैं नंबर बोलता हूँ 6393316429।
6364 29 एक बार पुनः सुने 6393 31 64 29। जी हाँ बिल्कुल, आप अच्छा लगेगा आपसे बात करेंगे। और अरविंद लिखते हैं, मिटा दिया वजूद मेरा इसी दीवानगी ने, वो खुद को भूल गए हमें याद करते करते। आहा क्या बात कही आपने, बहुत ही प्यारी बात कही। और तो चलते हैं भाई गजलों की दुनिया में, आपको लेकर चलते हैं एक बहुत ही प्यारी सी गज़ल पंकज उधास की प्यारी सी आवाज़ में, जो गज़ल आपको एहसास देकर जाएगी बहुत ही प्यारी। अब चलते हैं भाई और आपको सुनाते हैं ये प्यारी।

यहाँ जब ये गजल चल रही थी कि मैं नशे में हूँ, तो मुझे कार्यक्रम पेश कर रहा हूँ मैं आज़ादी बाल पर, लेकिन मुझे बशीर बद्र की एक बहुत प्यारी सी गजल याद आ गई। तुमने कहा आपको सुनाते हैं। उन्होंने लिखा कि बाहर न जाओ घर में रहो, तुम नशे में हो। बाहर न जाओ घर में रहो, तुम नशे में हो। सो जाओ दिन को रात करो, तुम नशे में हो। बाहर न जाओ घर में रहो, तुम नशे में हो। सो जाओ दिन को रात करो, तुम नशे में हो। दरिया से इख्तलाफ का अंजाम सोच लो, मतलब बगावत। दरिया से इख्तलाफ का अंजाम सोच लो, लहरों के साथ साथ बहो, तुम नशे में हो। बेहद शरीफ लोगों से कुछ फासला रखो, ज्यादा जो शरीफ लोग हैं उनसे थोड़ी सी दूरी बनाए रहिए। बेहद शरीफ लोगों से कुछ फासला रखो, पी लो मगर कभी न कहो तुम नशे में हो। कागज का ये लिबास चरागों के शहर में, कागज का ये लिबास चरागों के शहर में, अरे जाना जरा संभल के चलो तुम नशे में हो। क्या क्या दोस्तों ने तुमको पिलाई है रात भर, क्या दोस्तों ने तुमको पिलाई है रात भर, अब दुश्मनों के साथ रहो तुम नशे में हो। मासूम तितलियों को मचलने का शौक है, मासूम तितलियों को मचलने का शौक है। तौबा करो खुदा से डरो, तुम नशे में हो। जी हाँ, तो नशे पर ये उनकी बहुत ही प्यारी सी गजल याद आई हमको। विशाल बेदर्जी जी हमारे साथ हैं भाई, प्रणाम और शुभ संध्या। अनुसार आपको भी प्रणाम विशाल जी और शुभ संध्या आपको भी। दिल का हाल किसी से कह भी नहीं सकते, हमारे दर्द पे हंसने वाले बहुत हैं। क्या बात है भाई, अभिजीत जी हैं, थैंक्स सर, आपने रिस्पॉन्ड किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब आपको ले चलते हैं जी वक्त। और जब इंसान के ख्वाब टूटते हैं, जब बात अभी चल रही थी अज़हर इकबाल साहब की, तो उन्होंने कहा था कि तुम्हें खुद ही बनना होगा दुर्गा, ये कलयुग है कन्हैया नहीं आने वाला। तो इंसान कभी कभी सोचता है कि उसके जो ख्वाब हैं, जो हसरतें हैं, वो मुकम्मल हो जाएंगे। और ये जब मुकम्मल नहीं होते, ये पूरे नहीं होते साहब, तो दिल रो पड़ता है, चीख पड़ता है। और जिंदगी अगर हम ध्यान से देखें, तो अगर परिभाषित करना चाहें हम जीवन को, तो कुछ यूं कर सकते हैं कि एक सपने के बिखर कर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरे

सपने के देखने के हौसले को जिंदगी कहते हैं। तो यही जिंदगी है साहब। लेकिन इंसान क्या सोचता है और क्या पाता है, एक नगमा आपको सुनाते हैं, हो सकता है आपको पसंद आए। ख्वाब और ख्वाब का बिखरना और उसमें इंसान अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिएगा तो ये नगमा शायद आपके दिल को छू कर जाए। हमारे साथ धर्मेंद्र मोहन जी हैं। आर्य मनुषा जी नमस्कार। न दिल को सुकून, न दिन को सुकून, न रात को सुकून, ये कैसा नशा है गज़ल का, मुझे तो लगता है आपकी आवाज़ सुने बिना सुकून नहीं। मेरे प्यारे सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको धर्मेंद्र जी। और अगर आपको भी हम चैट बॉक्स में नहीं देखते हैं तो हमको हल्की सी कमी खलती है। तो आप ही आप हैं तो क्या आप हैं, और मैं ही मैं हूँ तो क्या मैं हूँ। हम आप और मैं, ये दोनों मिलकर इस कार्यक्रम को पूरा करते हैं। जी हाँ, आपके बिना हम अधूरे हैं और हमारे बिना हो सकता है थोड़े बहुत अधूरे आप भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस शब्दों के लिए। आइए अब आपको सुनाते हैं इंसान, ख्वाब और ख्वाबों का बिखरना। आवाज है कायनाती गले के मालिक मोहम्मद रफ़ी साहब की प्यारी सी आवाज़, हो सकता है आपके दिल को छू कर जाए। छू कर जाए तो बता दीजिएगा कि हाँ, ये नगमा आपको कैसा लगा। सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM। ये गोंडा ही नहीं, अब बन चुकी है हमारे और आपके दिलों की।

किसी से गिला है न किसी से शिकायत, जो मिला वो भी मुकद्दर जो गया।

किसी को बदलने की चाह नहीं, बस खुद को खोने का डर रहता है, क्योंकि इस शहर में चेहरे नहीं, जरूरतें रिश्ते तय करती हैं।

जी हाँ, कभी कभी परिस्थितियां इंसान को गूंगा बना देती हैं। और मेरा अपना भी मानना यह भी है कि जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो, अनुकूल ना हो, तो चुप रहना शायद सबसे श्रेयस्कर होता है, सबसे अच्छा होता है। क्योंकि कहा जाता है, मनुज बड़ा नहीं होता है, समय होत बलवान। इंसान नहीं बड़ा होता है, इंसान का वक्त बड़ा होता है। भिल्लन हेरी अर्जुना, वही अर्जुन वही बाण। तो हमारे साथ ज़ारा खान जी भी हैं। हेलो मैम, मुझको गाना सुना दो साजन। आप ज़ारा जी, आपको बताऊं कि ये फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम 7:45 से लेकर 9:30 बजे तक चलता है। बिल्कुल, और आपकी बहुत ही फेवरेट अली आजी यानी सिंपल जी इस शो को कवर करती हैं। फिलहाल ये कार्यक्रम चल रहा है बाहर गज़ल, और इसमें हम गज़ल जरूर सुना सकते हैं आपको, लेकिन गीत तो थोड़ा सा नहीं। और जी सर जी, मेरी दिली ख्वाहिश है, आपकी चॉइस हमारी चॉइस। जी हाँ, क्या बात है। और जी जी जी बिल्कुल मिल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और चलते हैं भाई आज़ाद इकबाल साहब की तरफ। उन्होंने लिखा कि ये बारे गम भी उठाया नहीं बहुत दिन से। बारे गम मतलब बोझ, बोझ का जो गम है वो नहीं उठाया। ये बारे गम भी उठाया नहीं बहुत दिन से, कि उसने हमको रुलाया नहीं बहुत दिन से। चलो कि खाक उड़ाएं, चलो शराब पिए, चलो कि खाक उड़ाएं, चलो शराब पिए, किसी का हिज्र मनाया नहीं बहुत दिन से। हिज्र मतलब जुदाई। किसी का हिज्र मनाया नहीं बहुत दिन से, ये कैफियत है मेरी जान अब तुझे खोकर। स्थिति कैफियत मतलब है, ये कैफियत है मेरी जान अब तुझे खोकर, कि हमने खुद को भी पाया नहीं बहुत दिन से। हर एक शख्स यहाँ महबे ख्वाब लगता है, मतलब लगता है जैसे हर एक इंसान कोई ख्वाब देख रहा हो। किसी ने हमको जगाया नहीं बहुत दिन से, ये खौफ है कि रगों में लहू न जम जाए, ये खौफ है कि रगों में लहू न जम जाए, तुम्हें गले से लगाया नहीं बहुत दिन से। जी हाँ, और ये जो इंसान नहीं कर पाता, वो इंसान मजबूरियों के तहत नहीं कर पाता, मजबूरियों के कारण नहीं कर पाता। और जी हाँ, ये मजबूरियाँ हमको लेकर आती हैं यहाँ पर, और जब मजबूरियाँ आ जाती हैं तो नगमा बहुत ही प्यारा सा ये उठता है जो हम आपको जा रहे हैं सुनाने। जी हाँ, सुनिए इस नगमे को। उम्मीद करता हूँ कि मजबूरियों से स्वयं को कनेक्ट करने का बहुत प्यारा सा मौका इस गीत के माध्यम से है।

जी हाँ, और घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। तो शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठ पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो शनिवार को पुनः आपसे मुलाकात होगी आप ही के प्यारे से कार्यक्रम बहारे गजल में। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM। ये गोंडा ही नहीं है, बन चुकी है हमारे और आपके दिलों की धड़कन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु, आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ, ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी तुमसे मिलके। दरवाजे की तेज खटखटाहट से नीरजा नींद से हड़बड़ा कर उठी। 7 बज चुके थे। उसने झट से शॉल ओढ़ा और दरवाजा खोला। सामने दूध वाले को पाकर वो बड़बड़ाती हुई किचन में डिब्बा लेने चली गई। इतनी जोर से दरवाजा पीटने की क्या जरूरत थी। रोज बाई सुबह 6 बजे तक आ जाती थी। उसके पास दूसरी चाबी थी। चाय बनाकर वो नीरजा को उठाती और नाश्ता तैयार करने में लग जाती। नीरजा ने डिब्बा बढ़ाकर दूध लिया। तब तक काम वाली बाई प्रेमा भी सामने आ गई। नीरजा उसे देर से आने पर बहुत कुछ कहना चाहती थी पर डर था कि कहीं वापस न चली जाए। उसको तो कई घर मिल जाएंगे पर नीरजा को प्रेमा जैसी कोई नहीं मिलेगी। उसने प्रेमा से कहा, अच्छा अब तू झट से चाय बना दे और नहाने का पानी गर्म कर दे। मेम साहब, एक तो गीजर खराब, बाथरूम की लाइट नहीं जलती, दरवाजे की घंटी नहीं बजती और फिर गैस का पाइप, आप ये सब ठीक क्यों नहीं कराती, मेरा काम बहुत बढ़ जाता है। वो एक ही सांस में उल्टा उसे ही सुनाने में लग गई। उसको कहने की आदत थी और नीरजा को सुनने की। बस यूं ही उनका गुजारा चल रहा था। कभी कभी तो लगता था सब कुछ छोड़कर भाग जाए, पर जाए कहां, वहां भी तो अकेली ही रहेगी। उम्र के 52 बसंत पार करने के बाद भी नीरजा एक नीरस सी जिंदगी ढो रही थी। रोज सुबह कोचिंग सेंटर जाना, 3-4 बैच को पढ़ाना, जॉइंट एंट्रेंस और नीट की तैयारी करवाना, फिर वापस शाम को घर आ जाना। प्रेमा जो बनाकर चली जाती उसी को गर्म करके खा लेती और टीवी के चैनल बदलते बदलते सो जाती। ना वो किसी के घर जाती और ना ही कोई उसके घर आता। यहाँ तक कि ऑफिस के कलीग से भी उसकी कोई खास बातचीत नहीं होती थी। दबी छिपी जबान में उसे अकड़ू और खूसट की संज्ञा से जाना जाता था। उसने भी कभी हालात के तहत पारिवारिक और सामाजिक दायरा बढ़ाने की कोशिश नहीं की। उसकी योग्यता को देखते हुए उसे कई बार मैनेजमेंट ने एकेडमिक हेड बनने के लिए कहा था पर वो कोई भी जिम्मेदारी लेने से बचती थी। जिंदगी जैसी चल रही थी वो उसे वैसे ही चलने देना चाहती थी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है तुमसे मिलके। अब तक आपने सुना, नीरजा 52 साल की हो चुकी थी लेकिन अपनी जिंदगी में अब भी एकदम अकेली थी। वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी और उसका सामाजिक दायरा ना के बराबर था। अब आगे वो तैयार होकर सेंटर पहुंच गई। शहर के इस इंस्टीट्यूट में लगभग 200 बच्चे पढ़ते थे। उसके ऑफिस पहुंचते ही मिसेस रीना बोली, लंच के बाद कहीं मत जाना, मुंबई आईआईटी से डॉक्टर सिंह आ रहे हैं। अपने स्टूडेंट से भी कह देना कि ऑडिटोरियम में 3 बजे तक पहुंच जाएंगे। वो अपने अनुभव शेयर करेंगे और बच्चों को कुछ टिप्स भी देंगे। ठीक है, कह दूंगी। तो दोपहर के बाद कोई क्लास नहीं होगी, नीरजा बोली। तुम छुट्टी के बाद तो नहीं सोच रही हो ना? अरे इतने बड़े प्रोफेसर हैं आईआईटी में, अब डीन होने का नंबर उन्हीं का है। और हाँ, वो हमारे साथ 2 बजे लंच भी करेंगे, तुम भी कॉमन रूम में पहुंच जाना, रीना बोली। लंच के लिए सब लोग कॉमन रूम में इकट्ठे हुए तभी प्रिंसिपल जोसेफ डॉक्टर सिंह को लेकर उस कमरे में आए। नीरजा उनको देखकर एकदम धक सी रह गई। पता नहीं उस एक लम्हे में क्या हुआ, अचानक उसके दिल ने तेजी से धड़कना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वो संभल पाती, प्रिंसिपल साहब ने उसका परिचय कराते हुए कहा, ये नीरजा मैडम है, हमारे यहाँ की बेहद डेडिकेटेड टीचर। जानते हैं इनका पढ़ाया बच्चा। तब तक नीरजा ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। अरे नीरजा, तुम यहां? कहकर उन्होंने बड़े ही नपे तुले शब्दों में उसे ऊपर से नीचे तक देखा। प्रिंसिपल जोसेफ ने पूछा, आप जानते हैं इन्हें? तो वो बोले, हाँ, हम दोनों ने एक साथ ही एक ही कॉलेज से एमबीए किया था, कुछ याद है आपको? कहते हुए उन्होंने नीरजा को देखा और बोले, मैं नरेन। और उसी चिर परिचित मुस्कुराहट से उसका स्वागत किया जैसे सदियों पहले। नीरजा ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया और अपने स्थान पर बैठ गई। वो उन्हें कभी भूली तो नहीं, पर याद करके करती भी क्या? जो पल उन्होंने साथ साथ बिताए थे वो लौट कर तो नहीं आते। असेंबली हॉल में उनके परिचय और तजर्बे को लेकर जितनी तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी वो सब आज नीरजा की झोली में गिरी होती। लेकिन आज वो एक कोने में मासूम सी सहमी सी दुबकी बैठी थी। उधर उनका लेक्चर शुरू हुआ और इधर नीरजा यादों के झरोखों में जा गिरी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है तुमसे मिलके। अब तक आपने सुना 52 साल की हो जाने के बाद भी नीरजा अपनी जिंदगी में एकदम अकेली थी। वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी। उस दिन उस इंस्टीट्यूट में दिल्ली IIT के प्रोफेसर को आना था। जब वो सामने आए तो नीरजा के पुराने सहपाठी निकले। उधर उनका लेक्चर शुरू हुआ और इधर नीरजा पुरानी यादों में खो गई। अब आगे, उनकी पहली मुलाकात MBA की उस सिलेक्शन लिस्ट से हुई थी जिसमें उनका नाम और नीरजा का नाम ऊपर नीचे था। एक नाम राशि होने के कारण लिस्ट में उनकी उंगली उसकी उंगली के ऊपर थी और वो अपने पंजाबी अंदाज में बोले थे, आपका नाम नीरजा है, मुबारक हो जी, लिस्ट में नाम तो आया। नीरजा मुस्कुराकर एक तरफ हो गई। उसे अपना नाम इस इंस्टीट्यूट में आने की खुशी थी और उन्होंने समझा कि वो उनकी बातों पर मुस्कुरा रही है। एक ही नाम राशि के होने के कारण रजिस्टर में भी उनका नाम आगे पीछे लिखा होता और सीटें भी आसपास होती। नीरजा हॉस्टल में रहती थी और उन्होंने शहर में कहीं पेइंग गेस्ट ले रखा था। उस इंस्टीट्यूट में किसी का नाम आने का मतलब था कि उसका पिछला रिकॉर्ड वाकई बहुत ही बेहतरीन रहा होगा। वो काफी हंसमुख और चुलबुला लड़का था। अपने इसी स्वभाव के चलते वो जल्दी ही लोगों में घुल मिल जाता था। उसमें यही ऐसी खासियत थी जो उसे सबसे अलग करती। उसके विपरीत नीरजा एकदम शांत शर्मीले स्वभाव की थी। जब भी वो उसे देखकर मुस्कुराता, नीरजा एक तरफ हो जाती। यूं कहना चाहिए कि उससे कन्नी काट लेती। सुबह जब भी वो क्लास में आता, एक खुशनुमा माहौल सा पैदा हो जाता। उसकी हंसी में भी संगीत की झंकार थी। नीरजा का परिवार लखनऊ में रहता था। पापा बैंक में थे और बड़े भैया एक मल्टीनेशनल कंपनी में चेन्नई में तैनात थे। एक दिन उसका भाई किसी काम के सिलसिले में दिल्ली आया और नीरजा से मिलने चला आया। उसने अपने कॉलेज के गेस्ट हाउस में ही उसका रहने का इंतजाम करवा दिया। उसको सुबह ही पापा से मिलने के लिए लखनऊ जाना था। अचानक किसी VIP के आ जाने से गेस्ट हाउस में उसका रहना कैंसिल हो गया। नीरजा परेशान हो गई। बाहर कैफे में बैठकर वो दोनों भाई बहन इसी उधेड़ बुन में लगे थे कि अब क्या करें। तभी नरेन अपने एक मित्र के साथ पास से गुजरा और उसकी तरफ हाथ हिलाया। वो शायद अपने घर जाने की जल्दी में था। जवाब में नीरजा की तरफ से रिस्पॉन्स ना पाकर वो अपने स्वभाव के मुताबिक उसके पास आ गया। हेलो जी, कोई परेशानी है क्या? जैसे उसने नीरजा के मन के

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है तुमसे मिलके। अब तक आपने सुना नीरजा और नरेन उस दिन बहुत सालों बाद अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के एक फंक्शन में मिले। नीरजा को याद आ रहा था कि कॉलेज में किस तरह उन दोनों की दोस्ती हुई थी। एक दिन जब उसका भाई उससे मिलने आया था और उसके रहने का इंतजाम नहीं हो पाया था, तब नरेन उसके पास आया था और उसकी प्रॉब्लम पूछी थी। अब आगे, हाँ समस्या है तो बिना कोई समय गवाए नीरजा ने बोल दिया था, ये मेरे भैया हैं, आज रात मैंने इनका गेस्ट हाउस में रहने का इंतजाम किया था पर वहां से मना कर दिया गया है, कोई आसपास होटल भी तो नहीं है और जो है वो बहुत महंगे हैं, है ना, वो तपाक से बोला था। हाँ नीरजा ने कहा था, कोई नहीं जी, मुझे आधे घंटे का समय दो, मैं कोई न कोई बंदोबस्त करके आता हूँ, कुछ ना हुआ तो अपने साथ रख लूंगा जी। फिर वो भैया की तरफ देखकर बोला, तुसी टेंशन मत लो, मैं बस गया और आया। और सचमुच वो थोड़ी देर में आया और एक कमरे की चाबी देकर बोला, सामने के ब्लॉक में दूसरी मंजिल पर यह कमरा है, आराम से रहो। नीरजा उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी, वो तो हॉस्टल का कमरा था और वो भी शेयरिंग वाला। तो नरेन ने कहा, ये अकेले ही रहेंगे, दूसरे लड़के को मैंने कहीं और जाने को कह दिया है, आप आराम से रात बिताओ। नीरजा उसके इस एहसान के सामने बौनी पड़ गई, मुन्ना भाई की तरह वो अपने मीठे व्यवहार से कुछ भी कर सकता था। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं, नीरजा ने कहा था। हाँ ये हुई ना बात, कैंपस के बाहर पिज्जा खाते हैं, पैसे तुम दे देना। और फिर उसने पैसे भी नहीं देने दिए थे, कहा तुम्हारे भाई के सामने नहीं लूंगा, पर उधार रहे। उस दिन के बाद नीरजा का उसके प्रति नजरिया ही बदल गया। वो कभी कैंपस में साथ घूमते, कभी हेल्थ क्लब में, कभी स्विमिंग पूल में और कभी कैंपस के बाहर। वैसे तो वो अपने दोस्तों और प्रोफेसर्स के साथ ही घिरा रहता, पर जब भी नीरजा को देखता तो अकेला ही आता। साल कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला। उन्होंने अपनी असाइनमेंट रिपोर्ट्स भी साथ साथ तैयार की। कैंपस में ही उसका एक बड़ी कंपनी में सिलेक्शन भी हो गया। नीरजा यही इसी इंस्टीट्यूट में रहकर पीएचडी करना चाहती थी, इसलिए उसने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा, दिन हफ्ते महीने बीतते गए। उससे बिछड़ने का दर्द नीरजा को भीतर से खाए जा रहा था। नरेन के मन में क्या था वो ये भी नहीं जानती थी। वो उस दहलीज को भी पार कर चुके थे जिसे बचपना कहते हैं, जहां जीने मरने की कस्में खाई जाती हैं। ना वो नीरजा के लिए रुक सकता था और ना ही नीरजा उसके साथ जा सकती थी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है तुमसे मिलके। अब तक आपने सुना, नीरजा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी। उस दिन उसके कोचिंग इंस्टीट्यूट में दिल्ली IIT के एक प्रोफेसर आए जो उसके पुराने दोस्त निकले। नीरजा यादों में खो गई। वो दोनों कभी एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स थे और नीरजा उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन ये हो ना सका। अब आगे। एक दिन ऐसा भी आया जब दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल का हाल बयां कर दिया। अपने अपने घरों में शादी की बात करी। नरेन के घर वाले तो मान गए, पर नीरजा के घर वालों ने साफ मना कर दिया। दोनों के रास्ते अलग हो गए। फिर जीवन में परिस्थितियां कुछ ऐसी आती चली गईं कि नीरजा घर की जिम्मेदारियां ओढ़ती रही, बाकी भाई बहन सेटल हो गए, माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए और आज नीरजा एकदम अकेली थी। स्पीच खत्म हुई और कुछ ही पलों में नरेन भीड़ में रास्ता बनाते हुए उसके पास आकर धीरे से बोला, मैं कल सुबह वापस चला जाऊंगा। तुम चाहो तो अपने पिज्जा का उधार आज चुका सकती हो, याद है ना तुम्हारे भैया के साथ। नीरजा एकदम पिघल सी गई, बड़ी मुश्किल से अपनी रुलाई को छुपा लिया। वो फिर बोला, चलो कॉफी होम में मिलते हैं आधे घंटे बाद। वो नरेन को उसी नीम के पेड़ के नीचे मिली जहां वो अक्सर बैठा करते थे। मुझे मालूम था तुम यहीं मिलोगी। नरेन उसके पास आकर बैठ गया और बोला, आज जब से तुम्हें देखा है बस तुम्हारे ही बारे में सोचता रहा और ये बात मेरे जहन में उतर ही नहीं रही कि MBA करने के बाद भी तुम इस छोटे से इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हो। मैं तो समझता था कि। उसकी बात काटते हुए नीरजा ने कहा, नरेन जिंदगी वैसी नहीं चलती जैसा हम सोचते हैं। अच्छा अब फिलोसफिकल बातें छोड़ो और बताओ कुछ अपने बारे में, कहाँ रहती हो, घर में कौन कौन है, कहकर वो मुस्कुराने लगा। वो आज भी वैसा ही था जैसा पहले। मेरी राम कहानी तो चार लाइनों में खत्म हो जाएगी। तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले, क्या चल रहा है, नीरजा बोली। ओ जी मेरा क्या है, मुंबई गया तो बस वहीं का होकर रह गया। एक बेटा है जो जर्मनी में पढ़ता है, पापा रहे नहीं, मम्मी मेरे पास ही रहती है, वाइफ एक कॉलेज में लेक्चरर है, बस बड़ी खुशनुमा जिंदगी जी रहे हैं, नीरजा बोली। मेरी याद कभी नहीं आई। उसने नीरजा के हाथों पर अपना हाथ रखकर धीरे से कहा, उन लम्हों की चर्चा हम ना ही करें तो अच्छा है, जिंदगी वैसी नहीं है जैसा हम चाहते हैं, लाख रुकावटें आए वो अपना रास्ता खुद ब खुद चुनती है, हमारा उस पर कोई अख्तियार नहीं। फिर वो एक ठंडी सांस भरकर बोला, छोड़ो ये सब, अपनी सुनाओ, सब ठीक तो है ना। क्या ठीक हूं, बस ठीक ही समझो, क्या बताऊं, कुछ बताने लायक नहीं है। मतलब इतना रूखा सा जवाब क्यों दे रही हो, वो चौका। तुमसे शादी होने नहीं दी और घर वाले मेरे लिए कोई घर वर तलाश नहीं कर पाए, लखनऊ से PhD करने की हसरत भी मन में ही रह गई। एक तरह से मेरा कुछ भी करने को मन नहीं करता था। उन दिनों कई अच्छे अच्छे कॉलेजों और कंपनियों के ऑफर्स भी आए, लेकिन मम्मी पापा को अकेले छोड़कर जा नहीं सकती थी, यहीं रह गई और यही नौकरी करने लगी। अब तो माता पिता भी नहीं रहे, भाई मुंबई चला गया, मैं अकेली हूं।
लंबी चुप्पी के बाद नरेन बोला, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ क्या? तुम फिर से घर क्यों नहीं बसा लेती? वो बोली, मेरा घर बसा ही कहाँ जो फिर से बसाऊं, वो तो बसने से पहले ही रह गया। शाम काफी हो चुकी थी। एक बार फिर उन दोनों के बिछड़ने की बारी थी। नरेन उसको तसल्ली देकर चला गया। फिर एक दिन सुबह सुबह उसका फोन आया। नीरजा सेंटर जाने की तैयारी कर रही थी। वो बोला, सुनो एक बहुत ही शानदार खबर है, मैंने तुम्हारे मतलब का काम ढूंढ लिया है जिसमें तुम्हारा तजुर्बा बहुत काम आएगा। तुमने ढूंढा है तो ठीक ही होगा, नीरजा बोली, बताओ। नरेन बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे एक जानने वाले का गुड़गांव के पास एक वृद्धा आश्रम है, ऐसा वैसा नहीं, 5-स्टार फैसिलिटीज वाला। वो खुद तो फ्रांस में रहता है पर उसे आश्रम के लिए एक लेडी डायरेक्टर चाहिए। तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने हाँ कर दी है, इनकार मत करना, वहां तुम्हें घर भी मिलेगा और साथ भी। तुम चाहो तो एक महीने की छुट्टी ले लो, ना पसंद आए तो यही वापस आ जाना। एक नई जिंदगी तो कभी भी शुरू की जा सकती है ना। उसकी बातों में एक अपील थी, ठहराव था, एक अच्छे दोस्त और हमदर्द की तरह एक आदेश भी था। नीरजा अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाकर रोने लगी। इसी अधिकार की भावना के लिए तो वो तरस गई थी। मन का एक छोटा सा कोना उसी का था और सदा उसी का रहेगा। उसकी यादों की मीठी छांव में बैठने से कलेजे को आज भी

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी तुमसे मिलके। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: काले काले बादलों का अंबर पर डेरा है, ठंडी ठंडी हवाओं ने हर तरफ से घेरा है, रिमझिम बरसती बूंदों ने सुर ऐसा छेड़ा है, इस सुहाने मौसम ने हम सब का मन मोहा है। कागज की कश्तियों का पानी में बह जाना, भीगी भीगी मिट्टी की खुशबू का महक जाना, चाय की चुस्कियों के साथ यादों का आ जाना, बड़ा ही हसीन है बारिश का ये तराना।
1: पत्तों पर थिरकती है मोती जैसी बूंदे, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति आंखें मूंदे, हर दिल में जग रही है एक नई उमंग, चलो आज बिखरेंगे हम भी सुरों के नए रंग। संगीत की महफिल है सावन की यह रात, सुर से सुर मिलाएंगे होगी सुरों की बरसात, हो जाइए थामिए एक दूसरे का हाथ। शुरू करते हैं आज का बीबीजी यानी कि भूले बिसरे गीत। मैं हूँ आरजे ख्वाहिश।
0: मैं हूँ आरजे गुमसुम।
1: तो रात के सफर को आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारे से नाम के साथ। हाँ जी दोस्तों, नाम हमारा होने वाला है आज बारिश, और बारिश हो और प्यारे प्यारे गीत ना हो ये कहाँ मुमकिन है। तो आइए आज का सफर शुरू करते हैं प्यारी सी बूंदों के साथ। सुनाती हूँ एक प्यारा सा नगमा।

जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब कोई भी गाना होता है, जब कोई भी फिल्म होती है, तो उस शूटिंग के दौरान कोई ना कोई एक ऐसी कहानी उस गाने के पीछे की होती है। आज एक बहुत ही प्यारा सा गाना और उसके पीछे की कहानी, जो कि बारिश में फिल्माया गया है, राज कपूर और नरगिस पर भारतीय सिनेमा का आइकॉनिक रेन सॉन्ग है। इस गाने की शूटिंग के दौरान इस एक मज़ेदार वाक्या हुआ था जो आज मैं आपको बताऊंगी। गाने में तीन छोटे बच्चे रेनकोट पहनकर सड़क पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। वे बच्चे कोई और नहीं बल्कि राज कपूर के ही बच्चे रणधीर कपूर, रीमा कपूर और ऋषि कपूर थे। ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी में बताया भी है कि शूटिंग के दौरान रो रहे थे, तब नरगिस ने उन्हें चॉकलेट का लालच देकर चुप कराया और शॉट के लिए राजी किया गया। ये गाना आज भी सच्चे प्यार की एक बहुत बड़ी मिसाल है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, इस गाने को सुनेंगे, लेकिन एक और गाना है जिसे हम और बताएंगे।

अब आती है बारी उस गाने की जो आज भी हम सुनते हैं तो बस कुछ याद आ जाता है। कुछ यादें वो बारिश के दिनों वाली फिर से ताज़ा हो जाती हैं। गाना है एक लड़की भीगी भीगी सी। किशोर कुमार और मधुबाला का ये गाना आज भी इतना मशहूर है कि जो भी इसे सुनता है और गुनगुनाता है वो सावन की बूंदों के साथ कुछ खो सा जाता है। मधुबाला का चुलबुला अंदाज और उसी के साथ किशोर कुमार की मस्ती, क्या ही कहना है इस गाने का। बता दें कि संगीत निर्देशक SD बर्मन कुछ ऐसा संगीत चाहते थे जो रोज़मर्रा की आवाज़ों से मेल खाए। किशोर कुमार इस गाने की जो सिचुएशन थी उसे ऐसे बनाना चाहते थे कि लगे कि वो बिल्कुल असली है। इसे बिल्कुल असली और एक्चुअल में दिखाने के लिए गैराज के टूल्स का इस्तेमाल किया गया। गाने की शुरुआत में जो कार के नेटबोर्ड कसने और पानी की बाल्टी पलटने जैसी आवाज़ें आती हैं वो पूरी तरीके से सिचुएशनल थी। गाने में किशोर कुमार की असली मस्ती और मधुबाला की बेमिसाल खूबसूरती का ऐसा फ्यूजन हुआ कि ये गाना एवरग्रीन बन गया। आज भी ये गाना लोगों की जुबान पर उतना ही कहीं ना कहीं आता है और उतनी ही मदहोशी और मस्ती से बारिश के दिनों में गुनगुनाया जाता है। तो आइए लिसनर, चलते हैं, एक प्यारा सा गीत सुनते हैं जो कि है एक लड़की भीगी भागी सी।

0: नहीं कहो ये कोई।
1: हाँ जी दोस्तों, जब हम कभी किसी से मिलते हैं लाइक समवन स्पेशल, तो अगर बारिश हो जाए और हम बाइक पे हों गाड़ी पे हों, तो वो जो माहौल बन जाता है ना, बेहद खुशनुमा बन जाता है। और उसी खुशनुमा मौसम में अगर ये गाना चल जाए, रिमझिम की तराने लेके आई बरसात, ये मूवी है काला बाजार। और इस कहानी के पीछे भी, इस गाने के पीछे भी एक बहुत प्यारी सी कहानी है, जो कि देव आनंद और वहीदा रहमान का एक बेहद खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग है। इसकी शूटिंग मुंबई में असली बारिश में की गई थी। और आपको तो पता ही है कि मुंबई की बारिश, वाओ, मतलब कहा जाता है कि एक मुंबई की बारिश हो और लड़की भीगी भागी हो, और रात की जो सड़कें होती हैं वहाँ की सड़कें कभी भी सोती नहीं हैं। तो मुंबई में ये गाना फिल्माया गया, वो भी असली बारिश में। निर्देशक विजय आनंद पर्दे पर असली मॉनसून का जादू दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोई नकली वाटर टैंक इस्तेमाल नहीं किया। देव आनंद और वहीदा रहमान एक ही छाते के नीचे मुंबई की सड़कों पर चल रहे थे। उस दौरान में ये भी कहा जाता है कि उस दौर में भारी कैमरों के साथ असली बारिश में शूट करना बेहद मुश्किल था, लेकिन देव साहब की बेफिक्री और वहीदा जी की सादगी ने इस गाने को एक टाइमलेस क्लासिक बना दिया। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को, रिमझिम के तराने लेके आई बारात।

अब आते हैं, बात करते हैं उस गीत की जो कि है फिल्म ए लव स्टोरी का, जो कि है रिम झिम रिम झिम। संगीत सम्राट आर डी बर्मन का ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा एल्बम था। पंचम दा इस गाने को लेकर बेहद भावुक थे, क्योंकि एक लंबे समय के बाद वो इसी गाने से बॉलीवुड में वापसी कर रहे थे। उन्होंने इस गाने को बारिश की बूंदों के साथ पिरोया, और ऐसा पिरोया कि आज भी ये हर किसी की जुबान पर कहीं ना कहीं सुनाई दे जाता है। अनिल कपूर और मनीषा कोहराला पर फिल्माए गए इस गाने की रिलीज से ठीक पहले पंचम दा ने इसके धुनों को फाइनल किया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई भी काम वक्त से बहुत पहले या वक्त के कुछ पहले होता है तो बात ही कुछ अलग होती है। आखिरी टाइम पर फाइनल हुई धुनों ने ही इस गाने को इतना खूबसूरत बना दिया कि ये आज भी कहीं ना कहीं बारिश की जब भी बात आती है तो इसे ज़रूर गुनगुनाया जाता है। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत जो कि है रिम झिम रिम झिम।

गाना सुनाने से पहले मैं बताऊं, एक बहुत ही प्यारा सा गीत है जो कि है जिंदगी भर नहीं भूलेगी ये बरसात की रात। अब इस गाने के पीछे की बहुत ही प्यारी सी कहानी है। गीतकार साहिर लुधियानवी ने इस गाने को एक गहरी कविता के रूप में लिखा था। कहानी के अनुसार गायक को बारिश की एक रात में एक अनजान लड़की यानी मधुबाला से प्यार हो जाता है। इस गाने को बारिश के बैकड्रॉप के साथ इस तरह कंपोज किया गया था कि ये केवल एक गाना नहीं बल्कि फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने का एक मुख्य जरिया बना। इस प्यारी सी कहानी के साथ आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को जिसमें है हमारी हम सब की प्यारी मधुबाला।

0: आइए अब बात करते हैं उस गीत की जो बरसात के दिनों में कहीं ना कहीं सभी की जुबान पर होता है, ओ सजना बरखा बहार आई। इसे गाया था लता मंगेशकर जी ने और ये फिल्माया गया था साधना जी पर। संगीतकार सलिल चौधरी एक दिन तेज बारिश के दौरान अपने घर की खिड़की के पास बैठे थे। खिड़की पर गिरती पानी की बूंदों की रिदम से उन्हें एक धुन सूझी। उन्होंने सबसे पहले इसे बंगाली गाने ना मोन लागे रे के रूप में रिकॉर्ड किया था। बाद में विमल राय की फिल्म के लिए इसी धुन को हिंदी में बदल दिया गया, जो हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत और शांत मानसून के गानों में से एक बन गया। तो आइए सुनते हैं ये बेहद ही प्यारा सा गीत।
1: ओ सजना

आवाज से ही इस गाने की पहचान है और आवाज ही हर किसी के एक व्यक्तित्व की पहचान भी होती है। जी हाँ दोस्तों, अगला गाना इस क्लासिक गाने को मन्ना डे ने और लता मंगेशकर ने गाया था। संगीत सलिल चौधरी का था और ये गाना था हरियाला सावन ढोल बजाता आया। विमल रॉय की इस फिल्म का यह गाना किसी प्रेमी प्रेमिका के रोमांस पे नहीं बल्कि भारतीय किसानों और धरती के जुड़ाव पर आधारित है। कहानी के अनुसार सूखे से परेशान गांव वाले जब आसमान में काले बादल देखते हैं तो खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि बारिश का मतलब उनके लिए नई जिंदगी और फसलों का उगना है। गीतकार शैलेंद्र ने बादलों की गड़गड़ाहट की तुलना ढोल की आवाज से की है, इसीलिए इस गाने का नाम भी कुछ ऐसा दिया, हरियाला सावन ढोल बजाता आया। आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।